हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है जस्ट चिल का कारवा। अभी से लेकर 6 तक हमारा और आपका साथ बना रहेगा। आज मैं कुछ अलग आपके लिए लेकर आया हूँ, जबकि आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी जो ऐसी जनरेशन है, मैंने जो म्यूज़िकल जेनी जो ट्रांजिशन रहती है, मैंने इसको विटनेस किया है। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे एक धुंधला सा याद है कि कैसे रिकॉर्ड प्लेयर्स को यूज़ किया जाता था। मैं बहुत छोटा था लेकिन मुझे याद है कि कैसे उसको यूज़ किया जाता था। जबकि रिकॉर्ड प्लेयर्स एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट थी जहाँ पर आप रिकॉर्ड बजाते थे, प्ले करते थे, लेकिन नॉन पोर्टेबल थी, यानी कि आप उसे कहीं ले जा नहीं सकते। और एक डिसिप्लिन रिक्वायर्ड थी, क्योंकि आपको वो जो रिकॉर्ड्स आते थे, जो काले काले बड़े डिस्क जैसे होते थे, कवर्स में रहते थे, एंड दे वर केप्ट वेरी सेफली, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो टूट जाता था तो काफ़ी नुकसान भी होती और साथ में कई सारा डांट भी सुनने को मिलता था। तो ये जो रिकॉर्ड्स थे, इसने स्लीव से निकाला जाता था और केयरफुली प्लेस किया जाता था एक प्लेयर पर, जहां पर नीडल से उसको आप चेंज करते थे ट्रैक्स को। ये मुझे मालूम नहीं है लेकिन कि आप उसको ट्रैक्स को आप चेंज कर पाते थे या नहीं, ये ऑप्शन था कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर दैट। लेकिन आपको सुनने के बाद में फिर शायद उसको रिकॉर्ड को बदलना पड़ता था, आपको उसको टर्न करना पड़ता था, एंड देन यू कुड हियर द अदर साइड। फिर उसके बाद में आया ज़माना कैसेट्स का, ये भी मुझे अच्छी तरह से याद है। जबकि कैसेट्स आया था तो कहीं ना कहीं आपको वो कंफर्ट मिल जाती थी कि आप उसे अपने वॉकमैन में डालकर सुन सकते थे, यानी कि आप अब पोर्टेबल हो गया था म्यूज़िक, आप उसको कहीं भी अपने साथ में लेकर जा सकते थे। और मुझे ये भी याद है कि उसको बीच में, कैसेट्स के बीच में आप शायद पेंसिल डालकर या पेन डालकर उसको एडजस्ट करते थे, जबकि जो रील्स थी थोड़ी ढीली भी हो जाती थी तो आप उसको टाइट करते थे। इसके बाद में काफ़ी लोगों ने कैसेट्स को यूज़ करके जब भी रेडियो पर गाना बजता था तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाता था। तो ये कैसेट्स का ज़माना था और इसे भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। फिर उसके बाद में आया CD, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क का ज़माना, जो 1980s से लेकर 90s तक ये चला। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे आपके पास में। शायद पहली बार आप स्किप करने का आपको एक मौका लगा, जहां पर आप गाने स्किप कर सकते थे वेरी इजीली। तो ये हुआ। फिर CDs के बाद में फिर MP3s का ज़माना आया, आपको याद होगा, जहां पर म्यूज़िक को कन्वर्ट किया जाता था कंप्यूटर फाइल्स में और यहां पर आप फाइल शेयरिंग भी कर पाते थे या फिर एक प्लेलिस्ट बनाते थे और सुनने के लिए। और MP3s भी एक मीडियम था जिसे आप सुनते थे। उसके बाद में फिर स्ट्रीमिंग का ज़माना आया, जहाँ पर आप वेरी इजली आप Spotify पर जाते हो और जो भी गाना आपको सुनना पसंद है, आप जिम में हैं तो कोई पंपिंग नंबर सुनना चाहते हैं या फिर वाइंड डाउन कर रहे हैं ऑन अ संडे, कुछ रिलैक्सिंग नंबर सुनना चाहते हैं, तो ये सभी कुछ ऑप्शंस आपके पास में है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए, सबसे पहला जो आपने, आपको एलियस्ट मेमरी आपको याद है कि आपने सुना या फिर ऑन किया है किसी एक कैसेट को, या फिर शायद आप हम में से कोई है जिन्होंने रिकॉर्ड्स को भी ऑन किया है, आपका पहला रिकॉर्ड क्या था, किस फिल्म का था, या कौन सी ऐसी म्यूज़िकल एल्बम थी जो आपने ऑन किया, या फिर ऐसे कौन सी जो कैसेट है जो आपकी म्यूज़िकल कैसेट थी पहली बार आपने उसको ऑन किया था। इफ़ यू डू रिमेंबर दैट, हमारे साथ में शेयर करें 5599 पर या फिर 0800004866 पर। आप कॉल करके बातें भी करना चाहते हैं, इफ़ यू आर प्राउड ओनर ऑफ अ रिकॉर्ड प्लेयर तो आप इसके बारे में शेयर भी कर सकते हैं हमारे साथ में, या फिर ऐसी कौन सी पहली म्यूज़िकल एल्बम थी जो एलियस्ट मेमोरीज आपको याद है, जिसे जो कैसेट आपने जाकर ख़रीदा था, या फिर जो रिकॉर्ड प्लेयर आपने जाकर ख़रीदा था, या फिर कोई डिस्क आपने ख़रीदी थी जो आपके लिए काफ़ी मेमोरेबल है, इसका जो इन्फॉर्मेशन है आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं ऑन 5599 और 0800004866 पर। आप कॉल करके भी ये शेयर कर सकते हैं।

आप सुन रहे जस्ट चिल विद अभी, और जबकि संडे है ऐसे में काफ़ी लोग आज भी इंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे होंगे, हमारा साथ दे रहे होंगे, तो आपका खास स्वागत करते हैं। और जबकि हमने सवाल पूछा था कि आपकी पहली जो आपने रिकॉर्ड ऑन किया होगा या फिर कोई कैसेट ऑन किया होगा, आपकी एलियस्ट मेमोरीज क्या है, आपने शायद कोई म्यूजिकल डिस्क खरीदा होगा, तो आपकी एलियस्ट मेमोरी क्या है, तो हमने पूछा था आपसे। तो 5599 पर समीर ने मैसेज किया है, उन्होंने लिखा है, द फर्स्ट म्यूजिकल एल्बम दैट आई रिमेंबर आई ओन्ड वाज अ कैसेट, आई एम अ किड ऑफ 90s, इट वाज आशिकी। ओ ग्रेट, व्हाट अ परचेस, क्योंकि इनके सभी गाने काफ़ी हिट थे। आपको भी याद है आपने पहली बार कोई कैसेट ऑन किया था, जो ख़रीदा था आपने, या फिर कोई डिस्क था, या फिर कोई एक रिकॉर्ड था जिसे आपने परचेस किया था। 5599 पर आप हमारे पास में भेज सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे म्यूज़िक ट्रांजिशन हुई, रिकॉर्ड प्लेस से फिर कैसेट्स तक पहुंची, और फिर उसके बाद में कॉम्पैक्ट डिस्क जो 1980s में आई और वहां तक पहुंची, उसके बाद में MP3s में भी काफ़ी लोगों ने म्यूज़िक को सुना है, और अभी तो काफ़ी ईजिली आप किसी भी ऐप पर इसे सुन सकते हैं। तो आपकी पहली जो ओन्ड परचेस्ड जो कैसेट थी म्यूजिकल, कौन सी थी, आपको याद है, तो आप 5599 पर हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम पर जसिल का ये कारवा है और आपको बता दूं एक बजे के बाद आपके साथ में खेलेंगे डेड्स रिवर्स ग्रिल जहां पर फादर्स डे प्रमोशन होने है बिल्कुल जारी है जिसका ड्रॉ होगा 4 सितंबर फ्राइडे को और यहां पर ड्रॉ होने पर जो विजेता रहेगा उसके हाथ लगेगा $500 कैश इनाम ये सभी कुछ आपके साथ में रहेगा जबकि कुछ मॉडर्न यूं कहें लिंगो से कुछ सवाल करेंगे आपसे एक बजे के बाद में और आपको एज अ सपोर्ट अपने बच्चों को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जो लिंगो है जो मॉडर्न लैंग्वेज का लिंगो है ये शायद उन्हीं को ही पता होगा सो दे कैन बेल यू आउट आपको हेल्प कर सकते हैं और एक बजे के बाद जब ये सवाल करेंगे आपको 0800004866 पर कॉल करके इसका सही जवाब देना होगा तभी आपके नाम को ड्रॉ में शामिल कर पाएंगे ऑल ऑफ दिस हैपनिंग आफ्टर वन इसके अलावा जो फादर्स डे सोशल मीडिया जो प्रमोशन है ये भी चल रहा है जहां पर डेड्स AI अपग्रेड चालू है डेड के जो सुपर हीरो वाली क्वालिटीज़ है इनके अंदर जो छुपी है आपको एक AI जनरेटेड इमेज यूज़ करके अपने डेड को एक सुपर हीरो इमेज देना है उसके बाद में जो पिंड पोस्ट है हमारे हम फेसबुक पेज पर यहाँ जाकर उस इमेज को आपको अपलोड करके अपने डेड को टेक करना है साथ में अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इनक्रेज करना है कि डेड की फ़ोटो को ये लाइक करें उस कॉम्पटिशन पोस्ट को ये लाइक करें और इसके अलावा जो अदर रिक्वायरमेंट्स है इसमें आपको जो हम फेसबुक पेज है इसको फॉलो करना होगा और कंपटीशन पोस्ट को भी लाइक करना होगा यहाँ पर ये करने से आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा जहाँ पर $300 कैश इनाम आपके हाथ लग सकते हैं और याद रहे ये ड्रॉ भी फ्राइडे 4 सितंबर को रहेगा जबकि कमिंग वीकेंड ही फादर्स डे है ऐसे में ये बेहतरीन मौका है आपके पास में जबकि आप कॉम्पटिशन में भाग लेकर यू कैन विन समथिंग फॉर योर डेड और आपको ये भी बता दें कि जब भी आप हम के साथ में होते हो यू आर ऑलवेज अ विनर

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: Say goodbye to winter.
4: Goodbye.
3: And hello to spring.
4: Hello.
3: This weekend at Risco's with new season savings store wide and half price Manchester and electrical deals. Say goodbye winter.
4: Goodbye.
3: Hello spring.
4: Hello.
3: With fresh savings at Risco's. See online for T's and C's.
5: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel Hilo. Right now Andrew Sims Melukao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on road cost. No deposit finance low. Apni trade in ke liye zabardast price pao. Aur discover करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेनुगाव। हैवल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: Oh hey, if you haven't received your enrollment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
7: Enroll, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
8: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
9: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
8: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
9: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
8: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
10: Get it sorted with cheap as deals. Add some colour to the garden with 10cm Elite Cyclamens, now only $4 each. And get a sweet deal on 10cm Zealandia strawberry plants, now just $3.50 each. Limited stock. End Sunday at Mitre 10.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari koi branch nahi
11: hai.
13: Just chill.
14: जशिल में मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि 10 मिनट बाकी है एक बजने में। तो आपको बता दूँ, मेट सर्विसेज ने बताया है कि डैमेजिंग गस्ट हो सकती है, आप फेस कर सकते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड। साथ में जो स्ट्रॉन्ग वेस्टली वेदर सिस्टम है लेकर आ रहा है ढेर सारे डैमेजिंग विंड्स अक्रॉस सेंट्रल और साथ में सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जहाँ पर ऐसे मौसम को देखते हुए ट्रेवल बिल्कुल डिफिकल्ट रहेगी सेवरल साउथ आइलैंड हाईवेज में कमिंग इनटू मंडे। इसके साथ में जो डैमेजिंग विंड्स है ये होक्स बे, साथ में साउथ ऑफ हेस्टिंग्स और तारारुआ डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और यहाँ पर इन वेदर कंडीशंस को देखते हुए जो स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग, एक ऑरेंज स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग इन प्लेस है संडे इवनिंग से लेकर मंडे आफ्टरनून तक। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो विंड गस्ट है ये शायद कुछ ना कुछ 120 किलोमीटर्स पे आवा के झोंके से चल सकते हैं। तो ये सभी कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग इनटू मंडे। इसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहें और इट्स इम्पोर्टेंट कि ऐसे मौसम में आप अपने आप को सेफ रखें, वार्म रखें, क्योंकि अभी एक इन्फ्लुएंजा भी है जो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है, फैली हुई है, यहाँ पर काफ़ी लोग इससे भी जूझ रहे हैं और इसके लिए आपको सेफ रहना ज़रूरी है।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
3: बाली

0: सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
1: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम।
2: वेलकम टू कबाब्स किचन, आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
3: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
2: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
3: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
2: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
3: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
4: नॉक नॉक, इट्स मी डैश, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
5: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
6: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
7: Join the Tribe!
6: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
7: join the Tribe!
8: Since 96, Rebel Sport has been getting Kiwis off the sidelines and into the game. And to celebrate our 30th birthday, we have $30,000 up for grabs. To enter, jump online to tell us why you or someone you know deserve to have their sport covered for a year. But hurry, entries are closing soon. This is our way of giving back to the players, teams and supporters who love sport as much as we do. Don't miss out. Go to rebelsport.co.nz for your chance to win a share of $30,000 now. Only at Rebel Sport.

0: Just chill.
1: You're listening to Avineet.
2: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में, और जबकि हमारे स्टूडियोज में 1:01 हो गया है, तो ऐसे में इस आवर पर आपके साथ में ढेर सारी बातें करने को है। लेकिन सबसे पहले हमने कहा था कि आपके साथ में खेलेंगे फादर्स डे ऑन एयर प्रमोशन डेट्स रिवर्स ग्रिल, जहां पर डेट को हम पूछेंगे एक सवाल मॉडर्न लिंगो में और उनको जवाब देना होगा, और सही जवाब देने पर आपका नाम जो है ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, जहां पर आप ड्रॉ होने पर जो होगा 4 सितंबर को आप $500 कैश इनाम जीत सकेंगे। 0800-004-866 ही नंबर है जहां पर आपको कॉल करना है। तो जो सवाल है बिल्कुल आसान है, अगर जो मैं आपसे कहूं कि आप फ्लेक्स कर रहे हो, यू आर फ्लेक्सिंग, इसका मतलब क्या हुआ, तो 0800-004-866 पर आपको यही बताना है हमें रिंग करके, कॉल करके। और जैसे कि हमने कहा है कि बहुत दिन बाकी नहीं है ना, जस्ट फ्यू मोर डेज टू गो। अगर जो आप हमारे शो में एंटर करते हो, हु नोज, शायद आप भी विनर ठहरे। जैसे कि रक्षाबंधन का जो प्रमोशन हुआ, वहाँ पर काफ़ी 3 लोगों को इनाम मिला है, ऐसा ही आप भी पार्टिसिपेट करके जीत सकेंगे। तो एक गाना बजाता हूँ, तब तक आपके पास में समय है, पूछ लीजिए अपने बच्चों से कि अगर जो आपको कोई कहे यू आर फ्लेक्सिंग, आप फ्लेक्स कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, 0800-004-866 पर आपको कॉल करके हमें बताना है ऑन एयर।

0: ऑलराइट, हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी, जबकि बातें हो रही थी फादर्स डे प्रमोशन के बारे में और हमने आपसे पूछा था कि अगर जो आपको बच्चे कहें कि आप फ्लेक्स कर रहे हो, यू आर फ्लेक्सिंग, इसका क्या मतलब हुआ, और अगर जो आपको जवाब मालूम था तो आपको कॉल करना था। तो एक हमारे पास में कॉलर है, अंतरप्रीत, आपका स्वागत है। अंतरप्रीत, वेलकम टू हम।
1: नमस्ते सर, कैसे हो आप?
0: नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: ठीक है ठीक है।
0: क्या हो रहा था
1: और
0: अंतरप्रीत?
1: बताइए।
0: एकदम बढ़िया बढ़िया है, बिल्कुल।
1: आपको सुन रहे हैं, पहले वो उनको सुन रहे थे जो नेपाल वाली थी,
0: आरजू आरजू थी,
1: तो कल
0: हाँ।
1: तो वो बोल रहे थे कि मैं आऊंगा 6 से 12, लेकिन बाद में।
0: ना ना, कोई बात नहीं, अब हम हैं आपके साथ में और अभी से लेकर 6 तक रहेंगे, बिल्कुल आपके साथ में।
1: हाँ, नहीं, हम तो आपको तो इन्जॉय कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन सर। कुछ
0: थैंक यू सो मच। और आपको हमने जो सवाल किया था कि फ्लेक्सिंग को क्या इसका मतलब हुआ, पता लगा आपको?
1: इसका मतलब है कि शो ऑफ करना।
0: अच्छा, तो आपको ये सुनने मिला है कभी? अंतरप्रीत, आपको ये सुनने मिला कभी?
1: हाँ हाँ मिला है, कहीं एक मिला है।
0: अच्छा चलो ठीक है, लगता है आप बिजी भी हो तो आपसे ज्यादा नहीं बात करेंगे। अच्छा चलो, मैं होल्ड पर हूँ और जितने जितने भी हम के लिसनर्स हैं, आप ये भी होल्ड पर हैं हमारे साथ में। ना ना, बिल्कुल सही, कस्टमर तो आने चाहिए, ग्राहक तो मालिक होते हैं। ना चलो,
1: मैं बोल रहा था कि शो ऑफ करना, जैसे हम कह ही देते हैं कि यार ये गाड़ी ले ली है, इसने ये कर लिया है, शो ऑफ करता है।
0: चलो सही पहचाना आपने। आप क्या करें, आपके नाम को हम ड्रो में शामिल करेंगे, लेकिन आप लाइन पर ठहरिएगा, मुझे आपका फोन नंबर लेना है। ओनिया तो नहीं ले सकते क्योंकि फिर काफी कस्टमर्स कॉल करने लगेंगे आपको।
1: नहीं नहीं ठीक है ठीक है।
0: तो चलो आप लाइन पर ठहरिए और आपसे बातें होंगी, स्टे ऑन द लाइन। तो ये थे अंतरप्रीत, अभी लाइन पर हो गए हमारे साथ में और इनसे और भी बातें होंगी बस थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए आप ये गाना सुनते रहिए और मैं डिटेल्स ले लेता हूँ अंतरप्रीत का।

जस्ट चिल है अभी के साथ में और मैं आपका साथ देता रहूंगा 6 तक। और जब तक ये गाना बज रहा था जुबिन नौटियाल की आवाज में, 2-3 गोल्स आए ऑफ एयर जिनको इंटरेस्ट था इस प्रमोशन में एंटर करने के लिए, विच इज गुड क्योंकि लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन एक ही शो में एक ही मौका हम दे पाते हैं टू टेक अ ड्रो। लेकिन आपके पास में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक और एक जरिया है, एक ऑप्शन है जहाँ पर डेज AI अपग्रेड ये प्रमोशन में आप पार्ट ले सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है, अपने डेट को किसी भी एक AI को यूज करके अपने डेट को एक सुपर हीरो का इमेज दे और जाकर हमारे जो पिन पोस्ट है हम 104.2 FM के फेसबुक पेज पर, यहाँ पर जाकर वो इमेज आप अपलोड करें। उसके बाद में अपने डेट को आप टैग कर सकते हैं और साथ में एनकरेज करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को डेट के फोटो और साथ में कंपटीशन पोस्ट को लाइक करने के लिए। इसके साथ में जो जितने भी लोग आपके डेट के फोटो को लाइक करेंगे, ये ज़रूरी है कि ये हम फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और कंपटीशन पोस्ट को भी लाइक करें। तो ये जो ड्रो है 4 सितंबर को रहेगा और इसके साथ में आप ऐसे ड्रो में शामिल हो जाएंगे जहां पर $300 कैश इनाम आप जीत सकेंगे। तो एक तो ओनेया है जहां पर वंस इन अ शो आपको एक मौका दिया जाता है, इसके साथ आपके पास में सोशल मीडिया पर भी जाकर डेट्स AI अपग्रेड में भी आप पार्ट ले सकते हैं।

0: स्टेटस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: Put a smile on Dad's face with a gift from Bunnings.
4: When Dad's come in here, it's like a kid in a toy shop.
5: Dad loves to shop at Bunnings. You know, there really is something for every dad. The new water blaster, new drill, new barbecue.
3: At Bunnings, you'll find gifts built for Dad.
6: A Zito 18-volt drill driver and speaker kit, $99.98. Stanley 16-inch open-mouth tool bag, $41.98. Tradie-fitted trunks pack of 6, $40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
7: Bunnings Warehouse.
6: Lowest prices are just the beginning.
8: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
9: 2pm call out, we're on your way. Heading back to the office? We're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
10: Hey, still house hunting next weekend?
11: No, hopefully not. Going to an auction tomorrow.
10: Whoa, how did you sort things so quickly?
11: My BNZ home loan partner, Jane, met her last Saturday, got her home loan sorted, and she's even calling tonight, so we're ready for the auction.
10: All that from one person.
12: Go direct to a BNZ home loan partner and deal with the decision maker from search to settlement. Bank of New Zealand. Let's find a way. All home loans are subject to BNZ lending criteria, minimum equity requirements and terms and conditions. Up to a $150 establishment fee and other fees may apply.

0: Patty Gower.
1: Kyle Turner's
2: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Just chill.
3: जस चिल में अवि का साथ है और 104.2 FM प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं हूं आपके साथ में 6 तक. और आपको बता दूं, आज सुबह सुबह जबकि ऑल ब्लैक्स साथ में स्प्रिंग बॉक्स के बीच में जो खेल हुआ, यहां पर स्प्रिंग बॉक्स की जीत 33-26 से हुई. लेकिन इस गेम को लेकर दो ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स थे जो काफ़ी लोगों में एक चर्चा का विषय बन गई है. जहाँ पर पहला तो ये कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल ट्राई अवॉर्ड किया गया है स्प्रिंग बॉक्स को, जहां पर TMO को इन्वॉल्व नहीं किया गया. यानी कि कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्रिंजमेंट्स हुआ था इस फेज में, लेकिन TMO ने इसे अलाउ कर दिया है, या फिर इट वाज एन अनफेयरली अवॉर्डेड ट्राई, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं. इसके साथ में प्री मैच एक यूँ कहें एक दो एयरक्राफ्ट स्टेडियम के ऊपर से उड़ रहे थे, ताकि प्री मैच जो एक एटमॉस्फियर है उसको जुबलेशन की तरह ये मार्क कर रहे थे. लेकिन ये जो दोनों एयरक्राफ्ट से इसकी वीडियो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, ये काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था कि कभी ना कभी किसी एक स्टेज पर ये क्लिप कर देंगी अपना विंग्स जो स्टेडियम के रूफ के साथ में. इट वॉज़ अ प्रिटी क्लोज कॉल. और ये जो वीडियोज़ है, अगर जो आप देखना चाहते हैं तो गूगल करो कि आज सुबह का जो गेम हुआ है इसमें जो एयरक्राफ्ट प्री मैच उड़ी थी स्टेडियम के ऊपर से, तो ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड दे वे रियली रियली क्लोज टू क्लिपिंग द रूफ ऑफ द स्टेडियम. अगर जो ये हो जाता, ओ माय गॉड, तो कितने लोग अंदर बैठकर जो गेम देख रहे थे, इनके ऊपर ये रूफ शायद कोलैप्स भी हो जाता. तो इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल. और अगर जो आप इस वीडियो को चेकआउट करना चाहते हैं, यू कैन डू सो.

आप सुन रहे हैं हम पर, मैं हूं आपका साथी अवि, और मुझे एक इंटरेस्टिंग एक क्लिपिंग मिली है जो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर लूं। इसको टाइटल किया गया है इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस इन लाइफ। जब आप अकेले हो तो माइंड योर थॉट्स, जब आप अकेले हो तो माइंड योर थॉट्स, और इसके साथ में ये भी बताया गया है कि जब आप गुस्से में हो तो माइंड योर इमोशंस, और इसके साथ में ये भी बताया गया है जब आप फ्रेंड्स के साथ में हो तो माइंड

0: Just Chill.
1: Just Chill में 15 minutes away from 2 और आपके लिए रहेगा News at 2. उसके बाद में Epic Bollywood Challenge. आपको भी कुछ सुनना है तो 5599 पर आप अपना request हमारे पास में भेज सकते हैं.

0: You're listening to Avineet.
1: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि हमारे स्टूडियोज में 2:02 हो रहे हैं। ऐसे में इस आवा पर भी आपका खास स्वागत करते हैं, जबकि वी स्टार्ट दिस आवा ऑफन विद द एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जहाँ पर कोई ना कोई एक नया गीत आपके लिए चैलेंज की तरह ढूंढ कर लेकर आते हैं और उसे आपको पहचानना होता है बेस्ड ऑन द क्लूज जिसे हम आपके लिए उन्हें पढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट वीक सलेश ने किया था और उन्होंने मैं हूं ना का टाइटल ट्रैक पहचाना था एंड उस कंपटीशन को लास्ट वीक उन्होंने जीता था। आज भी एक इंटरेस्टिंग गाना है जिस पर काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए कुछ ट्रिविया लेकर आया हूं, साथ में इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जिसके बिना आपको पहचानना होगा। समय बस उतना ही होता है, जैसे ही क्लूज बताना शुरू करते हैं और गाना बजाने से पहले इसके बीच का जो समय है उसमें ही आपको अपने जवाब 5599 पर भेजने होते हैं। तो गाने को पहचानो, साथ में गाने के टाइटल या किस वर्ड से शब्दों से आप गाने को पहचानते हो वो लिखकर अपने नाम के साथ में 5599 पर आपको भेजना होगा। सो हियर इट गोज, इसके लिए भी बिल्कुल आप तैयार है, फ्लेक्स योर फिंगर्स एंड 5599 इज द नंबर। जो सबसे पहले मैसेज करेगा जवाब को, सही जवाब को, वही विनर ठहराएगा इस वीक। 1994 में रिलीज़ हुई ये फिल्म प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश सरकार को लेकर बनाई गई है। इनके खिलाफ एक आंदोलन को लेकर बयां करती है इस फिल्म की स्टोरी और उसके बीच में यानी कि आंदोलन के बीच में एक इमोशनल सेंसिटिव लव स्टोरी भी है जिसे कैप्चर किया गया है। लव स्टोरी है रज्जो और नरेन के बीच, एबली प्लेड बाय मनीषा कोइराला और अनिल कपूर। फिल्म को डायरेक्ट किया है विद्यु विनोद चोपड़ा ने और म्यूज़िक कंपोज किया है लेट लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर आरडी बर्मन ने। गाने लिखे हैं जावेद अख्तर ने और सारे गाने इस फिल्म के सुपर डुपर म्यूज़िकल्स ठहरे। और अगर जो आपको ये क्लू समझ में आया हुआ होगा तो आपको फिल्म का लाइन टाइटल पता लग गया होगा। अभी रिसेंटली इसी महीने इस फिल्म की 32nd एनिवर्सरी पर इस फिल्म को रीमास्टर करके रिलीज़ किया गया है विद अ लिमिटेड टाइम एडिशन, यानी कि थोड़े दिन के लिए इस फिल्म को रीमास्टर करके रिलीज़ किया गया। इस ओकेजन पर जावेद अख्तर, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और साथ में विधु ने एक इंटरव्यू में काफ़ी एनिकडोट्स शेयर किया, जिसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये है कि फिल्म के शूट के दौरान काफ़ी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण कुछ सेट्स को डिज़ाइन किया गया था जहाँ पर ऑल्टरेशंस लास्ट मिनट किए जा रहे थे। जो डायरेक्टर है विद्यु विनोद चोपड़ा, इन्होंने कहा कि जो एडिशनल हाउसेज है सेट्स पर इसे आप रिमूव कर दें क्योंकि फिल्म की बजट कंट्रोल में नहीं आ रही। तो इन बातों को सुनकर जैकी श्रॉफ ने कहा कि नहीं, ये पैसे मुझसे ले लेना, लेकिन इन घर को जो सेट पर जो एडिशनल हाउसेस है इनको बिल्कुल वैसे ही रहने दो। जब इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने अप्रोच किया था आर डी बर्मन को, ही वॉज वे पास्ट हिज पीक, यानी कि काफ़ी हिट फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक दिया था जिसे आज भी लोग सुनते हैं, लेकिन आर डी बर्मन के म्यूज़िकल जीनियस होने की किस्से बहुत है। कैसे एकटा सचिन ने जो म्यूज़िक लेकर इसको कंपोज किया गया था आर डी बर्मन द्वारा, उन्होंने बताया कि कैसे उनको समझने के लिए, सचिन को समझने के लिए काफ़ी देर तक आर डी बर्मन ने उनसे बातें की और बातें करने के बाद में तब फिर जो गाना है इनके लिए कंपोज किया गया। हालांकि ये जो फिल्म मैं और इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ ये आज के गाने से रिलेटेड नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये मुझे एक क्लिप मिला जो मैं आपको सुनवा दूँ जल्द से, कि जो दिखाती है कि कितने जीनियस थे आर डी बर्मन।
2: अल्टीमेटली 5-7 मिनट के बाद उन्होंने मुझे रोका, रुक, और उन्होंने बजाया दरो दीरो दीरो तो दररा दररा दररा दा दा। बोले देख सचिन तेरे बोलने में ना ता ये नोट बहुत निकलती है, मेरे को इधर तक आने का था इसलिए मैं तेरी आवाज सुन रहा था।
1: तो ये था म्यूज़िकल जीनियस आर डी बर्मन के बारे में जो सचिन शेयर करते थे और ओकेजनली करते हैं अपने किसी भी इंटरव्यू में। काफ़ी लोग सही ट्रैक पर है, आपने फिल्म को तो सही पहचाना, लेकिन और बताते हुए आर डी बर्मन काफ़ी समय स्पून्स और सोसेस का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि चुरा लिया है तुमने में जो आप शुरू में सुनते हो, जो जो एक बीट आती है जो ग्लासेस के साथ में, वहाँ पर सोसेस और साथ में ग्लासेस का इस्तेमाल किया गया है। फिर एक गाने में कंघी का भी इस्तेमाल किया गया है। ही वॉज़ अ म्यूज़िकल जीनियस, लेकिन बॉलीवुड में सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। और जो गाना है आज का, यह फिल्म की पहली हाफ में ये गाना फीमेल लीड मनीषा पे पिक्चराइज किया गया है, जहाँ उन्हें रियलाइज़ होता है दैट शी इज़ फॉलिंग इन लव विद द कैरेक्टर ऑफ नरेन। जब ये गाना लगेगा ना, जब मैं आपको प्ले करूँगा आपके लिए रेडियो पर, तब आप इसकी शायरी सुनना है, लाइन्स जो लिखे गए हैं इसे ध्यान से सुनना। प्यार की परिभाषा बेखूबी लिखा गया है, और पर्वतों से एक नदी सागर से मिलने थी चली, ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं जो लव की इमोशन है उसे पोर्ट्रे करती है। और इस फिल्म को बनाने के लिए एक, जब ये फिल्म बनी थी तो डायरेक्टर ने बताया कि उस समय एक ट्रेंड था कि जहाँ पर सिर्फ फास्ट नंबर्स ही एक्सेप्ट किए जाते थे, लेकिन इनको तलाश थी एक सूदिंग सोलफुल म्यूज़िक की, और जो रिक्वायरमेंट्स थे तब इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर ये इन्होंने अप्रोच किया आर डी बर्मन को। और इस फिल्म में काफ़ी हिट नगमे थे, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक लड़की को देखा गाने के लिए कुमार शानू को 5th कंसेक्यूटिव अवार्ड मिला। लेकिन आज का गाना, जैसे कि मैंने बताया है, एक सोलो फीमेल सॉन्ग है जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने। इस गाने के लिए उन्हें भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया था। तो एक बार फिर से, फिल्म की पहली हाफ में ये गाना फीमेल लीड मनीषा पे पिक्चराइज हुई है, जहाँ उन्हें रियलाइज़ होता है कि शी इज़ फॉलिंग इन लव विद द कैरेक्टर ऑफ नरेन। और अगर जो आपको पता है कि कौन सा गाना है, तो 5599 पर आप अपने जो जवाब है हमारे पास में भेज सकते हैं। लेकिन अब समय हुआ कि आपको वो गाना सुनवाएं।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: तो आज के लिए बॉलीवुड एपिक चैलेंज में यही गाना था आपके लिए और काफ़ी मैसेजेस आए हमारे पास में. किरण ने अपना जवाब भेजा था इसके साथ में. राजीव आपने भी मैसेज किया, सही पहचाना था आपने. कार्तिक और साथ में हेमंत और गौरव आप सभी का जवाब आया. लेकिन सबसे पहले जो मैसेज हमारे पास में आज आया है ये है रजनी का. रजनी ने फिल्म का टाइटल भी बताया, साथ में गाने को भी पहचाना और सबसे पहले अपना जवाब भी भेजा. थैंक यू सो मच आप सभी को पार्ट लेने के लिए. और अगले वीक एक और एक गाना आपके लिए लेकर आएंगे जिसके बारे में आपसे इसी तरह से एक फ़न बेस्ड गेम है और ये खेलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट वीक. लेकिन अभी के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच. इट्स 15 आफ्टर 2.

0: Wow.
1: Say wow. और प्रशांत आपका रिक्वेस्ट हमारे पास में आया है, इसे भी प्ले करने की थोड़ी देर में कोशिश करेंगे और साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स आपके साथ में स्पोर्ट्स की दुनिया से, ये भी बस थोड़ी ही देर में आपके साथ में शेयर करने वाले हैं।
2: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स।
2: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा कप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
3: At Bunnings, give Dad the gift of the whole warehouse this Father's Day. Whatever type of dad he is, from tool dad to barbecue dad, he'll find something he really wants with our wide range. Gift cards built for Dad at Bunnings. Available in-store and online. Bunnings
4: Warehouse. At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Party Curtains and Blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale must end Tuesday. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full-price products. Excludes clearance. See website for details.
5: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोगांव में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किवीज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स GWM मेलोगांव। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है। टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स, स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश, मयं पाला, कियारा अडवाणी, तारा सुपारिया एंड हुमा कुरेशी।
7: हेलो डैडी।
6: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास।
8: इट्स टाइम, आई एम कमिंग।
6: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
9: Oh hey! If you haven't received your enrollment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
10: Enroll, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
11: Zabardast hits.
12: Shuru ho jaye to rukte nahi.
11: Playing Bollywood's biggest hits.
13: हम पर समय हुआ कि आपके लिए लेकर आए इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो रिजल्ट्स हैं, जहां पर इस राउंड के जो मैचेस हैं अभी तक खेले गए हैं, इनमें मैनचेस्टर सिटी ने पैलेस को 4-1 से हराया। साथ में कल रात को लिवरपूल और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ, जहां पर दोनों टीमें फुल टाइम पर 2-2 गोल से बराबर ठहरी। इसके साथ में हल, जो न्यूली प्रमोटेड टीम है, कोवेंट्री को 1-0 से इन्होंने हराया है और दे आर The pool leaders at the moment, Bournemouth और साथ में Everton 1-1 से बराबर ठहरे हैं। इसके साथ में Newcastle की जीत Spurs के खिलाफ 2-0 से हुई। जो आधा मैचेस है, कल सुबह 1 पर Chelsea और Brighton के बीच में खेल रहेगा, उसी टाइम पर Leeds और Brentford भी एक दूसरे का सामना करेगी, एंड Sunderland takes on Fulham। फिर सुबह 3:30 पर Manchester United takes on Ipswich Town। इसके अलावा Tuesday को एक खेल रहेगा, जहां पर Arsenal और Aston Villa के बीच में एक इंटरेस्टिंग मैच रहेगा।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: Setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: हम पर जसिल के साथ में मैं हूं अवि, और आपको बता दूं, जबकि कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है ये चल रहा है, तो ऐसे में कई जगहों पर इसे बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ये आपको इनवाइट कर रही है, क्योंकि ये सेलिब्रेट कर रहे हैं टिल द 4th of September फ्राइडे एट द केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मेनेकाउ में आप जा सकते हैं, जो बिल्कुल वेयर हाउस के ऑपोजिट है। हर रात्रि को 7:30 PM से यहाँ पर कथा रहेगी। इसके अलावा रामकृष्ण मंदिर 25 Onslow Avenue मेनेकाउ में है, जो आपको इनवाइट कर रहा है। यहाँ पर भी जो सेलिब्रेशंस है, ये उत्सव है, रहेगा फ्राइडे 4th September तक, और यहाँ पर भी हर रात्रि 7:30 PM से कथा रहेगी। और भी कुछ जगह हैं जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को मनाया जा रहा है, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में और डिटेल मैं देने वाला हूँ।

0: astray by me.
1: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Got an event on the calendar? Then your signage should already be in motion. Speedy Signs produces pull-up banners, display walls, teardrop flags, and expo signage that grabs attention fast. They handle design, production, and install, so you can focus on conversations and conversions. Big presence, zero last-minute panic. If your event is coming up, now's the time. Don't leave it to the last minute. Call them now on 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz.
4: Score more Smeg with Smeg bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each. Or Cadbury and More Chocolate Blocks, $6.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
5: Farmers has the best gifts for Dad, with great grooming products, skincare and the latest fragrance, and casual styling from top to toe. There's coffee machines, cocktail makers and barbecue sets too, plus Lego sets for grown-ups. Farmers has the best gifts for Dad.
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani ho ya butter chicken, korma ya chana masala. Recipes chahe vegetarian ho ya non-vegetarian. Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain. To intezar kis baat ka? Aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye. Shan Foods, asli swad har ghar ke liye.
7: MediaWorks complaints. How can I help?
8: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
7: Nice.
8: And you talked me into creating this funny character.
7: Great.
8: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
7: Are you?
8: Yes.
7: Are you Bobby the Baker?
8: Yes.
7: What's that thing you do again?
8: Stop it.
7: You bring the mouth.
8: Stop it.
7: I'll bring the pie.
8: Stop it, please.
7: Okay.
8: Yeah, sure. I might have three stores now, but Bobby's more famous than me.
7: So what's the problem?
8: My name's Bruce.
3: Advertise with
9: MediaWorks.
3: New Zealand listens to us.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
12: हम पर रवि का साथ है और जबकि आपको बता रहा था कृष्ण जन्माष्टमी कहां कहां पर और सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो श्री राम मंदिर भी आप जा सकते हैं 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में, जहां पर जन्माष्टमी का जो उत्सव है ये जारी है. ये रहेगा 3rd of September तक, जहां पर रात्रि को 7:30 PM से आप कथा सुन सकते हैं. लेकिन फ्राइडे 4th of September को यहाँ पर 5 बजे शाम से पूजा शुरू हो जाएगी और उसके बाद में जो प्रोग्राम है रहेगा. कथा व्यास है आचार्य डॉक्टर श्री कैलाश आचार्य जी और यहाँ पर आप जा सकते हैं. इसके साथ में आउतेरवा सनातन संगम संस्था ये भी आपको इनवाइट कर रही है टू सेलिब्रेट श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जहाँ पर कथाकार रहेंगे पंडित कृष्णिल शेखर महाराज. यहाँ पर 4th September तक जो प्रोग्राम है ये रहेगी 7 PM से लेकर 9 PM तक. आपको सिर्फ जाना है वुमन केयर ट्रस्ट बिल्डिंग 2 Sutton Crescent पापटोई ओकलैंड और यहाँ पर जाकर आप कथा सुन सकते हैं. और जानकारी के लिए आप सुशील को 0274904611 पर कॉल करें. इसके अलावा श्री हनुमान मंदिर नोट्रो में कृष्ण जन्म उत्सव जो सेलिब्रेशन है 4th September तक जारी है, जहाँ पर 4th को खासकर जो सेलिब्रेशन है ये आरंभ होगी मध्य रात्रि से लेकर 12:30 बजे तक. इसके साथ साथ में माँ दुर्गा टेम्पल पापटोए 4 Battery Onslow Avenue पापटोए में भी जो प्रोग्राम है ये रहेगा 7 PM से लेकर 8:30 PM तक. लेकिन फ्राइडे का जो प्रोग्राम है इसे सेलिब्रेट किया जाएगा 8:30 PM से लेकर 12 बजे तक. इन जगहों पर आप जाकर ऐसे भाग ले सकते हैं जबकि कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है ये जारी है.

हम पर जशिल में मैं हूं अभी आपके साथ में। और किसी ने कहा है कि जिंदगी में कम लोग हो पर अपने ही हो। जिंदगी तमाशा नहीं है जो हमेशा हमको भीड़ चाहिए, है ना। इंटरेस्टिंग अनदर पर्सपेक्टिव जहां पर आप लाइफ को दे सकते हैं और देखकर यही सीख सकते हैं कि हाँ, हमारे पास में सिर्फ कम लोग हो लेकिन जेन्युइन लोग हो।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर रवि का साथ है एंड इट्स जस्ट आफ्टर थ्री और छः तक हमारा और आपका साथ रहेगा. इसका मतलब है कि वी आर हाफ वे थ्रू द शो और ऐसे में बाकी का जो हाफ सेगमेंट है आपके साथ में बिल्कुल धूमधड़ाके वाला ही रहेगा और आपके लिए और सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी लेकर आते रहेंगे. बस साथ देते रहिए 104.2 FM साथ में रोवा पर. आपको भी कुछ सुनना है तो 5599 पर अपना प्यारा सा मैसेज आप हमारे पास में भेज सकते हो. मैं हूँ अवि और छः तक साथ देता रहूँगा.

हम पर रवि का साथ है और 3:13 हो रहे हैं। अब समय हुआ कि आपके साथ में एक और एक खेल खेले, इंटरेस्टिंग सा। और मुझे जानना है कि आप म्यूजिकली कितने शार्प हो, क्योंकि मैं आपको एक क्लिप सुनवाने जा रहा हूं जो कि इंस्ट्रूमेंटल है और थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि शायद एक ही सेकंड के लिए ये प्ले होगा। काफ़ी आइकॉनिक ये साउंड है, म्यूजिक है, लेकिन अगर जो आप इसे पहचान लेते हो विद इन अ सेकंड, तो हेड्स ऑफ टू यू, गिव इट अ ट्राई। 5599 पर बिल्कुल आसान कर देंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो चलो आपको सुनवाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बस इतना ही आपको सुनवाएंगे और इसे पहचानिए कि किस फिल्म का ये गाना है जिसका इंस्ट्रूमेंटल या फिर इंट्रो हमने आपको सुनवाया है। और एक ही सेकंड का ये क्लिप था, अगर जो आप इसे पहचान जाते हैं तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आपकी इंटरेस्ट म्यूजिक में काफ़ी है। Here it goes once again। अगर जो आपको पता लगता है तो 5599 पर अपना जो जवाब है हमारे पास में अपने नाम के साथ में भेजिए।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win to return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Ma, it's already your dinner. Haan,
4: it's already mujhe bhi. Jab kashish desi ghee se khana banega, to yahi to hoga. New Zealand mein most advanced technology se bana. Grass-fed danedar cow ghee. Jab khane mein hogi itni shuddhata, itna swaad. तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
3: मुझे भी।
4: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियां पकाएं, खुशियां खिलाएं।
0: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
5: White separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
6: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
7: मिसेस सिंह
8: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
10: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel hi lo. Right now, Andrew Sims Merukau mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada Kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Merukau. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
0: Non-stop Bollywood.
11: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
12: हम पर आप सुन रहे हैं जशील लवी के साथ में और मानना पड़ेगा कुछ म्यूजिक के उस्ताद हैं जिन्होंने एक सेकंड के अंदर गाने को पहचान लिया अगर जो आपने अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाया है तो एक बार फिर आपको सुनवाएंगे सिर्फ जस्ट फॉर वन सेकंड और विद इन अ सेकंड अगर जो आपको पता लगता है ये किस गाने की म्यूजिक है तो 5599 पर आपको हमारे पास में टेक्स्ट करना होगा हियर इट गोस हाँ बस इतना ही सुनवाना था और अगर जो आपको पता लगता है कि किस गाने की म्यूज़िक है तो 5599 पर ज़रूर भेजें हमारे पास में आचारी साथ में फाल्गुनी आपका मैसेज आ गया है अगर जो आपने अभी तक फिगर आउट नहीं किया है तो एक सेकंड के लिए फिर से वापस प्ले करते हैं हाँ अगर जो पहचान पाए तो अपना जो जवाब है 5599 पर हमारे पास में भेजें फिर बाद में आपको गाना पूरा का पूरा सुनवाएंगे

0: get ready.
1: Passengers, stand by. The next humboarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: Bollywood ka asli blockbuster.
4: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
3: Playing Bollywood's biggest hits.
5: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और काफी लोगों ने एक सेकंड के अंदर इसे पहचान लिया है, जिनमें शामिल है करिश्मा, थैंक यू सो मच, 6141 आपने भी जवाब भेजा, इसके साथ में अतीश वीर आपने भी सही अंदाजा लगाया, प्रवीणा थैंक यू सो मच आपका भी जवाब हमें मिला, इसके साथ में सुदीप आपने भी मैसेज किया, शुक्रिया, ऐ सिंह आपने भी अटेम्प्ट किया है, एंड इट्स नाइस टू सी कितने लोगों ने सही पहचाना है विद इन अ सेकेंड। और इसके अलावा फिरोज पुकेकोही से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपने भी जवाब दिया, थैंक यू सो मच। और फाल्गुनी आपका भी जवाब मिला है, आपने आज के एपिक बॉलीवुड चैलेंज में भाग नहीं लिया, आपका मैसेज नहीं आया, कोई बात नहीं, आपने यहां पर मैसेज किया है, थैंक यू सो मच। और आपको बताएंगे नहीं बल्कि बिल्कुल डायरेक्ट सुनवाएंगे। और आचारी आपका भी जवाब आया था, तो कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में ये जो गाना जिसके लिए हमने आपको इंट्रो सिर्फ एक सेकंड के लिए सुनवाया था।

यह जस्टिल विद अवी और हम बोर्डिंग कॉल भी बिल्कुल जारी है, जहां पर आपके पास में मौका है एक ड्रीम आइलैंड एस्केप जीतने के लिए, जो सिर्फ एक बोर्डिंग कॉल अवे है। आपके हाथ लग सकते हैं टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस अ कूल हार्ड कैश $1,000 स्पेंडिंग मनी, और आपको वही करना है जो आप करते आ रहे हैं ताकि आप इस कॉम्पिटिशन में भाग ले सकें। आपको सिर्फ हमें सुनते रहना है सुबह 8 बजे वीकडेज में इसके आसपास, और साथ में अराउंड 11 AM और अराउंड 1 PM इन द आफ्टरनून, साथ में शाम को 5 बजे के आसपास आपको सिर्फ सुनना है फॉर द स्पेशल बोर्डिंग क्यू कॉल। और जैसे ही आप इसको सुने उसके बाद में 60 मिनट समय है आपके पास में रोवा पर जाने के लिए, और वहाँ पर जाकर आप सर्च करें हम बोर्डिंग कॉल और फिर बोर्ड नाउ लिख कर सबमिट कर दे। बस इतना ही आपको करना है। अगर जो आपको इस कॉम्पिटिशन पेज के लिए एक लिंक चाहिए टू मेक थिंग्स ईजिया, तो BC लिखकर 5599 पर मैसेज करो और आपको यहाँ से एक कॉम्पिटिशन पेज लिंक मिल जाएगा। दैट्स इट, एंड इतना करके यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेट अवे। यहाँ पर आपके पास में मौका है, तो इस मौके को आप मिस मत करना। हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतु। विजिट solomons.com. T's and C's do apply.

0: बीट ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
2: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
2: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
6: Kahani of Indelible Homes.
7: You won't be able to resist these meat week deals. Ah, smell that. Ah, hang on. Do you have the smell on your radio turned up? Ah, that's okay. I'll describe it. It is yum. Smell it yourself at Meat Week. On now at Pack and Save.
8: Say goodbye to winter.
9: Goodbye.
8: And hello to spring.
9: Hello.
8: This weekend at Risco's with new season savings store-wide and half-price Manchester and electrical deals. Say goodbye winter.
9: Goodbye.
8: Hello spring.
9: Hello.
8: With fresh savings at Risco's. See online for T's and C's.
10: Ma, it's ready for dinner. Ha,
11: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
10: मुझे भी।
11: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।

हम्पर, दिस इज मी अवि कीपिंग यू कंपनी, और चेतक हमारा और आपका साथ रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि आज सुबह सुबह ऑल ब्लैक्स और स्प्रिंगबॉक्स के बीच में जो रग्बी मैच हुआ, यहाँ पर दो तीन बातें सामने आई जो चर्चे में रही फॉर द रॉन्ग रीजंस। एक तो एक ट्राई अवॉर्ड किया गया स्प्रिंगबॉक्स को, जहाँ पर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुई इसको लेकर, काफ़ी लोगों ने डिबेट किया कि ये ट्राई अवॉर्ड नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा जो गेम से पहले प्री मैच दो एयरक्राफ्ट ने फ्लाई किया स्टेडियम के ऊपर से, तो ऐसा लग रहा था कि एक स्टेज पर वन ऑफ द एयरक्राफ्ट नीली क्लिप्ड द स्टेडियम रूफ। जी हाँ, काफ़ी क्लोजली ये गया है स्टेडियम के ऊपर से, और अगर जो ये क्लिप कर देती स्टेडियम के रूफ को तो एक डिजास्टर हो जाता। और इसके साथ साथ अभी आरएनजेड ने रिपोर्ट किया है कि काफ़ी लोगों को गेम देखने के लिए एंट्री नहीं मिली डिस्पाइट बीइंग द राइटफुल टिकट होल्डर्स। यहाँ से एक टूआ ग्रुप गई है न्यूजीलैंड से, और इन्होंने जाकर वहाँ पर फाइंड आउट किया है कि इनको एंट्री इसलिए नहीं मिली क्योंकि जो टिकट्स है ये कुछ ओवर सेल किए गए हैं फॉर द स्टेडियम, और कम नहीं बिल्कुल 2000 से लेकर 4000 के बीच में टिकट्स को ओवर सेल किए गए हैं। साउथ अफ्रीकन रग्बी यूनियन ने ऐसा बयान दिया है कि ये ट्रेवल एजेंसी की गलती है, और शायद आने वाले दिनों में आप इसके बारे में और भी सुन सकेंगे। लेकिन अभी के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो खास रग्बी देखने गए थे साउथ अफ्रीका, लेकिन इनको एंट्री नहीं मिली।

यह है जसशील और हम, और कमिंग अप एट 4 आपके लिए रहेगा न्यूज, और न्यूज के बाद में जसशील का कारवा चलता रहेगा हमारे साथ में। कीप एंजॉयिंग, कीप हमिंग 104.2 FM साथ में रोवा पर।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
1: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Good afternoon to you. I'm Jeff Bryan with the latest at 4. The National Party says it isn't fair that some New Zealanders living overseas are not repaying their student loans. The party wants to impose tougher penalties for New Zealanders living abroad by increasing the interest rate on their loan. A serious crash this afternoon between a car and a motorcyclist in the South Auckland suburb of Flatbush. Initial indications suggest one person sustained critical injuries. Earlier, police confirming one person died after a single vehicle crash this morning in the South Island's Waitaki district. Met Service has warnings in place for heavy rain, strong winds and snowfall across parts of the South Island. Here's Met Service's Heather Keats.
7: Flurries tomorrow, especially in the evening for Queenstown, Wanaka, Alexandra, down to 800 metres for Christchurch. Could even get to near sea level tomorrow night for Dunedin's.
6: And rescue efforts have entered their fifth day in Nepal and Tibet after flash flooding devastated a border area. In Nepal, at least 675 people have died, with another 2,400 people still missing. To sport, an emotional South Africa coach, Rassie Erasmus, has fired back at claims his team used illegal scrummaging during the second test with New Zealand in Cape Town. His counterpart, Dave Rennie, accused the Springboks forwards of walking during the 33-26 win. Erasmus, not happy.
8: If the referees get caught up by that, then there's obviously must a plan to get that message out. We're not going to stay quiet and say, oh, you're right, we're walking around. We're not fucking walking around.
6: Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com.
0: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: You're listening to Avineet.
9: On the waves of hum, मैं हूँ अभी आपके साथ में और साथ देता रहूँगा छः तक, और इस आवाज़ पर भी आपका खास स्वागत करते हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं। आप देश के किसी कोने में हैं या फिर विदेश में हैं, रोवा के जरिए हमारे साथ में जुड़े हैं। वेलकम टू द शो, ये है जस्ट चिल का कारवा और हम साथ में मिलकर कदम से कदम मिलाकर इस सफ़र को तय करते रहेंगे। आपको भी कुछ सुनना होगा, 5599 पर अपनी जो रिक्वेस्ट है हमारे पास में भेज सकते हैं। अभी का ढेर सारा प्यार इस आवाज़ पर भी रहेगा और साथ में कुछ ज़रूरी बातें भी होती रहेंगी।

हम पर, दिस इज मी अवि कीपिंग यू कंपनी, और 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। अगर जो इस वीक को वापस रिकैप करके देखें तो काफ़ी बुरी खबर नेपाल से आई, जहां पर फ्लैश फ्लडिंग के कारण काफ़ी लोग आज भी मिसिंग हैं। जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, यहां पर आज भी रेस्क्यू वर्कर्स कुछ 3000 लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो अब भी मिसिंग हैं। और इस इंसिडेंट के कारण कुछ ऐसे छोटे छोटे खबर है जो सामने आ रहे हैं, जैसे एक काफ़ी डिस्ट्रोट फादर थे, ये गए हैं एक आर्मी बेस पर जहां पर जितने भी सर्वाइवर्स हैं इनके नाम को एक लिस्ट में लिखकर वॉल पर चिपकाया गया है। तो ये जो फादर है काफ़ी आशाओं के साथ में उस लिस्ट में अपने बेटे का नाम ढूंढते रहे, लेकिन इनको अपने बेटे का नाम उस लिस्ट में नहीं मिला। शायद वो आज भी मिसिंग हो, या फिर कौन जाने कि वो एक इस बाढ़ का शिकार हो गए हो। तो काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ है जो सामने आ रही हैं। रेस्क्यू वर्कर्स आज भी अपना काम कर रहे हैं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, लेकिन हम अपनी तरफ से जो प्रेयर्स है ये ऑफर कर सकते हैं, या फिर आपको कोई लेजिट कोई डोनेशन पेज मिले तो वहाँ पर भी जाकर आप सहायता कर सकते हैं।

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: Jen didn't think she needed a DVS system.
3: Oh, I've got insulation in that.
2: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
3: Ah, yeah.
2: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
4: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
5: Say goodbye to winter.
6: Goodbye.
5: And hello to spring.
6: Hello.
5: This weekend at Risco's with new season savings store-wide and half-price Manchester and electrical deals. Say goodbye winter.
6: Goodbye.
5: Hello spring.
6: Hello.
5: With fresh savings at Risco's. See online for T's and C's.
7: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
8: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
9: अब हमारा क्या होगा?
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
8: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
12: You filled the pinata before I sealed it, right?
13: No, you did.
12: Oh, I thought you did.
14: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
15: The sleepless nights. The aching knees. The energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
0: Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
16: हम पर मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ और सैंडी और रुजबे ने अपने अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में इस बार बातें की हैं हरजोत सिंह के साथ में और गगन संधू के साथ में. अब आप पूछेंगे कि ये दोनों शख्स कौन हैं, तो इन्होंने रिसर्च किया है, साथ में प्रेजेंट किया है हरजोत सिंह ने, और गगन संधू ने डायरेक्ट किया है एक ग्राउंड ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट्री को पंजाब टू आउतेरोवा, जहाँ पर कहानियों को शेयर किया गया है कि कैसे 100 ईयर्स ऑफ रिजिलियंस, माइग्रेशन और आइडेंटिटी को कर ये न्यूजीलैंड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. ये जो पंजाबी कम्युनिटी है ये कहीं ना कहीं 100 साल पहले से यहाँ पर है और बहुत हार्डवर्क किया है ताकि इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट कर सके. तो जो हिस्ट्री है ऑफ पंजाबी माइग्रेशन, इसके बारे में यहाँ पर बातें हुई हैं और काफ़ी रिसर्च के साथ में सही फैक्चुअल स्टोरीज को लेकर आकर शेयर किया गया है. ये सभी कुछ आप जान सकते हैं, सुन सकते हैं. ड्राइव लिख कर 5599 पर भेजें और आपको लिंक मिल जाएगा. इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्री है पंजाब टू आउतेरोवा, ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, जिसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं.

साथ में एंटरटेनिंग बातें भी करते रहते हैं, कुछ फन क्विजेस भी रहती हैं और साथ में कुछ न्यूज़ को लेकर भी बातें करते हैं, करंट अफेयर्स को लेकर बातें करते हैं। लेकिन कुछ और ज़रूरी बातें हैं जैसे आपके हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ ढूंढ कर लेकर आते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आखिरी बार आपने अपने हियरिंग टेस्ट कब करवाए थे? तो अगर जो एक साल से ऊपर आपका जवाब है तो इट्स नाउ टाइम टू मेक अनदर अपॉइंटमेंट, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपने हियरिंग को इंटेक्ट रखें, सेफ रखें और साथ में आपको किसी भी तरह से हियरिंग लॉस ना हो। इसके लिए आपको ईयरली हियरिंग टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। जो बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है आपके इलाके में आप ढूंढ सकते हैं, इट टेक्स यूजुअली नॉट मोर देन 10 मिनट्स। यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिशनर है आपके हियरिंग टेस्ट के बेसिस पर आपको अगला कदम क्या उठाना है इसके बारे में ये एडवाइस कर सकते हैं। और इसके अलावा अक्सर हम ईयर को निग्लेक्ट करते हैं, हमको पता भी नहीं होता है अक्सर कि हमारे जो ईयर कैनल होते हैं ये कभी कभी डेड स्किन या फिर वैक्स से काफ़ी फुल हो जाते हैं और इसके कारण हमें सुनने में परेशानी होती है, तो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने हियरिंग टेस्ट करवाते रहें। हाँ, सेलेक्टिव हियरिंग के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं घर पर सेलेक्टिव हियरिंग करते हैं, जो बातें उनको नहीं सुननी है तो नहीं ही सुनेंगे। लेकिन जो हियरिंग टेस्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप भी इसके लिए अपने आप को स्केड्यूल कर सकते हैं।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है. We gotta go.
2: Are you ready? Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
4: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods multigrain dosa batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
7: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाए. हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर. ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर. 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध. आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है. स्वाद भी, सेहत भी.
8: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sending. And you need to know about it.
9: Join the Tribe!
8: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
9: join the Tribe!
10: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
11: Their masalas are gram fresh, in-house every single day.
10: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
11: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
10: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
12: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
13: Playing Bollywood's biggest hits.
14: आप अक्सर हमें अपना प्यार देते रहते हैं हमारे 104.2 FM साथ में रोवा ऐप पर. इसके अलावा आप हमें मैसेज भी करते रहते हैं 5599 पर और इसके साथ में 0800004866 पर आप कॉल भी किया करते हैं. लेकिन एक और एक जरिया है हम फेसबुक पेज, जहां पर आपको जाकर हमें फॉलो करना है, क्योंकि यहां पर ढेर सारे अपडेट्स हम डालते रहते हैं. इसके अलावा जितने भी हमारे रिस्पेक्टिव आरजेज होते हैं अपने अपने शो में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए पोस्ट करते हैं. ऑन टॉप ऑफ देट यहां पर कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जिसके तहत आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें.

0: हम पर अभी आपने अभिजीत को सुना अपने सुरीले अंदाज में, और अभिजीत ने एक इंटरव्यू में बताया कि इनका ये एक स्टाइल बना जबकि ये बड़े ही सॉफ्टली गाते हैं, और ऐसा इंटेंट किया कि सॉफ्टली गाए ताकि इनकी एक अलग पहचान बन सके। और इसके बाद में काफ़ी जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जिनको सॉफ्ट गाने के लिए हमेशा अभिजीत ही याद आते थे। अभिजीत ने बताया कि एक समय था ही वॉज़ वेरी क्लोज टू वर्किंग विद द लेट आरडी बर्मन, जबकि एक फिल्म आई थी आनंद और आनंद, इसके लिए इनको चुना गया था टू प्ले बैक फॉर देवानंद सन। लेकिन हुआ यूं, एक दो गाना रिकॉर्ड करने के बाद में इनको किसी वजह से निकाल दिया गया था।
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
3: ये गलत बोल दिया यार।
2: और पहनता भी नहीं उसको।
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी, ब्रांड हो गया ना
2: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
5: Zero with an X.
6: You started your business for a reason, remember? Then all of a sudden, invoices and bills and payroll started getting in the way, and that is where Xero comes in. Connect your invoicing, bank feeds, bills and payments in one place. Real-time cash flow without all the added chaos. Xero takes care of the numbers so you can get back to doing what you love. Search Xero today.
7: Playing Bollywood's biggest hits.
8: Project Gandhi.
9: Yo.
10: You're listening to Avineet.
0: हम पर हमारे स्टूडियोज में 5:01 हुआ है, 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। सो दिस इज द फाइनल आवर ऑफ द शो, और इस आवर पर भी आपके साथ में ढेर सारी बातें होंगी, इंटरेस्टिंग लाइनअप ऑफ सॉन्ग्स, ये सभी कुछ आप सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर। बस सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप हमिंग।

हम पर रवि का साथ है और मैं अब आपको सुनवाने जा रहा हूँ एक गजल। जी हाँ, एक गजल आपके लिए प्ले करूंगा। अगर जो आपको भी गजल पसंद है, इसके बारे में आप 5599 पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन 6 बजे के बाद में जिकाश भी हो जाएंगे आपके साथ में, लेकर आएंगे मेलोडियस नंबर्स, इसका भी आप इंतजार करिए और उनका भी साथ दीजिएगा। लेकिन अभी के लिए आपके लिए पेश कर रहा हूँ एक गजल। इंजॉय दिस वन।

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड

0: At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester home decor, fabric, craft, knitting yarn, party, curtains and blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale must end Tuesday. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
1: A lot of injuries happen on the weekend. So if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
2: Big Say's having a whiteware sellout today. We've got washing machines, dryers, fridges and dishwashers from just $2.98. Get a Samsung 6kg washer only $6.99 or a Panasonic 332-litre fridge only $9.60. Need it today? We have stock. Plus until tomorrow, get 30 months interest-free store-wide. T's, C's and credit criteria apply, only at Big Save.
3: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा एन्ना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
4: हाँ. अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
6: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
7: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश मयंक पाला कियारा अडवाणी तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी
8: हेलो डैडी
7: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास
9: इट्स टाइम आई एम कमिंग
7: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग टीबीसी

0: हम पर आप सुन रहे हैं जश लवी के साथ में, और अक्सर आपको ये भी ख्याल आता होगा कि 60s और 70s के गाने हम सुन नहीं पाते हैं, 80s के गाने हम सुन नहीं पाते हैं। तो आपके लिए हम म्यूज़िक स्टेशंस का ऑप्शन अवेलेबल है रोवा ऐप पर। आपको सिर्फ रोवा डाउनलोड करना होगा जो ऐप है, उसके बाद में आप हम म्यूज़िक स्टेशंस पर जाकर हम रिवाइंड, जहां पर 60s और 70s के खूबसूरत गाने हैं, इन्हें जाकर आप सुन सकते हैं। इसके अलावा जो 80s जुकबॉक्स है, जहां पर 80s के जो नगमे हैं, गाने हैं, इसे भी आप जाकर इंडल्ज कर सकते हैं। इसके साथ में फीजी भजन से अगर जो आप भजन सुनना पसंद करते हैं, तो ये कॉन्वीनियंस भी आपके पास में है। एंड फॉर ऑल योर पंजाबी पंपिंग हिट्स, चर्दी कला है वहां पर, ऑर्गेनाइज किया गया है। फीजी कीर्तन संग्रह है, जहां पर फीजी के प्रमुख कलाकारों की आवाज में यहां पर भक्ति रस कीर्तन को भी रखा गया है खास आपके लिए। साथ में राहत फतेह अली खान की जो गाय हुई सूफी और कवालियां हैं, ये भी आपके लिए स्टोर किया गया है। तो ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको सिर्फ फायदा उठाना है हम पर जाकर, जो रोवा ऐप है, हम म्यूजिक स्टेशंस है, हम म्यूजिक स्टेशंस, यहां पर जाकर आप इसे जरूर चेकआउट करें। आई एम प्रीटी श्योर आपको भी पसंद आएगा जो प्लेलिस्ट है यहां पर।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम

हम पर, मैं हूँ अभी आपके साथ में, और बातें कर लेते हैं फेलिया को लेकर। कुछ लोगों का मानना है कि जो नाकामयाबी है, फेलिया है, ये आपके रास्ते की रुकावट है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो फेलिया है, ये आपके कामयाबी की पहली सीढ़ी है। जी हाँ, अक्सर जो आपकी जर्नी है ये स्टार्ट होती है एक फेलियर के साथ में। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उस पहली सीढ़ी के बाद में आप निराश मत हो, नाराज मत हो।

बस थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ बना रहेगा। ऐसे ही आप बस इन चंद मिनटों में भी हमारा साथ देते रहिए। 0800-004-866 जो नंबर है हमारा मैजिक नंबर, और साथ में 5599। इसके अलावा रोवा पर आप सुनते रहिए, हमारा साथ देते रहिए।

हम पर आज के लिए हमारी तरफ से बस इतना ही। 12 बजे से आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी हम आपके साथ में होते हैं ऐसा लगता है कि समय को पर लग गए, क्योंकि टाइम जस्ट फ्लाइज। और यही बातें आपसे कहकर जा रहे हैं, वादा करके जा रहे हैं कि एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। आप कल रात को लेकर आएंगे मंडे नाइट को आपके लिए नाइट कैफे, और इसका भी इंतज़ार करिएगा। इन द मीन टाइम संडे अभी भी बाकी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। डू टेक केयर, बाय।

The 30th of August 2026. August समाप्त होने में एक ही दिन बचा है, तो यूं ही देखते ही देखते हम पार कर जाएंगे 2/3 of the year. चार महीने बाकी रह जाएंगे once we get over tomorrow, और ये साल भी बस देखते देखते ही खत्म हो जाएगा. तो क्या आपके plans are they still on track? अगर है तो भाई बढ़िया है, अगर नहीं है तो इसके बारे में आप कर क्या रहे हैं? रीसेट कीजिए, रिस्केड्यूल कीजिए और कोशिश आप करते रहिए. वैसे एक प्रेरणादायक पिक्चर या फिर मीम, नॉट मीम, एक फॉरवर्ड मैसेज मेरे पास आया है एंड इससे मैं काफ़ी कुछ रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को इस सिचुएशन में मैंने देखा है. नाउ नो ऑफेंस टूवर्ड्स एनीवन, लेकिन इसके बारे में आप सोचे, इसके बारे में आप कुछ दिमाग चलाए तो शायद कुछ लोगों का चेहरा भी आपके सामने आ जाएगा. किसी ने लिखा है कि खाली दिमाग ही सबसे ज़्यादा शोर करता है. इसमें मिलता जुलता कहावत है कि एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज. तो खाली दिमाग ही सबसे ज़्यादा शोर करता है. ऐसा क्यों? जब मन के पास कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य ना हो या फिर कोई रचनात्मक काम नहीं होता है तो बेकार के विचार, चिंताएँ और नकारात्मक बातें उसे घेर लेती है. इसीलिए अपने मन को सही दिशा में लगाइए, कुछ नया सीखिए, अपने लक्ष्य पर काम कीजिए और खुद को बेहतर बनाने में समय लगाइए, क्योंकि सबसे बहुमूल्य चीज़ आपके पास है वो है आपका समय जो सीमित है. तो इसी विचार के साथ में आइए शुरू करते हैं संडे नाइट मेलोडीज दिल से कार्यक्रम में. मैं जिकाश आपके साथ में शामिल हो चुका हूँ. रात 12 तक हम आपके हम सफ़र बनकर यूं ही चलने वाले हैं. स्वागत कर रहे हैं आपका जो भी कुछ आप कर रहे हैं. आई होप यू आर बीइंग सेफ आउट देयर. कल बारिश ज़्यादा हुई है, आई होप ये कुछ ज़्यादा तकलीफें आपको आपके लिए नहीं लेकर आया है. एंड नाउ यू आर जस्ट रिलैक्सिंग और सोमवार के लिए बस अपनी तैयारी कर रहे हैं. जो भी कुछ कर रहे हैं आप सभी का दिली इस्तकबाल कर रहे हैं ऑन संडे नाइट मेलोडीज एट फ्रॉम द एयरवेव्स ऑफ हम ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोबा. आप सभी को जिकाश का नमस्कार. क्यों रहा?

सबसे पहले आज देख लेते हैं कि कहां पर क्या कुछ हो रहा है जिसकी जानकारी हमारे तक पहुंचाई गई है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय श्री कृष्ण, राधे राधे हम कह रहे हैं। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट कृष्ण जन्माष्टमी मना रही है टिल 4th of September। ये शुरू है कल से एट द केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मनुकाव में, रामकृष्ण मंदिर 25 ओंसलो एव मनुकाव में भी अष्टमी मनाया जाएगा राइट थ्रू टिल 4th September। हर रात 7:30 PM पर कथा शुरू होगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड संगम एनजेड संगम इज प्लीज टू इनवाइट यू ऑल फॉर देयर कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव 2026 28 August से शुरू हो चुका है, 4th September तक चलता रहेगा एट द डिको ऑफ एलिगेंस 60 लंबी ड्राइव मनुखाव में। हर रात कथा 7:30 PM शुरू होती है। श्री राम मंदिर पर भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में। 3rd September तक पूजा 6 बजे से शुरू होती है होगी और 4th September को पूजा 5 PM पर शुरू हो जाएगी। इसके बाद में हवन होगा 6 बजे, 7 पर आरती एंड 7:20 PM पर कथा आप सुनने वाले हैं। आचार्य डॉक्टर श्री कैलाश आचार्य जी द्वारा यहाँ पर कथा किया जाएगा। और 13वां सनातन संगम संस्था ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रही है एट वुमन के ट्रस्ट बिल्डिंग 2 Saran Crescent पपटोटे में। यहाँ पर कथाकार रहने वाले हैं पंडित कृष्णील शेखर महाराज जी। हर रोज पूजा और कथा 7 बजे से शुरू होती है। श्री हनुमान मंदिर नोत्शो में भी कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है 29 August से लेकर 4th September के बीच में। आखिरी रोज यहाँ पर कथा या फिर अष्टमी सेलिब्रेशंस उत्सव मनाया जाएगा फ्रॉम 12 AM टिल 12:30 AM। कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है माँ दुर्गा टेम्पल पॉटोटोय में 4/3 ओंसलो एफ पॉटोटोय में। हर रात कथा 7 से 8:30 PM शुरू होती है। फ्राइडे 4th September को कथा 8:30 PM शुरू होगी, रात 12 पर समाप्त होने वाली है।

0: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
1: Yes, but I want to subdivide too.
0: Zelo.
1: Zelo?
0: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes packed with premium inclusions with full subdivision support if you need.
1: Really?
0: Yep. From planning and consents through to construction, the team can help manage the entire process.
1: Zelo. I like the sound of that.
0: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
2: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश मयंक बाला कियारा अडवाणी तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी
3: हेलो डैडी
2: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास
4: इट्स टाइम आई एम कमिंग
2: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग टीबीसी

सनराइज मेलोडीज में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। हम बोर्डिंग कॉल, इसके बारे में तो आपने सुन ही लिया है। हैव यू टेकन टाइम आउट टू गेट इनटू द कंपटीशन? अगर नहीं तो भाई क्या कर रहे हैं आप? दो लोगों को रिटेन या टिकट्स हम देना चाहते हैं, इतना ही नहीं $1000 स्पेंडिंग मनी भी आपका हो सकता है। तो जितनी बार आप एंटर करेंगे उतनी बार आपके पास उतने ज़्यादा मौके रहेंगे टू विन। तो मेक श्योर कि आप हमें सुनते रहे एवरी डे, नॉट जस्ट वीकडेज में, एवरी डे आप सुने, क्योंकि आपके लिए हम खबर सनसनीदार लाते रहते हैं और एंटरटेनमेंट लाइक नन आधा पहुँचाते रहते हैं। तो सुबह 8 बजे, 11 बजे, दिन में 1 बजे और शाम 5 बजे, मंडे टू फ्राइडे आप सुने, क्योंकि हम आपके लिए स्पेशल बोर्डिंग कॉल यहां से अनाउंस करेंगे। वंस यू हियर दैट, यू हैव टू गो टू रोवा और हमारे हम बोर्डिंग कॉल कंपटीशन में जाकर आपको टाइप करना है बोर्ड नाउ, क्योंकि आप इस फ्लाइट पर ज़रूर होना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे अलाउ नहीं करते। आपको अलाउ है, अलाउड है, तो मेक श्योर यू बोर्ड, गेट ऑन टू द कॉम्पिटिशन एंड मेक श्योर कि यू काउंट योर लकी स्टार्स। राइट, तो इतना ही करना है आपको। जब भी हम स्पेशल बोर्डिंग कॉल जारी करें, 60 मिनट से आपके पास टू गेट ऑन रोवा एंड टू टाइप बोर्ड नाउ, एंड यूं ही आप कॉम्पिटिशन में शामिल हो जाएंगे। अगर आपको लिंक चाहिए फॉर रोवा, ROVA लिखकर भेजे 5599 पर, या फिर B, C ये लिखकर भेजे 5599 पर, यू विल स्ट्रेट अवे गेट द कॉम्पिटिशन पेज लिंक। वीड लाइक टू थैंक सोलोमन आइलैंड्स, जिसके ज़रिए से ये मुमकिन हो रहा है, फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतु। solomons.com आप विजिट करें, T's and C's भी आपको देखने को मिलेंगे।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

Now, let's spark some controversy. Politicians, आप तो जानते हैं politicians के बारे में. Do you think दुनिया में कोई भी एक बहुत ही सच्चा politician हुआ है? Now, I don't need your answers. इसके बारे में आप सोचें. Campaigns करते हैं कि भाई हमें वोट दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत कुछ कहा है लेकिन किया है इतना ही जिससे उनके बैंक बैलेंस में बढ़ोती हो. एंड दैट्स माई टेक अबाउट पॉलिटिशियंस. चाहे कोई कितना भी कह ले, एट द एंड ऑफ द डे दे आर सीकिंग पावर. पावर क्यों? क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स गुड मनी. दो वील हैव अ लुक एट वॉट आवर काउंसलर्स एंड ऑकलैंड काउंसिल भाई कितना कमाते हैं, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो बस जुड़े रहे. विल टेक अ लुक एट जो काउंसलर्स को आपने वोट करके काउंसलर्स बनाया है, ये कितना कमा रहे हैं और उस कमाई को वो क्या अदा कर रहे हैं. आर दे डूइंग व्हाट दे टोल्ड यू दैट दे विल डू वंस दे गेट इनटू ऑफिस? तो इसके बारे में बातें करेंगे बस आफ्टर द ब्रेक.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
4: And award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
5: Kahani of Indelible Homes.
6: Score big at Rebel with deals for Dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for Dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: To infinity and beyond. Be in to win one of 500 exclusive Platinum Buzz Lightyear Ushies at Woolworths. Just boost the offer in the Everyday Rewards app, spend $30 or more and scan to enter. Offer ends 30th of August. T's and C's apply. Only at Woolworths.
8: MediaWorks complaints. How can I help?
9: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
8: Nice.
9: And you talked me into creating this funny character.
8: Great.
9: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
8: Are you?
9: Yes.
8: Are you Bobby the Baker?
9: Yes.
8: What's that thing you do again?
9: Stop it.
8: You bring the mouth.
9: Stop it.
8: I'll bring the pie.
9: Stop it, please.
8: Okay.
9: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
8: So what's the problem?
9: My name's Bruce.
10: Advertise with
11: MediaWorks.
8: New Zealand listens to us.
12: The beat of Bollywood.
13: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
12: Dil se, dil se, dil tak.
14: Alright, welcome back to Sunday and Melodies, जहाँ पर हमने बातें करनी शुरू की थी कि आपके rates जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसमें से कितना हिस्सा लोगों के जेब में जा रहा है। तो आपने जिन काउंसलर्स को इलेक्ट किया है टू डू स्टफ फॉर यू फॉर योर टाउन, क्या वो उतना कर रहे हैं? मैंने एग्जांपल दिया कि 6-7 सालों में मेरा टाउन रेट सिटी रेट डबल हो गया, लेकिन आई हैवन सीन एनी इम्प्रूवमेंट इन माय एरिया। ना ही स्ट्रीट लाइट्स अपग्रेड हुए हैं, हाँ 2-4 पेड़ पौधे डाले हैं काउंसिल ने, विच हैज़ कॉज्ड इवन मोर ट्रबल इन आवर स्ट्रीट। कई सारे ट्रक्स पार्क हो रहे हैं जिसके बारे में हमने कंप्लेंट्स की है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ किया नहीं जा रहा है बाय द काउंसलर्स। रेट्स बराबर ले रहे हैं क्या, काम भी उतना कर रहे हैं? तो आइए देखते हैं वेजेस सैलरी कौन कितना कमा रहा है। वेन ब्राउन, ही इज एट एज ऑफ 2025, अभी 2026 वाला रिपोर्ट नहीं आया है, लास्ट ईयर ही वॉज अर्निंग $306,741। ये उनकी सैलरी थी। एंड्रयू बैका जो एक काउंसलर है वो 138,000 पर थे। जोसफिन बाटली 135,000। गोइंग डाउन द लिस्ट, ऐसा कोई नहीं है जो 100,000 से नीचे कमा रहा है। द लिस्ट दैट समवन इज गेटिंग एज अ काउंसलर इज वेन वोका, जिनको $115,947 पे किया जा रहा है। ही एक्चुअली गोट अ पे कट फ्रॉम 2024 टू 2025, -10% इनके पे में डिक्रीज हुआ है। शायद बंदा उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। एनीवे, हु नोज। आप क्वेश्चंस पूछते रहे, जब भी आपको मौका मिलता है टू वॉइस योर कंसर्न्स, मेक श्योर यू टेक पार्ट इन दोज एक्टिविटीज।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
7: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
6: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
7: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
6: iVillage at Victoria, Indim Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.

बोलो, वेलकम बैक टू संडे नाइट मेलोडीज, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। हर रविवार की रात 6 से 12 बजे के बीच में संडे नाइट मेलोडीज दिल से कार्यक्रम लेकर आते हैं, जहां पर हर अलग घंटे पर कुछ अलग हम करने की कोशिश करते हैं। एंड बिटवीन 7 to 8 आपके लिए हम नॉस्टैल्जिया नाइट्स लेकर आते हैं, कुछ यादें ताज़ा करते हैं, कुछ गाने सुनते हैं। वो गाना कब रिलीज़ हुआ था, जिस साल में रिलीज़ हुआ था, उस साल में क्या कुछ सिग्निफिकेंट हुआ था इन द वर्ल्ड, या फिर आपकी लाइफ में क्या कुछ हुआ था। मे बी अ सॉन्ग दैट आई प्ले मेक्स यू रिमेंबर और रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग मैजिकल दैट हैपन इन योर लाइफ, या फिर समथिंग सैड जो आपकी लाइफ में हुआ था, समथिंग सिग्निफिकेंट विच हैज़ मेड यू द पर्सन दैट यू आर टुडे। तो आइए स्वागत करते हैं आप सभी का ऑन दिस आवर बिटवीन 7 to 8 नॉस्टैल्जिया नाइट्स में। हम आपका स्वागत कर रहे हैं एंड विल क्रैक इन टू दिस विद भाविन धनक। इनके द्वारा ये गीत को सुनिए और फिर हम और भी बातें करेंगे। क्योरा

भाविन धनक की आवाज आपके लिए हम शामिल कर रहे थे फिल्म का नाम अलोन, जिसमें दी करंट मैरिड कपल बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर इन दोनों को देखा गया था ऑन स्क्रीन, एंड बहुत ही लाजवाब ये फिल्म रही है। इफ़ यू हैवन वॉच्ड, यू शुड टेक टाइम आउट टू वॉच दिस मूवी। 2014 वो साल जब दुनिया में कई कुछ मेजर इवेंट्स हुए थे। MH370 ये गायब हुआ था, और एक मलेशियन एयरलाइन को शूट डाउन किया गया था इन यूक्रेन। इसके अलावा इफ़ आई गो थ्रू द लिस्ट, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अगर बातें करना शुरू करें तो ये घंटा समाप्त हो जाएगा। 71st गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स ये बेवली हिल्स कैलिफोर्निया में आयोजन इसका हुआ था, और फीफा बलोन डियो अवार्ड्स सेरेमनी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में ये हुआ था, जिसमें द इवेंट ऑनर्ड द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स एंड कोचेस ऑफ द ईयर, विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो विनिंग द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द ईयर 2014। तो क्या कुछ और आपके लाइफ में हुआ था, अगर कुछ स्पेशल आप शेयर करना चाहते हैं तो डू शेयर विथ मी। मेरे लिए 2014 वॉज द ईयर वेन आई लॉस्ट माई डैड, तो नॉट द ग्रेटेस्ट ईयर फॉर मी, लेकिन इट हैज़ शेप्ड माई लाइफ एंड हु आई एम एट द मोमेंट हैज़ बीन अफेक्टेड बाई वॉट हैपन बैक इन 2014। नाउ आपको मैं शेयर नहीं करना चाहता, तो लेट्स गेट आउट ऑफ इट। फादर्स डे ये है अगले रविवार को, और इसके लिए हमारे साथ में होकर आप दो कॉम्पिटिशन्स में शामिल हो सकते हैं। एक है डेड्स AI अपग्रेड, योर डेड इज ही योर सुपर हीरो। अगर सुपर हीरो है तो भाई किस किस्म के सुपर हीरो है? डज ही मेक्स ऑल योर प्रॉब्लम्स गो अवे? क्या वो एक कारपेंटर है? ही मेक्स थिंग्स लुक ईजी वेन ही इज फिक्सिंग स्टफ। जो भी हो, जिस तरह से अपने डेड को आप इमेजिन करते हैं एज अ सुपर हीरो, उस तरह का एक AI जनरेटेड सुपर हीरो एवटार आपको बनाना है ऑफ योर डैड। एंड वंस यू डू दैट, अपनी पूरी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी लगा दे। AI यूज़ करना तो अब शायद काफ़ी लोग जान गए हैं, सो मेक गुड यूज ऑफ इट। मेक योर डैड, टर्न योर डैड इनटू अ सुपर हीरो, और उनकी एक फ़ोटो सुपर हीरो वाली आप डालें हमारे डैड्स AI अपग्रेड कॉम्पिटिशन में जो फेसबुक पर है, एंड उसके नीचे अपने डैड को आप टैग करें। ऑल्सो टैग ऑल योर फ्रेंड्स फैमिली, और जितने भी लोग आपके डेट के फोटो को लाइक करेंगे, मेक श्योर दे आर फॉलोइंग आवर हम फेसबुक पेज एंड दे लाइक द कंपटीशन पोस्ट। इफ़ यू फॉलो ऑल दिस गाइडलाइंस, यू विल बी इन द ड्रॉ, जहां पर $300 कैश अपने डेट के लिए आप जीत सकते हैं ऑन दिस कमिंग फ्राइडे।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Ladies and gentlemen.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi sab yahan aate hain.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Kya baat hai us khane mein jo पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
5: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
6: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
8: हाँ। अच्छा
7: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
8: मिसेस सिंह
9: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
10: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
11: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव होए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
12: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
0: Playing Bollywood's biggest hits.

संडे नाइट मेलोडीज का मजा ले रहे हैं इस घंटे पर. नॉस्टैल्जिक नॉस्टैल्जिया नाइट्स आपके लिए हम जारी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ यादों को रिफ्रेश करने का मौका मिल जाता है. तो हमने 2014 के बारे में बातें की थी. नाउ द नेक्स्ट सॉन्ग वाज वेरी पॉपुलर, क्योंकि 2021 में जब ये आया था तो ऑल द रिंकी एंड ऑल द रिंकीज डैड्स दे गॉट फेमस, क्योंकि रिंकिया के पापा गाना ये आया था इन द ईयर 2021. मनोज तिवारी इन हिज वेरी विटी अंदाज में इन्होंने इस गीत को गाया है. तो साल था 2021 और 2021 में वी वर गोइंग थ्रू द कोविड का दौर एंड 2021 में ओवर 8.5 बिलियन वैक्सीन डोजेज वेर एडमिनिस्टर्ड ग्लोबली. कुछ लोग इस बात को लेकर खुश है, कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत ही गुस्सा है, एंड आई एम वन ऑफ देम. न्यू वेरिएंट्स कोविड-19 का, जैसे कि डेल्टा और ओमिक्रॉन, दे ड्रोव लेट ईयर सर्जेस एंड रिन्यूड रेस्ट्रिक्शंस. इसके अलावा समथिंग सिग्निफिकेंट जो मैं मानता हूँ वॉज द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. इसके बारे में हमने बहुत बार आपको बताया है कि किस तरह से इसको बनाया गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे थे और इसको स्पेस में डाला गया था दिसंबर 25 को. दिस वाज लॉन्च्ड, इसको सक्सेसफुली डेवलप किया गया था और द इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर ऑन मार्स को डिप्लॉय किया गया और जेम्स वेब टेलीस्कोप को भी लॉन्च किया गया 25 दिसंबर को. और इसके द्वारा कई ऑसम स्पेस पिक्चर्स को कैप्चर किया गया है, गैलेक्सीज को भी कैप्चर किया गया है. इसके अलावा जो बाइडन ही वाज इनॉग्रेटेड एज द 46th US प्रेसिडेंट एंड कमला हैरिस बिकेम द फर्स्ट फीमेल अफ्रीकन अमेरिकन एंड एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट. जिसको सुनकर पीपल ऑफ कला दे बिकेम रियली रियली हैप्पी. तो 2021 का ये गाना आइए एंजॉय करते हैं साथ में.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
4: Non-stop Bollywood.
5: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
4: हम playing Bollywoods.

Hey, kia ora. Welcome back to Sunday Night Melodies, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. इस घंटे की समाप्ति पर हम पहुँचने वाले हैं. So let's dive back and look for some nostalgic moments from the year 2019. Now 2019 happened not so long ago. हाँ, 2026 चल रहा है तो 7 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी हाल ही में हुआ है. कुछ यादें हैं जिसको हम याद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ तकलीफ़ देने वाली यादें हैं. लोकली कुछ चीज़ें हुई थी. इससे हटकर ग्रेटा थंडरबर्ग, ये एक नाम ये बहुत ही फेमस हुआ इन द ईयर 2019, क्योंकि ग्रेटा थंडरबर्ग ये एक क्लाइमेट के लिए प्रोटेस्ट करने वाली एक्टिविस्ट है. And she led global youth climate strikes, demanding action from world leaders. And कुछ हद तक इनको सपोर्ट भी मिला, कुछ हद तक इनके मीम्स भी बने थे. इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे. तो ग्रेटा थंडरबर्ग, वेल दैट वॉज ईयर 2019. अभी भी काफ़ी शोरगुल मचा रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन कभी कभी कुछ हद तक कुछ ज़्यादा ही स्ट्राइक्स और एफर्ट्स ये डालती है, जो फिर अड़चन डालने लगता है इन द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन या फिर गेटिंग बेटर एट थिंग्स. दैट इज़ माय ओपिनियन. आपको शायद कुछ अलग लगता होगा. इसके अलावा लूना लैंडिंग, चाइना मेड द फर्स्ट हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून, एंड दिस इंक्रीज्ड मोर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर कंट्रीज टू डू बेटर in terms of getting on the moon. So these things were some technological advancements jo 2019 mein hue the. There were other science and technology breakthroughs jo 2019 mein hua tha, jiske bare mein shayad aap jante hain. Agar kuch alag hi aap jante hain about 2019, to do share with us. We'll try to get that on board agar samay rahega to. Filhal nostalgia nights aap enjoy kar rahe hain Sunday Night Melodies mein with me, Jikash.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ
2: ये गलत बोल दिया यार
1: और पहनता भी नहीं है उसको
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी वो ब्रांड हो गया ना
1: रुजबे के बाल लगे उस
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J Crew.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. Hamari koi branch nahi hai.

संडे नाइट मेलोडीज का सफर जारी है. वी हैव कम आउट ऑफ नॉस्टैल्जिया. अब घुसते हैं कुछ अनप्लग्ड मोमेंट्स में. एंड जब अनप्लग्ड की बातें मैं सुनता हूँ, माय माइंड गोज टू कोक स्टूडियो. हाँ, कोक स्टूडियो में सिर्फ अनप्लग्ड गाने नहीं बनते हैं. आई थिंक जो क्रिएशंस होते हैं इन कोक स्टूडियो, दे आर मार्वलस. क्योंकि वहाँ से निकल कर कुछ ऐसे कलाकार हमारे सामने आए हैं who need a bigger stage. कुछ गाने अब फीचर हो रहे हैं इन मूवीज़, और कुछ जो आर्टिस्ट हैं इनको वो रिकग्निशन मिल रहा है जो शायद कोक स्टूडियो ना होता तो नहीं मिलता. चेहरे हम देखने लगे हैं ऑफ सिंगर्स जो ऑलवेज वेयर बिहाइंड द स्क्रीन्स. तो हैट्स ऑफ टू whoever had the idea of doing coke studio. Anyways, back to New Zealand, back to हम, जहाँ पर इस घंटे पर हम कुछ unplugged versions of songs बजाने वाले हैं. कुछ फरमाइशें आई हुई थी over the last week जिसको हमने मद्देनज़र रखा है, और आपसे कुछ suggestions भी हम चाहते हैं in this hour of some music, of some songs जो आप सुनना चाहते हैं in unplugged versions. There are local bands out there जिसको we can contact to maybe get your songs done in an unplugged version. हमारे खुद के resident singer है केतन कुमावत, शायद इनको हम गिटार पकड़ा कर बताते कि भैया गाओ, क्योंकि हमारे listeners सुनना चाहते हैं. तो if you want a song जो actually if you want केतन कुमावत to sing a song for you in unplugged version, let's make that happen. आई मीन मैं इससे बात कर सकता हूँ और कुछ पेड़ पर चढ़ाएंगे, क्योंकि कलाकार तो ठीक ठाक ही है, अच्छा गाते हैं भैया, वीडियो भी अच्छा बनाते हैं. शायद ये कुछ फायदा कर दे हमारे अनप्लग्ड आवा के लिए. तो एनीवेज, आइए शुरू करते हैं सफ़र को विथ राहुल जैन, अ ग्रेट वॉइस, ग्रेट गाय.

awesome unplugged gaano ko aap enjoy kar rahe hain right here on the unplugged session of Bollywood on Hum FM Sunday Night Melodies mein main Jikash aapka saath de raha hoon. Now Father's Day ke liye aapko to pata hai ki do competitions jari hai. Ek to apne dad ko aapko superhero banana hai using AI, superhero ke image mein unko dhalna hai. Once you do that, hamare Facebook page par jaye aur apne dad ki wo tasveer aap dal de in our social media post dad's AI upgrade. Wahan par jaakar apne dad ko aap tag kare and let all your friends and family members to come there and like that pic. And also follow our page. Jo bhi us picture ko like karega, they should be following our page, and then only your entry will count towards the 4th of September draw of $300 cash. Iske alawa, abhi hum chahte hain hamare paas jitne pyare pyare papas hai, aap hamare paas message kare, aur message bas yun hi nahi, aapko ek slang hai. और उसका मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ. उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हमारे जेंजीज, वो वर्ड आपको हमारे पास भेजना है. नाउ द एक्सप्लेनेशन इज होल्डिंग अनरियलिस्टिक आइडियाज और एक्सपेक्टेशन. या फिर कभी कभी कोई बंदा कुछ कह देता है और सुनकर हमारे दिमाग में आता है कि ये पागल है क्या. तो उस सिचुएशन या फिर उस पर्सन को हम क्या कहेंगे जो होल्ड्स अनरियलिस्टिक आइडियाज और एक्सपेक्टेशंस. एक वर्ड है, इंग्लिश में है वर्ड, लेकिन उसका एक स्लैंग वर्ड बना हुआ है. डेल्यूजनल इज द वर्ड, लेकिन जेंजीज डेल्यूजनल को क्या कहते हैं. इफ यू नो, अपने नाम, अपने किड्स के नाम के साथ अपना मैसेज हमारे पास भेजिए 5599 पर एंड यू विल गो इनटू द ड्रॉ, जहां पर कम 4th ऑफ सितंबर मतलब आने वाले शुक्रवार को हम ड्रॉ करने वाले हैं $500 फॉर यू. अगर आप सही जवाब देते हैं एंड इफ़ यू गेट लकी, यू विल बी गेटिंग दिस $500 कैश एंड डैड्स विल बी गेटिंग दिस स्ट्रेट अवे, नॉट द किड्स. सो इट्स अप टू द डैड्स, यू हैव टू कम अप विद द वर्ड दैट मीन्स डेल्यूजनल. लेकिन स्लैंग में जेंजीज डेल्यूजनल को क्या कहते हैं. भेजिए मैसेज हमारे पास 5599 पर.

0: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
3: Score big at Rebel with deals for Dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for Dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800 233 111.
5: Indelible Homes, your building expert.

स्पोर्ट्स को आप किस नज़रिए से देखते हैं? डू यू थिंक ऑफ स्पोर्ट्स जस्ट एज अ वे टू गेट यू आउट एंड एक्सरसाइज, मूव अ बिट एंड कीपिंग हेल्थी, या फिर यू सी स्पोर्ट्स एज अ वे ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल, या फिर यू सी स्पोर्ट्स एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली? वेल दैट, जो भी मैं कुछ मैंने कहा है अबाउट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कैन बी अबाउट दैट एंड अ लॉट मोर, क्योंकि दिस मंथ समथिंग रिमार्केबल हैपेंड. नाउ आई एम नॉट श्योर कि अगर आप जानते हैं अबाउट मोटो न्यूरोन डिजीज, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिजीज है अगर किसी को हो जाए, क्योंकि इसमें ये बहुत ही रेयर लेकिन प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हमारे नर्व्स को डैमेज करता है, मोटो न्यूरॉन्स को इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, कॉजिंग मसल्स टू वीकन, वेस्ट अवे एंड लूज फंक्शन. तो इसके अर्ली सिम्टम्स है जैसे कि माइल्ड क्लम्सीनेस, ट्रबल विद ग्रिप और ट्रिपिंग वाइल वॉकिंग. पर ये मत समझ लीजिएगा कि अगर आप ट्रिप कर रहे हैं वाइल वॉकिंग यू हैव MND. नहीं, यू गेट योर सेल्फ चेकड अप अगर आपको कोई भी कंसर्न्स है अबाउट योर हेल्थ. आई एम टॉकिंग अबाउट MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज, क्योंकि एक खिलाड़ी है जिनको ये डिजीज हो गया था, लेकिन जय एरो, ही इज अ लीग प्लेयर और ही वॉज फोर्स टू रिटायर इन टू मेडिकल रिटायरमेंट इन मई आफ्टर बींग डायग्नोज्ड विद मोटर न्यूरॉन डिजीज. एंड दिस केम एज अ शॉकर टू ऑल हिज teammates to the entire league fraternity. Lekin kuch remarkable kiya hai National Rugby League. They've bent the rules. वैसे जिसको ये disease हो जाए उनको खेलने के लिए नहीं कहा जाता है, वो खेलना चाहते भी है तो मना कर दिया जाता है. लेकिन the South Sydney Rabbitohs player Jay Arrow, he was just one game away from his 100th league game. And now he has made a comeback or to complete his 100th games. NRL has changed its rules to allow Arrow to lead out the Rabbitohs for kickoff before being immediately interchanged in two matches against the Gold Coast Titans and the Sydney Roosters. So both clubs along with former teammate Lachlan Elias will honor एरो ड्यूरिंग द इमोशनल माइलस्टोन. तो दो मैचेस में ये नज़र आने वाले हैं. ही विल लीड द टीम आउट एंड देन थोड़ी ही देर बाद इनको चेंज कर दिया जाएगा. आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स फुलफिलिंग समवन्स ड्रीम. मोर पावर टू जय एरो एंड हैट्स ऑफ टू NRL.

0: Hollywood's biggest hits.
1: What's your hit gaane?
2: ओके तो इस सप्ताह दो अलार्मिंग न्यूज़ अकॉर्डिंग टू मी ये सामने आए हैं. वैसे काफ़ी दर्दनाक घटनाएं हुई है, कई रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, नेपाल में जो बाढ़ आई है. इसके अलावा बीइंग इन न्यूजीलैंड एंड इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ न्यूजीलैंड ऑन अ हॉलीडे एयरफेयर, ये एक चीज़ है. दूसरा है डेस्टिनेशन फिजी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट हमारे एयर न्यूजीलैंड क्या कर रही है, क्योंकि दे हैव अनाउंस्ड $336 million लॉस. भाई आप सोचेंगे कि जब भी हम फ्लाई करते हैं एयर न्यूजीलैंड से प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ता है. एयर फेयर्स आर नॉट चीप विथ एयर न्यूजीलैंड, लेकिन आई पर्सनली फ्लाई विथ एयर न्यूजीलैंड क्योंकि सर्विस बहुत ही अच्छा देती है, तो यू नो यू पे फॉर दैट. लेकिन इफ़ यू आर होपिंग फॉर अ चीप एयर फेयर एनी टाइम सून टू बुक फॉर योर नेक्स्ट हॉलीडे, यू आर आउट ऑफ लक. एयर न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया है सिग्निफिकेंट $336 million प्री टैक्स लॉस ऑन फ्राइडे. टैक्स लगने के बाद क्या होगा? एंड वाइल द नेशनल कैरियर्स ग्राउंडेड प्लेन क्राइसिस इज फाइनली ईजिंग, ट्रेवलर्स शुडन एक्सपेक्ट चीपर टिकट्स एनी टाइम सून. इन इट्स एनुअल रिजल्ट्स द एयरलाइन सेड हाई जेट फ्यूल प्राइसेस ड्रिवन बाय द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड मल्टी ईयर एंजिन मेंटेनेंस डिलेज वाइप्ड आउट इट्स अर्निंग्स, resulting in its first loss since 2002. However, it also revealed other large costs it's being hit by, जैसे कि double digit airport fee hikes and international carbon taxes completely outside its control. Prime Minister Christopher Luxon, इन्होंने warn किया है, the government won't be handing out any financial support. So what does this mean for your back pocket? Your back pocket, आपसे मैं बात कर रहा हूँ. Mark Lister, investment director at Craigs Investment Partners, told Stuff, airlines are facing a double whammy economically. They get hit at the cost line with costs jumping because of fuel, and they also get hit at the revenue line because people choose not to travel as they face their own cost of living pressures. To manage the fuel spike earlier, Air New Zealand raised economy fares in March by $10 one way on domestic routes, and $20 on short-haul international flights and up to $90 on long-haul trips. तो ये increases हुए थे. अब एक aeroplane यहाँ से Fiji जा रहा है और लोग travel नहीं कर रहे हैं क्योंकि personally they are under pressure, तो travel नहीं कर रहे हैं, तो एक तो fuel तो उतना ही लगेगा और passengers मिल नहीं रहे हैं. तो भाई एक तो fuel को भरना पड़ता है और फिर passengers आ नहीं रहे हैं, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, तो double तरह से धक्का लग रहा है एयरलाइन कंपनीज को. तो दिस वॉज अबाउट एयरलाइंस. अब इनको लॉस हो रहा है तो ये लॉस कहीं ना कहीं तो रिकवर करने की कोशिश करेंगे. दूसरी बात है फिजी में न्यू 5% टूरिज्म सर्विस टैक्स TST ये शुरू होने वाला है 1st of September से, मतलब मंगलवार से. इसके बारे में बातें करेंगे बस इस गाना और ब्रेक के बाद में.

Hey, welcome back to Hum Jahan Par, Sunday Night Melodies mein main aapka saath de raha hoon. Main hoon Jikash and break se pehle humne baatein karna shuru kiya tha about your travel plans. Agar aap Airways se travel karne wale hain to Fiji. Kyun specifically ye do cheeze hai? Kyunki hamari local, hamari national air carrier Air New Zealand, they have done a loss in hundreds of millions, more than 300 million ka loss hua hai. तो ये लॉस होने के बाद कहीं ना कहीं पैसे तो पैसे निकालने पड़ेंगे. तो अल्टीमेटली शायद दे विल एब्जॉर्ब, ट्राई टू एब्जॉर्ब द लॉस, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कुछ मदद करने वाली नहीं है. और फिर नहीं तो अगले साल लॉस ना करने के लिए इनको शायद कुछ कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा या फिर एयर फेयर्स और भी ऊपर करने पड़ेंगे. इस साल एयर फेयर्स ऊपर हुए हैं, डोमेस्टिक शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स में $10 और लॉन्ग हॉल फ्लाइट में $20 तक की इंक्रीज़ ये देखने को मिली थी. और इसके अलावा अगर आप फिजी जा रहे हैं तो फिजी जाने से पहले आपको अब दो बार सोचना होगा. अगर आपने प्री बुक कर लिया है, सितंबर से पहले बुक कर लिया है फॉर योर ट्रिप दिस ईयर, देन यू आर फाइन. लेकिन अगर आप अभी बुक करते हैं for any accommodation or any tourist trip to Fiji, आपको 5% tax लगने वाला है. A 5% extra charge on tourism service to support the national carrier Fiji Airways. जैसे कि Air New Zealand struggle कर रही है, Fiji Airways भी struggle कर रही है, तो ये चाहते हैं जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनसे पैसे. Now, go and look into the departure tax in Fiji, जो भरना पड़ता है हमारे हिडन रेट्स, हमारे हिडन फीसेस में, फीस में आते हैं व्हेन वी बुक अ फ्लाइट टू फिजी और फ्रॉम फिजी. बहुत ज़्यादा पैसे ये डिपार्चर टैक्स में जाता है और या फिर लैंडिंग टैक्स में जाता है जो हिडन होता है हमारे एयर फेयर्स में. उसके अलावा दे नाउ नीड 5% मोर. मान लिया जाए आप अब एक टूरिज़म टूरिस्ट होटल में जा रहे हैं जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अब उनको चार्ज करने वाली है 5% ज़्यादा. अब अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं, आपके नॉर्मल कॉस्ट्स में 5% की इंक्रीज हुई है, ये कौन भरेगा? अगर आप अपना मार्जिन कम नहीं करना चाहते, प्रॉफिट मार्जिन, तो दैट अमाउंट ट्रिकल्स डाउन टू द कस्टमर्स. और कस्टमर कौन है भाई? मैं और आप. तो अगर आप फिजी जा रहे हैं, look for other places जहाँ पर you can get better value for your money. There are lots of, right here in New Zealand, बहुत सी जगह है जहाँ पर अभी तक आपने नहीं घूमा है. Have a rethink. एक तो FAR नहीं भरना पड़ेगा international flight का, और दूसरा ये 5% added tax for Fiji आपको नहीं भरना पड़ेगा. तो think before you book. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

104.2 FM और रोबो के जरिए आप हमें सुन रहे हैं. आज है संडे द 30th ऑफ अगस्त एंड इफ आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई होप यू हैड अ लवली डे एंड एन अमेजिंग डे जहां पर आपको ढेर सारा प्यार मिला है. छोटे हैं तो आशीर्वाद मिला है, बड़े हैं तो प्यार और दुआएं मिली हैं. हमारी ओर से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. बस यही आशा करते हैं कि जैसा आज का दिन एकदम से खुशहाल गया है, आई होप खुशहाल गया है, और अगर नहीं तो दे आर बेटर डेज अहेड, बेटर डेज आर कमिंग. आने वाले साल, आने वाले दिनों में आपको खुशियाँ बेशुमार मिले, आपका सेहत और भी अच्छा होता जाए और एक खुशहाल और सेहतमंद जीवन आप व्यतीत करें. यूँ ही जुड़े रहे हैं विथ द हम टीम. मैं हूँ जिकास, मेरी ओर से आप सभी को आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. अगर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो बस यही चाहते हैं कि आप दोनों में प्यार बढ़ता रहे और एक दूसरे का साथ यूं ही आप बरकरार रखें फॉर मैनी मैनी मैनी ईयर्स टू कम. आप सभी को वेडिंग वेरी वेरी वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी. आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं इन दिस आवर ऑफ संडे नाइट मेलोडीज, जहाँ पर कहकशन कहकशन में आपके लिए हम सुनाते हैं आपको एक से एक गज़ल जो आपके और मेरे दिल के करीब है. तो आइए डॉक्टर अतीबा अख्तर की आवाज़ में दिस रेंडिशन ऑफ आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं. एंजॉय करते हैं.

कल हमने आपसे बातें की थी ड्यूरिंग माय रेडियो पब 12 से 6 बजे के बीच अबाउट द 100 ईयर्स ऑफ रेजिलियंस माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी. इसके बारे में हमने लाइटली टच किया था एलिया इन दिस प्रोग्राम एज वेल. तो अगर आपको इन डिटेल इसके बारे में जानना है, क्योंकि एक बहुत ही औसम सा डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया है जिसका नाम है पंजाब टू आउटियारोआ. द क्रिएटर्स बिहाइंड द ग्राउंड ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट्री है गगन संधू द डायरेक्टर एंड हरजोत सिंह जो एक प्रेजेंटर और रिसर्चर है. दे हैव कंपाइल्ड एंड रिलीज्ड पंजाब टू आउटियारोआ. इसे आप चेकआउट करें या फिर उससे पहले यू मस्ट लिसन टू अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट जो सैंडी एंड रुजबे ने की है, बातें की हैं विद हरजोत एंड गगन संधू अबाउट दिस एपिसोड की 100 ईयर ऑफ हिस्ट्री बिटवीन पंजाबीज एंड न्यूजीलैंड. कैसे किस तरह से पायनियर हुआ था द मूव फ्रॉम न्यूजीलैंड फ्रॉम इंडिया टू न्यूजीलैंड फ्रॉम पंजाब टू न्यूजीलैंड और फिर 100 साल में क्या कुछ बदला है. कैसे हमारे सिख हमारे पंजाबी भाई बहनों ने शेप किया है न्यूजीलैंड फॉर द बेटर. जो रिसर्च इसमें गया है जो पैशन गया है ब्रिंगिंग दीज अनटोल्ड पर्सनल स्टोरीज टू द स्क्रीन एंड क्यों एक देश से दूसरे देश जब आते हैं क्यों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने देश की कल्चर को सीमेंट के रखें और वही समय गेट टू लर्न द न्यू कंट्रीज कल्चर सो दैट यू कैन बिलोंग टू बोथ प्लेसेस और द पावर ऑफ गिविंग बैक इंक्लूसिविटी एंड द कम्युनिटी सपोर्ट इन बिल्डिंग ए थ्राइविंग डायस्पोरा. तो मैंने अभी तक नहीं चेकआउट किया है. आई एम गोइंग टू चेकआउट पंजाब टू आउटियारोआ दिस वीक. लेकिन उससे पहले ये पॉडकास्ट अगर आप सुन लेंगे तो यू विल हैव अ ब्रीफ आइडिया कि आपको क्या देखने को मिलेगा इन द डॉक्यूमेंट्री पंजाब टू आउटियारोआ. टेक्स्ट ड्राइव टू 5599 या फिर आप सर्च करें अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुजबे हमारी विनिंग टीम. इनके द्वारा ये ऑसम पॉडकास्ट अब आप सुन सकते हैं.

की आवाजें आप सुन रहे थे, द ऑसम और मैजिकल कॉम्बो हम इनको कह सकते हैं. नेक्स्ट वन इज बाय द लेट पंकज उदास जी, और इसको लेकर आई वोंट से द एग्जैक्ट मैचिंग शायरी मेरे पास है, पोएट्री मेरे पास है, लेकिन कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि गज़ल का नाम है जिए तो जिए कैसे बिन आपके, यानी कि किसी के बिना ज़िंदगी अधूरी सी लगती है, उसी पर आधारित ये गज़ल है. लेकिन ये अगला जो पोएट्री है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अगर आप इसको गौर से सुने और इस पर गौर करें और अपने इमेजिनेशन के मुताबिक आप इसके बारे में सोचें, तो शीर्षक है इसका मैं और खालीपन. किसने लिखा है इसका नाम मेरे पास नहीं है, अनोनमस नीचे लिखा हुआ है, तो आइए सुनते हैं इसको. लिखा है कि जब अकेले बैठता हूँ, अकेले नहीं बैठता हूँ, मेरे साथ बैठ जाता है अक्सर मेरा खालीपन, जो करता है ढेरों सवाल, सवाल मेरे होने का, सवाल मेरे ना होने का, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, कहाँ से आया, कहाँ हूँ मैं, कहाँ गया मेरा बचपन, कहाँ मेरी जवानी जा रही है, कब तक हूँ जिंदा यहाँ, क्यों मौत करीब आ रही है, मेरे पास जवाब नहीं होते, उलझ जाता हूँ सवालों में, फिर घंटों बैठा रहता हूँ अपने ही अंतर ख्यालों में, जब ख्यालों से बाहर आता हूँ

0: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: Say goodbye to winter.
3: Goodbye.
2: And hello to spring.
3: Hello.
2: This weekend at Risco's with new season savings store wide and half price Manchester and electrical deals. Say goodbye winter.
3: Goodbye.
2: Hello spring.
3: Hello.
2: With fresh savings at Risco's. See online for T's and C's.
4: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all 4 weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
5: Get the Skinny!
6: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
7: Their masalas are ground fresh in-house every single day.
6: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
7: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
6: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.

कहकशन कार्यक्रम जारी है संडे नाइट मेलोडीज में 9 से 10 बजे के बीच में ये औसम सा आवा हम सजाते हैं फॉर ऑल दी गजल लवर्स आउट देयर जो मैं खुद भी हूँ तो मैं भी उतना ही एंजॉय करता हूँ जितना कि आप इसको एंजॉय करते हैं। बस अब अगला जो ट्रैक है बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है बाय हदीका कियानी और खुद इन्होंने इसको गाया भी है सूफी स्को पर। इसको अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब चैनल है सूफी स्को, इसका वीडियो आप देख सकते हैं एंड अ वेरी ब्यूटीफुल कंपोजिशन हम कह सकते हैं। अगर आप खुद एक गज़ल गायक है एंड यू लव द बीट्स ऑफ धामा एंड तबला तो डेफिनेटली आप इस गज़ल को एंजॉय करने वाले हैं। आइए सुनते हैं और इस अगले गज़ल का मज़ा लेते हैं इन द वॉइस ऑफ हदीका कियानी। इसके बाद में पंकज उदास की आवाज़ से इस कार्यक्रम को हम एंड करेंगे फॉर टुनाइट्स कहकशन।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।

Hey, Bula, kia ora, and welcome back to Sunday Night Melodies, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। 10 बजने को आए हैं, the afternoon shift crew are knocking off, या फिर knock off कर चुके हैं, night shift crew are in action, तो I hope आपने अपनी तैयारियां बढ़िया तरीके से की है, you've taken care of any hazardous items or conditions जो आपके आसपास थे, इसको आपने safely mediate किया है, और टेक किया है उसका। और जितने भी लोग नॉक ऑफ कर रहे हैं, कोई भी रश मत कीजिए, आराम से हौले हौले अपने मंजिल की ओर, अपने घर की ओर आप बढ़ते रहिए। आपका साथ हम यूं ही देते रहेंगे, राइट हियर फ्रॉम 104.2 एफएम एंड थ्रू रोवा। तो बस यूं ही एंजॉय करते हुए अपना सफ़र तय कीजिएगा। अगले दो घंटे के लिए हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं कुछ सेमी गोल्ड, बहुत ही क्लासिकल गाने फ्रॉम द यस्टर ईयर्स, फ्रॉम द 1990s। तो एंजॉय करते रहे, एंड लेट्स किक ऑफ द आवर विथ दिस सॉन्ग जो खुद मेरे दिल के करीब है। अलका याग्निक की आवाज़ है, और इस फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं, क्या आपको मालूम है कि ये किस फिल्म का गाना है? लेट्स सी, डू नॉट गूगल, डू नॉट आस्क एनीवन। अगर आपने इस गाने को अपना प्यार दिया है पहले, तो शायद आपको मालूम होगा कि ये किस फिल्म का गाना है। आइए शुरुआत करते हैं दिस आवा की विद अलका याग्निक की आवाज़। इस गीत के बाद में हम आपको बताएंगे कि ये कौन फिल्म का गाना है, और फिर देखेंगे कि कल जितनी बारिश हुई, क्या ऐसी बारिश हम आने वाले सप्ताह देखने वाले हैं या नहीं, मतलब वेदर अपडेट फॉर द कमिंग वीक। मैं हूं जिकाश, आप सभी का दोबारा स्वागत कर रहा हूं इन संडे नाइट मेलोडीज़।

ओके, तो ऑफ कोर्स फिल्म का नाम जख्म, और इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था जब ये फिल्म आई हुई थी। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, डू चेक इट आउट। डायरेक्टर थे महेश भट्ट, प्रोड्यूस बाय पूजा भट्ट एंड मुकेश भट्ट, और इसको नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन ये अवार्ड इसको मिला था। 7.8 आउट ऑफ 10 इसकी रेटिंग है ऑन IMDb। इस फिल्म में अजय देवगन, पूजा भट्ट, नागार्जुन और कुणाल खेमू को भी आपने देखा था। कुणाल खेमू 1998 में कैसे लग रहे थे? गो एंड चेक आउट दिस सॉन्ग, गली में आज चांद निकला, फ्रॉम द मूवी जख्म। सोनाली बेंद्रे और अक्षय आनंद साथ में इस फिल्म में नज़र आए थे, आशुतोष राणा भी। तो अगर आपने नहीं देखी ये फिल्म, अ ब्यूटीफुल मूवी, डू गो एंड चेक इट आउट। कार्यक्रम में और भी आगे बढ़ते हैं। इधर वेदा क्या होने वाला है? कल तो भाई बारिश ही बारिश हुई, आज भी भीगा भीगा सा थोड़ा दिन गया है। मंडे थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि सुबह के समय बारिश होगी, क्लियरिंग इन द इवनिंग, और फिर मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे क्लाउडी रहने वाला है। कुछ इलाकों में थोड़ी मोड़ी बारिश हो सकती है, तो कीप योर अम्ब्रेलाज हैंडी। फ्राइडे को काले काले बादल छाने वाले हैं और बारिश थोड़ा ज़्यादा होने वाली है, तो इन बादलों के चलते टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होने वाला है फॉर द फाइनल सेशन ऑफ विंटर। मंडे को 17 डिग्रीज, फिर 16 डिग्रीज, वेंसडे को 17 डिग्रीज, थर्सडे को 18 डिग्रीज, फ्राइडे को 19 डिग्रीज दिन में रहने वाला है। ओवरनाइट टेम्परेचर फॉर द वीक इज गोइंग टू रेंज फ्रॉम 11 टू 13 डिग्रीज, तो होपफुली दैट्स द लास्ट ऑफ कोल्ड टेम्परेचर्स, क्योंकि कम वेंसडे वी शुड बी जंपिंग इन टू स्प्रिंग। तो भाई, लेट स्प्रिंग डू इट्स मैजिक। सो देयर वाज योर वेदर फॉर द वीक।

सनर नाइट मेलोडीज़ का सफ़र जारी है, गोल्डन आवर आप एंजॉय कर रहे हैं। एंड इस अगले गीत को बजाने से पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं अबाउट हनुमान अंश। गो एंड चेक आउट द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी। एंड जितनी सिंपल वे से ट्रेलर को दिखाया गया है, उतनी ही सिंपल वे से इस फिल्म को बनाया गया है। ऑन अ बजट ऑफ जस्ट 2 करोड़ रुपीज़, देर इज़ नॉट टू मच। आज के इस दौर में इस फिल्म को बस 2 करोड़ के बजट पर बनाया गया है और दिस हैज़ अर्न्ड सो फार 12 करोड़ रुपीज़। तो ब्लॉकबस्टर इन टर्म्स ऑफ बजटिंग ये मूवी बन चुका है। इट हैज़ सीन ए 2500% जंप एट द बॉक्स ऑफिस इन इट्स सेकेंड वीक। हनुमान अंश ओपन एट 10 लाख एंड वेंट टू कलेक्ट 1.08 करोड़ इन इट्स फर्स्ट वीक। लेकिन सेकेंड वीक में द फिल्म एंड जस्ट 40 लाख बिफोर विटनेसिंग अ ड्रामेटिक जंप इन कलेक्शंस इन इट्स थर्ड वीक। तो तीसरे वीक में जारी है और फाइनली इस मूवी को वो प्यार मिल रहा है जो इसको मिलना चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल इसका ट्रेलर है, डू चेक इट आउट। आई विल बी स्पेंडिंग सम टाइम टू एक्चुअली वॉच दिस मूवी। हनुमान अंश को आप जरूर चेकआउट करें एंड गिव योर लव टू दीज सिंपल मूवीज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं विदाउट ग्लैमर, विदाउट बीइंग अ पैन इंडिया फिल्म।

न्यूजीलैंड में ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जो सेल्फलेसली काम कर रहे हैं टू रेज फंड्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, या फिर क्यूबा के लिए कुछ डिजीजेस के लिए ये पैसे जुटा रहे हैं. एंड वन सच बैंड ग्रुप इज द मोक्ष बेस बैंड. ये एक पैशनेट ग्रुप ऑफ टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो डेडिकेट करते हैं अपना टाइम टू प्रमोटिंग द इंडियन म्यूजिक, एंड दे आर बेस्ड इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड. नाउ आई हैवन मेट देम येट, लेकिन दे आर अ बैंड जो दैट इज अ जॉनरा डिफाइन फ्यूजन म्यूजिक बैंड बेस्ड इन न्यूजीलैंड दैट ब्लेंड्स रॉक एंड मेटल विथ इंडियन क्लासिक म्यूजिक एंड कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक. ये ओरिजिनली स्टार्टेड अराउंड हैमिल्टन एंड ऑकलैंड एरिया. और इनके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, दिस नन ऑफ अ पेड प्रमोशन. मैं इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि कम्युनिटी में ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. हेड टू hope.mokshabais.com hope.mokshabais.com और वहाँ पर आप जानेंगे कि क्यों मैं इनके बारे में बातें कर रहा हूँ. एलिया इन 2026 मोक्ष बेस बैंड मेंबर जो एक क्लोज फ्रेंड है फॉर दी बैंड मेंबर्स शिवकुमार संगमेश्वरन शिवा जो इनको जिनके नाम से जिस नाम से ये प्रसिद्ध है. ही वॉज डायग्नोज्ड विथ ALK पॉजिटिव एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा विच इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर. और थ्रू इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशन शिवा हैज़ कंटिन्यूड टू मीच ईच चैप्टर विथ ह्यूमर फेथ करेज एंड ऑनेस्टी. ही इज़ डॉक्यूमेंटिंग द एक्सपीरियंस इन अ बुक not only about cancer but about the people, beliefs and communities that help carry us through difficult times. To inke dwara concerts kuch aayojit kiye ja rahe hain jisme shamil hai book launch, awareness and conversation, a place to meet for a shared meal and a live concert. Ye aap zarur check out kare kyunki through this you will be meeting with people who have gone through cancer, sharing their stories, hardships and the wins coming out of the journey of overcoming cancer. Moksha Bais, they are bringing music and storytelling together in a celebration of courage, community and the people who walk beside them. So, tickets aap book kare. And again, this is not a paid promotion. Main ye bata raha hoon taki inko madad mil sake to raise funds अगेंस्ट कैंसर. तो टिकट्स बहुत ही कम है, एडल्ट्स $25, किड्स है $15. और सैटरडे 17 अक्टूबर को 21 माउई स्ट्रीट पुखेटे हैमिल्टन में ये कॉन्सर्ट होने वाला है, ये ऑसम गेट टुगेदर होने वाला है.

टीवी प्रेजेंटर न्यूज रिपोर्टर जैक रायन, इनके बारे में आप जानते हैं? वेल, ही इज क्वाइट थरा इन इंटरव्यूइंग पॉलिटिशियंस, एंड इसी सप्ताह पहले इन्होंने बातें की विद क्रिस हिपकिंस, जहां पर क्रिस हिपकिंस की बोलती बंद की अबाउट टैक्सेस। क्रिस हिपकिंस ने कहा कि एक तो पिछले सालों में उन्होंने कहा था कि कैपिटल गेन्स टैक्स लेबर नहीं सपोर्ट करेगा, अब कैपिटल गेन्स टैक्स पर ही कैंपेन कर रहे हैं लेबर वाले। एंड नाउ जब जैक रायन से बातें हुई तो जैक रायन ने सीधे पूछ दिया कि क्या यू विल बी कैंपेनिंग ऑन एनी अदर टैक्स, क्या आप टैक्स को सपोर्ट करते हैं या नहीं, या फिर विल यू बी अगेंस्ट इंप्लीमेंटिंग एनी अदर टैक्सेस। तो क्रिस हिपकिंस ने कहा कि येस, द ओनली टैक्स दैट दे विल बी वर्किंग ऑन इज कैपिटल गेंस टैक्स। फिर जैक रायन ने पूछा तो वट अबाउट द टैक्स इंक्रीज बाय काउंसिल्स, तो क्रिस हिपकिंस ने कहा कि ये उनके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन देर इज अ लाई, काउंसिल्स टैक्स इंक्रीज करना चाहती है, दे सेंड देयर रिकमेंडेशंस और गवर्नमेंट द्वारा ये अप्रूव होना चाहिए, तभी टैक्स इंक्रीज कर सकते हैं योर रिस्पेक्टिव काउंसिल, और काउंसिल्स ने तो बहुत ज़्यादा टैक्स इंक्रीज ऑलरेडी कर दिया है। तो कौन से काउंसिल्स हैं जो मीट कर सकते हैं द करंट गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड रेट्स कैप? नेशनल ने ये प्रस्ताव रखा है कि रेट्स ये यूं ही नहीं बढ़ा देना चाहिए, इस पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए, तो दे प्लेस्ड ए रेट्स कैप टू 4% पे ईयर। आई थिंक दैट शुड बी ब्रॉट इनटू प्ले बिकॉज काउंसिल्स, आई डोंट नो, जितना ये टैक्स बढ़ा रही है उतना ही काम कर भी रही है या नहीं, शायद कर रही है, लेकिन जेब पर भारी पड़ रहा है of the everyday Kiwis. तो 4% a year cap in recent years ये propose किया जा रहा है by the national government, और उधर लेबर कह रही है कि नहीं, councils जो चाहे जैसे चाहे जो मर्जी चाहे tax लगा सकती है। तो ये बहुत ही amusing सा video, अगर आप TikTok पर है या फिर lookup कीजिए जैक रायन and क्रिस हिपकिंस, ये video आपको ज़रूर देखने को मिलेगा।

द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसको लेकर तो सभी लोग चिंतित है, चाहे वो बातें हो फ्यूल डालने की अपने कार में, या फिर किसी के लिए गिफ्ट लेना हो। अभी लेटली मैं एक जगह पर गया था और वहाँ पर जिसके घर पर गया था वो गिनाने लगे कि जब ये 2 महीने आ जाते हैं तो मुझे गिफ्ट खरीदने पड़ते हैं फॉर नंबर ऑफ पीपल, और अगर $25 पे हेड करके लिया जाए तो इन 2 महीनों में इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है जस्ट टू गिव गिफ्ट्स। तो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आप गिफ्ट दें। पीपल डू अंडरस्टैंड कि लोग हार्डशिप से गुजर रहे हैं, और अगर आप गिफ्ट दे भी रहे हैं तो जताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दैट डिफीट्स द पर्पस। तो हार्डशिप से सभी लोग गुजर रहे हैं और यू आर नॉट रिक्वायर्ड और सपोज टू गिव गिफ्ट्स एवरी टाइम देयर इज अ फंक्शन। और हो सके अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो फंक्शन से आप अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ऐसे हाँ रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन देयर आर पीपल हु विल बी जजिंग यू। तो अगर लोगों की जजमेंट से आपको डर लगता है तो लोगों से आप दूरी बनाए रखें, स्पेशली उन लोगों से जो आपको जज करते हैं कि बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट यू गिव और क्या आप गिफ्ट देते हैं या नहीं। एनीवेज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक आर्टिकल मैं अभी पढ़ रहा था जहाँ पर ये बताया गया है कि वेजेस रोज इंक्रीज हुआ है, वेजेस में 4.4%, लेकिन क्या ये इनफ है टू कीप अप विद इन्फ्लेशन, टू कीप अप विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसके बारे में बातें करेंगे इन द नेक्स्ट आवर।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
4: Non-stop Bollywood.
5: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
4: हम playing Bollywoods.

इस दिन के आखिरी घंटे में हम और आप प्रवेश कर चुके हैं, 11 बज चुके हैं एंड अभी भी आप मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका हम कर रहे हैं। पिछले घंटे पर हमने कहा था वी विल बी टॉकिंग अबाउट पैसा, कैसे हमारा वेजेस इंक्रीज हुआ है और इज़ इट कीपिंग अप विद इन्फ्लेशन विद द रेट्स इंक्रीजेज एंड ऑल। तो जुड़े रहे मेरे साथ में, इस गीत के बारे में कुछ स्टेट्स पर हम नज़र दौड़ाएंगे।

0: ऑलराइट, पैसा पैसा पैसा, आपकी तनख्वाह थोड़ी मोड़ी बड़ी है, लेकिन क्या ये लिटिल इंक्रीज आपको मदद कर रहा है टू कीप अप विद इन्फ्लेशन, टू कीप अप विद रेजिंग रेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स? वेल, एक्चुअली नो, ये हाल आपका नहीं है, ये हाल पूरे देश का है, पूरे दुनिया का यही हाल है। तो हुआ क्या है? वेल, न्यूजीलैंड में ऑन एन एवरेज अगर हम आंकड़ों को देखें तो 2024 जून से लेकर जून 2026 के बीच में ऑल सैलरी एंड वेज रेट्स इंक्रीज 4.4% अकॉर्डिंग टू स्टेट्स एनजेड्स लेबर कॉस्ट इंडेक्स। उसी समय में लोकल अथॉरिटी रेट्स और पेमेंट्स इट रोज बाय 22%, इलेक्ट्रिसिटी रोज बाय 21.4% और पेट्रोल के दाम 17.2% से बढ़े हैं। तो आपके जेब में जो ज़्यादा पैसे आए हैं ये कहीं बचे नहीं हैं, इससे ज़्यादा पैसे निकल गए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीज बाय 39.4%, ड्वेलिंग इंश्योरेंस हाउस इंश्योरेंस रोज बाय 9.2%, कंटेंट्स इंश्योरेंस इंक्रीज बाय 5.9% एंड व्हीकल इंश्योरेंस इंक्रीज बाय 2.3% और लाइफ इंश्योरेंस 0.8% से इंक्रीज हुआ है। तो उसके बाद सुपरमार्केट में भी भाई बहुत ज़्यादा आप पैसा भरने पड़ते हैं। केजी ऑफ बीफ मींस जो 1880 था जून 2024 में, ये इस साल $24 हो गया है, डायरेक्ट अराउंड $6 का इंक्रीज। 500 ग्राम्स ब्लॉक ऑफ सॉल्टेड बटर ये 587 था, इट हैज़ गोन अप टू $8.29 जो 41% का इंक्रीज है। 600 ग्राम वाइट स्लाइस्ड लोफ इसका दाम था 139 इन 2024, इस साल $2.33, अ 67.6% जंप। स्टेट्स एनजेड कॉशंस इट्स वेटेड एवरेज फूड प्राइसेस आर नॉट स्टैटिस्टिकली एक्यूरेट मेजर्स ऑफ एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइसेस बट प्रोवाइड अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ परसेंटेज प्राइस मूवमेंट्स। नॉट एवरीथिंग बिकेम मोर एक्सपेंसिव, एग्स फ्लावर शुगर कुमरा ऑलिव ऑयल वेर अमंग आइटम्स दैट फेल इन प्राइसेस। हाँ, एग्स प्राइसेस इसका फॉल हुआ है क्योंकि एग्स के प्राइस इंक्रीज हुए थे जब केज फ्री एग्स की घोषणा की गई थी, तो उस समय फार्मर स्ट्रगल कर रहे थे, सप्लाई कम था तो प्राइसेस बढ़े थे। लेकिन वी कैन नॉट से कि अब अंडे के दाम कम हो चुके हैं, 50 सेंट्स अगर आप पे कर रहे हैं दिस इज स्टिल अ लॉट एक्सपेंसिव फ्रॉम व्हाट वी यूज्ड टू पे बैक इन द डे। तो आपको क्या लगता है, क्या आपके वेज इंक्रीज इज कोपिंग अप विथ ऑल अदर इंक्रीजेस अराउंड यू? वेल, मुझे तो नहीं लगता है एंड आई डोंट थिंक एनी वन कैन से कि वेल एनी मिडिल इनकम वेज एंड आई कैन से कि नहीं मुझे तो इनफ वेज इंक्रीज हुआ है एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ पहुँच गया है। देट विल बी अ मिथ।
1: यू आर लिसनिंग टू चिकाश।

0: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
3: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
6: Kahani of Indelible Homes.
7: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz. Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18 ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.

में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आज गए थे एंड सत्संग करके अभी आप लौट रहे हैं तो भाई आप सभी को राधे राधे। हम कह रहे हैं जय श्री कृष्णा। आई होप आज की पूजा बहुत ही बढ़िया गई है और कल के लिए तैयारियां आप कर रहे हैं। आराम से घर को जाए और आराम फरमाए। कल सुबह काम पर जाना है और फिर दोबारा शाम को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथाओं में जाना है। हो सके तो अगर आप पीजी से है तो ब्राउन लेबल को कम ही रखें, क्योंकि हफ्ते भर अगर आप बैटल करेंगे तो फिर क्या होगा। तो कानी कानी ये इस ठंड में ज़्यादा होती है, तो कोई अच्छा सा क्रीम देख ले और उसका भी प्रयोग करें। एंड घर पर ऐसा ना हो कि बदनामी हो, पूजा के नाम पर आप कर क्या रहे हो। एनीवे समझदार को इशारा काफ़ी है। एंजॉय करें योर ट्रिप बैक होम एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमोरोज प्रोग्राम टू ऑल द मंडलीज आउट देयर जो होस्ट कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव फॉर 2026। आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं।

Alright, let's talk about our Hum Plus stations. Rover, आपके पास है तो Rover पर जाए. हमने आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर डाल कर रखी है. अभी कृष्ण जन्माष्टमी का दौर चल रहा है तो ऐसे में फिजी भजन और फिजी कीर्तन अगर आप सुनना चाहते हैं नॉन स्टॉप 24/7 टू कीप यू इन दैट डिवाइन जोन, तो आप Rover पर हमारे फिजी भजन को सुन सकते हैं या फिर फिजी कीर्तन संग्रह को सुन सकते हैं. टॉकिंग अबाउट कीर्तन, आई हैव वेंचर अ साइड गिग जिसको मैंने नाम दिया है राग एंड रिदम्स, और इसके नीचे मैंने लास्ट वीक रिकॉर्ड किया है एक कीर्तन एल्बम बाय अनुराग शाहिल कुमार. इसका एक मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है राग एंड रिदम्स का, तो गो एंड चेक आउट, या फिर फेसबुक पर पेज मेरा है राग एंड रिदम्स, उसको चेकआउट करें एंड लाइक करें, कमेंट्स करें क्या और बढ़िया हो सकता है. इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा एंड आई'ड लाइक टू डू मोर, आई'ड लाइक टू गेट इन कॉन्टेक्ट विद मोर पीपल जो रिकॉर्डिंग्स करवाना चाहते हैं. गेट इन टच, लेट्स क्रिएट गुड म्यूजिक, लेट्स क्रिएट सम ग्रेट कीर्तन और भजन एल्बम्स फॉर आवर कीर्तन एंड भजन लवर्स हियर इन न्यूजीलैंड. एक बात देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे जो यंगस्टर्स है, यंग पीपल है, दे आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन आवर कल्चर, आवर कीर्तन्स एंड आवर भजन्स. तो

All right, time for me to go away from studios for a bit, for 1 week, and then dobara main wapas aa jaunga Saturday ko in Radio Pub. Tab tak ke liye aap apna khayal rakhe. Have a blessed week. Have a great week of Shri Krishna Janmashtami celebrations. Zyada der raat tak mat jaagiyega. Pooja khatam ho jaye, khana kha kar family ke saath ghar jaiye, kyunki dusre roz kaam par jana hai, phir shaam ko phir pooja mein aana hai. Aisa na ho ki at the end of Shri Krishna Janmashtami you start blaming the week कि आप बीमार हो गए क्योंकि अष्टमी में आप जा रहे थे पूरे सप्ताह. भाई अपना ख्याल रखे, समय से आए, समय से जाए, समय से खाए, समय से सोए. इसी बात के साथ में मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ विद दिस ऑसम ऑसम ट्रैक बाय मोहम्मद अजीज एंड अलका याग्निक. मिलते हैं अगले शनिवार को रेडियो पब में. तब तक के लिए आप सभी को जिकाश का नमस्कार. हैव अ ग्रेट ऑसम एंड प्रोडक्टिव वीक अहेड. जय श्री कृष्णा.

0: Diamond Bushi.
1: Investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.
2: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
3: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
2: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
3: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
2: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय Village at Victoria, Indian Kitchen and Bar, BFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari koi branch nahi hai. Night Flight.

0: यार याद आ गई अपने दोस्तों की,
1: वो बचपन के दोस्त।
2: अजाने क्यों ये दूरियां बढ़ गई।
1: कई बार आपको लगता है कि मेरी गलती थी ही नहीं, उसी की गलती थी।
0: सच बताऊं, सही लगता है उसी की ही तो गलती थी
2: काफी हद तक, लेकिन थोड़ी गलती तो आपकी भी थी।
1: तो इसीलिए फोन उठाओ
0: और अभी इसी वक्त उनसे बात करो,
2: वरना कहते रह जाओगे।

0: Silky feelings.
1: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
2: Rusbi, tickets book ho gaye.
3: To phir der kis baat ki? Bali bula raha hai.
2: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
3: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
4: Fatiha.
3: बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
6: हेलो एवरीबॉडी।
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम।
8: डॉक्टर ने क्या बोला?
9: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
8: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
10: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक। हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन। माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड।
11: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे, कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA, दैट्स HIRA, और विजिट ashurevan.co.nz। नॉर्थनविल एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अश्योर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर।
12: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
3: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Budget gaane

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
5: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
6: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लेने.
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
7: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर.
8: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
7: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
9: नाइट फ्लाइट.

0: cool at home.
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
1: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
2: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
3: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
4: Sorry about that.
3: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
4: Kogan Mobile. True Aussie value.
3: Terms and conditions apply.
5: MediaWorks complaints. How can I help?
6: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
5: Nice.
6: And you talked me into creating this funny character.
5: Great.
6: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
5: Are you?
6: Yes.
5: Are you Bobby the Baker?
6: Yes.
5: What's that thing you do again?
6: Stop it.
5: You bring the mouth.
6: Stop it.
5: I'll bring the pie.
6: Stop it, please.
5: Okay.
6: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
5: So what's the problem?
6: My name's Bruce.
7: Advertise with MediaWorks.
5: New Zealand. And listens to us.
8: Hum, time check.
9: Good morning, it's 1 minute ho raha hai, 6:00.
8: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Kiwi investors are increasingly worried about the state of domestic politics. ASB says a record 40% claim they are very concerned about the impact on their investments. Economist Chris Tennant-Brown says people are being cautious.
11: Just because people aren't confident, they're not necessarily changing their investments. They might be taking some other actions like finding out more about them and what's driving the returns.
10: There's criticism over national student loan plans. The party wants to hike interest rates for borrowers who move overseas. But Labor spokesperson Shannon Halbert says it's a terrible idea.
12: What they're doing here is beating overseas Kiwis with a stick, telling them to pay up when there's actually better ways that you can incentivise them paying their student loans back.
10: Aucklanders are encouraged to give feedback on a new version of the council's unitary plan. Councillor Richard Hills says public opinion is key.
13: Whether the hazards are incorrect or the flood maps need to extend further, it's really important that people look at their own properties but also the area across Auckland.
10: Rescuers are trying to find 23 people missing after a passenger boat capsized en route from northern Cyprus to Turkey. At least 7 people are dead, with around 270 people thought to be on board at the time. To rugby league with Machinery House in a league of their own, the Warriors have locked in a top 2 finish and home advantage for the NRL playoffs. 21-year-old Jet Cleary made his debut at halfback, producing 4 try assists in a 46-32 win over the Knights at Mount Smart.
14: Oh, it was just everything I dreamed it to be. It was so much fun. It was just so cool.
10: The Warriors are top of the table with 1 game to go until the finals. And Northland defended the Ranfurly Shield 20 points to 10 over Tasman in front of a bumper crowd in Whangarei.
8: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
15: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
9: सूचित किया जाता है कि मोमी नैंडी फिजी के स्वर्गीय रामकरण के पुत्र यानी ऑकलैंड के रजनीश वीना तथा स्वर्गीय रंजनी और राकेश के पिता। स्वर्गीय शर्मावती के पति यानी जयप्रकाश की मृत्यु मिडलमो हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज 2 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02720021 95 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे मॉमी नैंडी फिजी के स्वर्गीय रामकरण के पुत्र यानी ऑकलैंड के रजनेश, वीना तथा स्वर्गीय रंजनी और राकेश के पिता। स्वर्गीय शर्मावती की पत्नी के पति यानी जयप्रकाश की मृत्यु मिडलमो हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज 2 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के गोविंद गाउंडर तथा नारायण सामी की मां यानी गेलेलोआ नैंडी के मिनाची की मृत्यु नैंडी फिजी में हो गई। अंतिम संस्कार इसी बुधवार को फिजी समय अनुसार नैंडी फिजी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02202955506 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे ऑकलैंड के गोविंद गाउंडर तथा नारायण सामी की मां यानी गलेलुआ नैंडी फिजी के मिनाची की मृत्यु नैंडी में हो गई। अंतिम संस्कार इसी बुधवार को फिजी समयानुसार नैंडी फिजी में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए आप 02202955506 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय उन्नी और पार्वती गोपालन के पुत्र यानी शॉन, शिवानी और लियन गोपालन के पिता रीना गोपालन के पति यानी करुणा गोपालन की मृत्यु लोटोका फिजी में हो गई। अंतिम संस्कार आज दिन में 10:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02104148 54 पर कॉल कर सकते हैं या 34 कासल फ्लिन ड्राइव मनुरेवा जा सकते हैं। याद रहे स्वर्गीय उन्नी और पार्वती गोपालन के पुत्र यानी शॉन, शिवानी और लियेन गोपालन के पिता रीना गोपालन के पति यानी करुणा गोपालन की मृत्यु लोटोका फिजी में हो गई। अंतिम संस्कार आज दिन में 10:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02104148 54 पर कॉल कर सकते हैं या 34 कैसल फिन ड्राइव मनुरेवा जा सकते हैं।
15: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
8: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
16: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
8: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: 12.5 degrees temperature Auckland में भी आप feel कर रहे हैं। आज का high 17, overnight कम से कम 12 degrees रहेगा। आज बादल छाए रहेंगे, रह रहकर कुछ हल्की बारिश होगी, कभी कभार कुछ तेज हवाएं चल सकती हैं। Sunrise 6:43 AM पर और sunset आज का शाम 6:01 पर होगा।
8: The breakfast show with Vijay and Pooja,
18: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune and Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
8: Breakfast catch up.
9: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। 7 मिनट हो रहे फिलहाल हमारी स्टूडियोज में 6:00। आज है मंडे 31st of August और फाइनल डे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आप सभी को बहुत बहुत बार मुबारक हो। ऑफिशियली वी आर इन द लास्ट डे ऑफ विंटर ऑफिशियली।
17: यस, और एक नई शुरुआत, एक नया मौका, एक नई अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी को संवारने का, सुधारने का, एक नई शुरुआत देने का। अगर इट हैज़ नॉट बीन द वे वी वुड हैव होप्ड, तो आज एक और ये अवसर हमको मिल रहा है। और सब कुछ डिपेंड करता है कि इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर का हम कैसे फ़ायदा उठाते हैं।
9: एब्सोल्युटली, तो चलिए एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ आज के सफ़र की शुरुआत हम कर रहे हैं 104.2 FM पर या फिर रोवर ऐप के जरिए जिक्र फिलहाल आप हमें सुन रहे हैं. अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, जिस पर आपके लिए द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा की शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं.

0: Sunny Side Up.
1: आज की सनी साइड अप स्टोरी योर पॉजिटिव न्यूज फॉर द मॉर्निंग, जहां पर ये खबर ऑल द वे फ्रॉम यूएसए से हम लेकर आ रहे हैं. और कहते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो हैं माइट स्टार्ट ऑन अ बैड नोट, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो गलत नोट पर शुरू होने के बावजूद भी वन ऑफ द थिकेस्ट रिलेशनशिप्स जो है ये बन जाते हैं आगे चलकर.
2: बहुत मजबूत, बहुत स्पेशल हो जाते हैं.
1: बिल्कुल. और सेम हुआ है इस पर्टिकुलर केस में. 97 ईयर ओल्ड एक व्यक्ति है जिनका नाम जिम बताया गया है, एंड ही क्रैश्ड इनटू डेस्टिनी स्मिथ, इनकी गाड़ी में जब वो ड्राइव कर रहे थे. ही वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट यू नो द सिचुएशन. जब ये हुआ सामने, तो अपेरेंटली जिम ने कहा कि जो रिस्पॉन्स डेस्टिनी ने उनको दिया वो उनके लिए बहुत स्पेशल रहा. ही इज 97 ईयर्स ओल्ड, ही हैज़ टू ड्राइव टू कम्यूट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम. और जो भी चीज़ हुई वो वॉज नॉट समथिंग डेलिब्रेट, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना. और डेस्टिनी का जो रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स जिम, दैट वॉज समथिंग दैट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप बिटवीन देम. अपेरेंटली द फर्स्ट थिंग शी वॉज कंसर्न अबाउट वॉज हाउ जिम इज़ डूइंग. वो अपनी गाड़ी को लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं थी, वो इस बात को लेकर ज़्यादा कंसर्न थी कि कहीं इनको किसी तरह की चोट तो नहीं लगी है. एंड आफ्टर स्पीकिंग विद हिम, उनको ये रियलाइज़ हुआ दैट वो अकेले रहते हैं और उनके पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं था. सो उन्होंने ये फैसला किया कि वो उनके साथ एक यू नो रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे. विल कीप ऑन टच. और साथ में जब भी ज़रूरत पड़ी उनको चेक करते रहेंगे इफ़ ही इज़ डूइंग वेल और नॉट. और जो एक वन ऑफ मोमेंट के ज़रिए शुरू हुआ था वो एक स्पेशल फ्रेंडशिप में जो है ये टर्न हो गया. डेस्टिनी जो है जिम को इन्होंने रेगुलरली विजिट करना शुरू कर दिया और छोटी छोटी चीज़ों में इनकी मदद जो ये करनी शुरू कर दी. कहीं उनको अगर जाना होता शॉपिंग के लिए, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो उनको कंपनी देती. समथिंग जो उन्होंने कहा है कि इतने सालों से उनके लिए कोई नहीं कर रहा था. द टू बिल्ड अ जेन्युइन बॉन्ड, शोइंग कि कभी कभी डिफिकल्ट मोमेंट भी लोगों को कितना करीब ला देता है और अनएक्सपेक्टेड वेज में आपके लिए कुछ नए रिश्ते जो है ये शुरू कर देता है. नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस स्टोरी इज कि ये जो कहानी है 97 ईयर ओल्ड जिम और 30 समथिंग ईयर ओल्ड डेस्टिनी के बारे में है. सो देयर इज अ बिग एज गैप, वी कैन से इट्स अ जनरेशन गैप. और साथ ही साथ जिम इज अ वाइट मैन वेयर इज डेस्टिनी इज अ ब्लैक वुमन. तो ये जो फ्रेंडशिप है लोग इनको इस वजह से अप्रिशिएट कर रहे हैं बिकॉज आजकल के ज़माने में जनरेशनल गैप्स जो होते हैं ये रिश्ते ख़राब कर देते हैं. एंड हियर वी सी अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जिनके बीच में जनरेशनल गैप तो है ही, कल्चर का डिफरेंस है. और एक ऐसे कल्चर का क्लैश वीकेंड्स है जहाँ पर ज़्यादातर लोग रेसिस्ट एक्सपीरियंस करते हैं. लेकिन यहाँ पर इस मामले में एक ऐसी गहरी दोस्ती बनी है कि डेस्टिनी जिम के सिचुएशन को समझती है, उनकी देखभाल करती है. एंड शी सेज कि अगर उनके लाइफ में उनके ग्रैंडफादर अभी भी होते तो जिस तरह से वो जिम को देखते हैं कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो अपने ग्रैंडफादर की भी उसी तरह से हेल्प करती. और दैट इज़ वाई उन्होंने ये फैसला किया कि वो जिम के साथ ये फ्रेंडशिप बरकरार रखेंगी.
2: Some things do click and वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी पूरी ज़िंदगी जो है ये बदल देते हैं, बट अपनी ओर से कोशिश भी करनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है.
1: बिल्कुल. तो आज की ये जो सनी साइड अप स्टोरी खास आपके लिए लेकर आ रहे थे ताकि आपकी सुबह को भी एक पॉजिटिव ब्यूटिफुल स्टार्ट जो है ये मिले. और इसी के साथ साथ आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस भी हमारे पास आए हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू सो वेरी मच. हर हर महादेव. गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, विश यू अ फैंटेस्टिक वीक अहेड. महादेव ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके मैसेज के लिए. गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ग्रेट वीक. विनीता ने अपना बहुत प्यारा सा मैसेज भेजा है. गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ ग्रेट डे. मैंडी ने कहा है राम राम, जय श्री कृष्ण, हैप्पी मंडे एवरीवन. मिस टमाटा माटा की ओर से मैसेज आया है, सो थैंक यू सो मच आप सभी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस के लिए भी.
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
4: ए देखो हम आ गए.
5: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
6: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
5: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
6: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
5: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
0: And it's looking ugly out there on the roads with severe delays on all motorways into the city.
4: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and grab a barista-made coffee in minutes. The perfect traffic jam remedy at BP.
7: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now 4299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
8: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी डिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा कप से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
9: गोवा की गलियों में एक नया बादशाह जन्म ले रहा है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश मयंक बाला कियारा अडवाणी तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी
10: हेलो डैडी
9: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास
11: इट्स टाइम आई एम कमिंग
9: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग टीबीसी
12: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
13: The beat of Bollywood.
14: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
13: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
3: Global headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में नेपाल और चाइना में आई तबाही के बाद 3000 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिसमें हाइड्रो पावर टनल्स में फंसे 900 से अधिक वर्कर्स भी शामिल हैं। इस बाढ़ और लैंडस्लाइड में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 85 अमेरिकन सहित कई अन्य देशों के नागरिक भी गायब हैं। रेस्क्यू टीम्स लोगों को बचाने में लगी हुई है। भारत में मेघालय में कल एक बड़े पुलिस एनकाउंटर में 4 आर्म्ड सस्पेक्ट्स मारे गए। ये घटना तड़के सुबह घटी जब नाका चेकिंग के दौरान आर्म्ड मैन ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 4 सस्पेक्ट्स को मार गिराया। फिजी में फिजियन होल्डिंग्स लिमिटेड के भूतपूर्व सीईओ मोहम्मद नजाब फरीद की इनडिसेंट असोल्ट केस में मिली 8 मंथ्स और 22 डेज की जेल सेंटेंस के खिलाफ अपील पर फिजी वुमेन्स राइट्स मूवमेंट ने सख्त एतराज जताया है। मूवमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नलिनी सिंह और लीडरशिप का कहना है कि 7 साल तक जस्टिस का वेट करने वाले विक्टिम के मुकाबले ये सेंटेंस पहले से ही काफी कम है और इसमें और कमी करना सभी वर्किंग वुमेन के मुंह पर तमाचा होगा। मूवमेंट ने मांग की है कि वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट और एग्जीक्यूटिव पावर के मिसयूज पर जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए कोर्ट इस सेंटेंस में कोई रियायत ना बरते। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक मैच में आज सुबह मैनचेस्टर यूनाइटेड की शानदार जीत इप्सविच टाउन के खिलाफ 5-2 से हुई। ईपीएल के बाकी मैचेस में संडरलैंड 1 फुलहम 0 लीड्स और ब्रेंटफोर्ड 1-1 गोल से बराबर ठहरे। कल न्यूकासल की जीत टॉटनहम हॉटस्पर्स के खिलाफ 2-0 से हुई। आज सुबह चेल्सी ने ब्राइटन को 4-3 से हराया। बाकी के मैचेस में बर्नमाउथ 1 एवर्टन 1 हल 1 कोवेंट्री 0 मैनचेस्टर सिटी 4 क्रिस्टल पैलेस 1 और लिवरपूल 7 में नॉटिंघम फॉरेस्ट 2-2 गोल से बराबर ठहरे। फिजी में एक्स्ट्रा बैटल ऑफ द जायंट्स सॉकर टूर्नामेंट इस सप्ताह से खेला जाएगा। इसे शुक्रवार को पहले राउंड के मैचेस में दिन में 1 बजे सुबह की भिड़ंत नापुआ से होगी। 3 बजे लंबासा नसीनू से खेलेगा। 5 बजे रेवा और लोटोका का मुकाबला होगा, जिसके बाद 7:30 बजे इसी हफ्ते का आखिरी मैच नांदी या इसी फ्राइडे का आखिरी मैच नांदी और मुंबा के बीच खेला जाएगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
16: Bollywood's most wanted.
17: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
18: मैं लाऊं अपना A game.
16: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: सिद्धार्थ बसरूर और साथ में प्रिया सरैया की आवाजों को आप सुन रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा। आपके लिए ए जेंटलमैन 2017 में ये फिल्म आई थी, उसी का ये गाना आज हमने चैट बस्टर में पेश किया। एंड इधर बातें कर रहे अबाउट मूवीज एंड फिल्म्स एंड बॉलीवुड, तो आज का लेटेस्ट बॉलीवुड बस क्या है आपके पास?
1: मेरे पास फ्यू स्टोरीज है। लीडिंग ऑफ विद इमरान हाशमी, इनको डायग्नोज किया गया है विद स्वाइन फ्लू।
0: ओके
1: यस। आवर अपन टू जो है वो तो ठीक ठाक चल ही रही है, अच्छी आमदनी भी कर रही है, तो वहीं पर अभी अपने कई प्रमोशनल इवेंट्स और पब्लिक अपीयरेंसेस को इनको पोस्टपोन करना पड़ा है। नाउ सनी देओल की फिल्म जो है बंटवारा 1947, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं शायद धीरे धीरे कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज जो है ये शुरू हो रही हैं। एंड शबाना आजमी ने एक डिबेट जो है ये शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि इस फिल्म ने स्ट्रगल किया क्योंकि लोग ये नहीं एक्सेप्ट कर पाए कि सनी देओल एक मुस्लिम किरदार निभा रहे थे। राजकुमार संतोषी इमीडिएटली उन्होंने रिजेक्ट किया इस थ्योरी को, साइटिंग हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस, जैसे अमिताभ बच्चन का रोल कूली में था, इट्स नॉट अबाउट दैट कि इसी वजह से लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है या उस फिल्म को उतना अप्रिशिएट नहीं किया है कि नहीं चल पाई है। वहीं पर राजकुमार संतोषी और सनी देओल ये फिर से साथ में काम करने जा रहे हैं। आई थिंक लास्ट वीक हमने इसके बारे में वेरी ब्रीफली कुछ बातें की थी। अभी आई एम नॉट कन्फर्म्ड, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद इस फिल्म का नाम हो घातक घुस के मारेगा।
0: What?
1: घातक घुस के मारेगा।
0: घातक इज फाइन, घुस के मारेगा डालने की क्या जरूरत है?
1: राजकुमार संतोषी felt like doing it,
0: क्योंकि घातक फिल्म आई है वो हमको पता है, जो सनी देओल की थी।
1: And
0: if I'm not mistaken, तो राजकुमार संतोषी नहीं बनाई थी। But घातक 2 कर दो, घातक रिटर्न्स कर दो, घुस के मारेगा।
1: उन्होंने कहा है कि it's not an official sequel।
0: तो क्यों वो नाम रख रहे हैं then? कुछ और ही नाम रख लो।
1: पता नहीं उनकी स्टोरी लाइन क्या है ना, मैं कैसे बताऊं?
0: नहीं, मैं आपसे सवाल के बदले जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं।
1: तो पूछ
0: मैं
1: रही
0: सिर्फ सवाल कर रही हूं, because it makes me think, you know, there's a situation।
1: हाँ, वहीं पर ऑस्कर्स, ऑस्कर्स मालूम है ना, द ऑफिशियल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, उनके सोशल मीडिया पेज ने बॉलीवुड को एक सरप्राइज दिया है।
0: ऐसा क्या किया?
1: दे गेव अ सरप्राइज शाउट आउट, एक आइकॉनिक सीन है फीचरिंग नैना और रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और
0: जवानी है दीवानी।
1: यस, उन्होंने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर इसको शेयर किया, जिसके बाद यू नो लोग काफी नॉस्टैल्जिक हो गए। And there was a lot of celebration amongst Indian.
0: चलो ऑस्कर अवार्ड ना सही, लेकिन ऑस्कर के जरिए एक मेंशन ही सही, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। On the other hand, let me remind you, अक्षय कुमार and सैफ अली खान की फिल्म हैवान, जिसके बारे में हमने आपको मेंशन किया था ऑन द ब्रेकफास्ट शो, इसका जो ऑफिशियल ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। व्हेनेवर यू गेट अ चांस, जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एनी अपडेट्स फॉर अस टू शेयर, तो वो भी आप हमें जरूर बता सकते हैं। 24 मिनट्स अवे फ्रॉम 7:04 नाउ, थोड़ी देर बाद आपके लिए आज का पहला सवाल हम लेकर आने वाले हैं।
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
2: अटेंशन हम पैसेंजर्स, योर नेक्स्ट बोर्डिंग कॉल कुड टेक यू टू पैराडाइज। Listen out for your special hum boarding call for your chance to win to return a tickets to Vanuatu with Solomon Airlines.
4: Let's take a vacation.
2: And $1,000 spending money.
5: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Accurate traffic.
6: You made it with Caboodle.
7: A lot of cloud, just a bit of sun today, a high of 17 degrees. If you're coming into the city, motorways are fine, but heading out on the southern, just trying to leave the city, there's a breakdown southbound just past the Grafton on-ramp. Coming in on the southern, we're fine, 22 minutes in from Monaco, slow at Manurewa. A little bit of traffic heading to the airport on George Bolt, but otherwise we're pretty much A-OK. Northern, northwestern, all good.
6: Impress even the toughest critics with Caboodle's stylish, affordable and easy to install kitchens.
8: Professional financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
9: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
8: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
9: Professional financial solutions. Your future our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 or visit legalassociates.co.nz.
12: At Macca's, you can get the new honey sriracha sauce on any breakfast. McMuffins, brekkie wraps, big brekkie burgers, hotcakes. Nah, that'd be weird. Honey sriracha, only for a limited time. T's and C's apply.
13: डॉक्टर ने क्या बोला?
14: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
13: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
15: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
16: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. Northernville Advisory Limited trading as Assured One is a licensed financial advice provider.
17: Boat plus ute equals beaut. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
18: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
19: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: अभी 20 मिनट रह गए हैं 7 बजे में, 7 पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे। आज 31st of August किसी का बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, मेक श्योर समय से पहले अपने मैसेजेस आप हमें ज़रूर भेज दें। वैसे आज इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे ये मार्क किया जाता है, एन इम्पोर्टेंट डे, और उसके साथ आज अन्य चीज़ें जो सेलिब्रेट की जा रही हैं उनमें शामिल हैं वर्ल्ड डिस्टेंस लर्निंग डे। कोविड के बाद से तो ये और स्पेशल या और ज़्यादा यू नो फोकस में आ गया है। वर्ल्ड स्टॉप साइन डे ये भी है आज 31st of August। आज ही के दिन जन्म हुआ था जो फोर्थ मुगल एम्परर थे जहांगीर, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 1569 में फतेहपुर पुरानी सिकरी में। और उसके साथ आज ऋतुपर्ण घोष जो कि इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, लिरिसिस्ट हैं, इनका जन्म आज ही के दिन 1963 में हुआ था। एंड इन 1982 आज ही के दिन जन्म हुआ था डॉक्टर सतेंद्र सरताज का।
0: तो देयर यू गो, अगर आज आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर इस तारीख को बहुत सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इट्स अ स्पेशल डेट फॉर यू, डू लेट अस नो। आप हमारे पास मैसेज अपना जो है ये सेंड कर सकते हैं ऑन 5599 और आपको हम ज़रूर याद करते हुए विश भी करेंगे। फिलहाल हमने कहा था कि आज का पहला सवाल ये भी आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, जिसके लिए आई होप यू गाइज आर रेडी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको बताना है कि ये कौन सी बॉलीवुड फिल्म हो सकती है। दो नाम हम अभी रिवील करेंगे और दो नाम हम रिवील करेंगे थोड़ी देर बाद। देखते हैं पहले दो नाम सुनकर क्या आपके लिए इजी होता है टू आइडेंटिफाई द मूवी और नॉट, और फिर उसके बाद में अगर थोड़ा गलत हुआ, कोई नहीं बता पाया, तो बाकी के दो नाम रिवील करते विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। इनफैक्ट बाद में तीन नाम रिवील करेंगे, दो नहीं। तो सबसे पहले दो नाम आज के हमारे बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे को गेस करने के लिए इज अमिताभ बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन।
1: ओके,
0: अमिताभ बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन।
1: आई नो वन मूवी एट लीस्ट,
0: राइट। तो आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म है ये, अपने आंसर्स हमारे पास आप सेंड कर दीजिए ऑन 5599। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या कोई आज की मूवी सही सही गेस कर पाया है या नहीं।
20: Let's go.
21: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: अक्षय कुमार, अजय देवगन एंड तुषार कपूर. या
1: अक्षय कुमार,
0: अजय देवगन,
1: तुषार कपूर,
0: तुषार कपूर,
1: अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय.
0: या
1: बच्चन.
0: यस. तो क्या ये नाम रिवील होने के बाद आपके पास कोई भी जवाब है कि ये कौन सी फिल्म हो सकती है? As far as I know, मैंने जितना पढ़ा भी इसके बारे में, दिस फिल्म didn't do that well, but फिल्म को लोगों ने पसंद ज़रूर किया था. In fact, didn't do well when we say, तो I meant कि बॉक्स ऑफिस पर internationally.
1: Okay.
0: लेकिन nationally अगर देखा जाए तो ये उस साल की highest grossing फिल्म थी in India. Sorry, not the highest grossing film, fifth highest grossing film थी उस साल की. तो it did well nationally.
1: अच्छा, इंडिया में अच्छी चली लेकिन बाहर शायद
0: नहीं चली उतनी.
1: हाँ, उतनी नहीं चल पाई
0: जी.
1: तो कौन सी ये फिल्म हो सकती है? बी एफ अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आपको हमारे पास भेजना है. देखिए क्या आप में से कोई है जो आज इस फिल्म को सही सही पहचान सकता है और अपने आंसर्स हमारे पास भेजता है.
0: वेल अराउंड थ्रोबैक हम देखेंगे, अगर किसी का सही जवाब नहीं आता है, विल ट्राई एंड गिव यू सम मोर क्लूज, बट लेट्स सी क्या होता है आज के सवाल का.

0: दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: हम Accurate traffic.
3: Auckland Home Show, 10 to 13 September.
4: Quite cloudy, a little sun today. Got a high of 17 degrees into the city. Looking okay for the most part. Heading out on the southern though. Breakdown just past the Grafton on-ramp if you're trying to leave the city. Coming in, 28 minutes, Monaco to town. Slow patches, Tuckanini to Mount Wellington. Southwestern okay. Northwestern, 25 in from Massey. Slow at Theatre to heavy at St. Luke's and slow to the city. Northern, 20 from Constellation. Not too bad.
3: Auckland Home Show and Garden Showcase, 10 to 13 September at Auckland Showgrounds.
5: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
6: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
8: When India comes to town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Cricket Nation ke pre-sale mein shamil ho. NZC.NZ pe aur apne ticket sabse pehle book karo. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps vs India.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
9: 10 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में। जब यू नो हनीमून की बातें आती है, अगर एक कपल की नई नई शादी हुई है एंड दे आर प्लानिंग देयर हनीमून, तो कौन सी कंट्री शायद जाने के बारे में वो सोचे?
10: स्विट्जरलैंड ज्यादा सोचते हैं लोग।
9: स्विट्जरलैंड,
10: दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज़ मैंने फिल्मों में यही देखा है ना।
9: ओके, इंडिया का एक कपल है, दे चोज न्यूजीलैंड।
10: अरे वाह,
9: दे प्लान्ड

0: उन्होंने शुरू शुरू में जब रिसर्च करना शुरू किया उनको पता चला कि इंडियन अराउंड 900,000 रुपीस उनको लग सकते हैं. आई एम नॉट रियली श्योर 900,000 कितने होते हैं न्यूजीलैंड डॉलर्स में, बट उन्होंने
1: 900,000 डॉलर्स न्यूजीलैंड डॉलर्स
0: 900,000 रुपीस
1: 900,000 रुपीस
0: इंडियन रुपीस. लेकिन उनका ट्रिप जो है 13 डे ट्रिप हनीमून ट्रिप टू न्यूजीलैंड कॉस्ट 593,000 रुपीस.
1: एक मिनट फिर से नंबर्स बताइएगा.
0: शुरू शुरू में रिसर्च में उनको लगा कि
1: 900,000 लगेंगे.
0: उनका बजट था 700,000 रुपीस, बट दे मैनेज द ट्रिप इन 593,000 रुपीस,
1: सो रफली 600,000 में.
0: हाँ,
1: सो 300,000 उनका जो है ये जो इनिशियल अमाउंट था उससे कम.
0: हाँ,
1: बट जो बजट था उसका 100,000 कम.
0: हाँ, बजट से भी कम.
1: हाँ,
0: तो उन्होंने कहा कि वी डिड ए 2 week हनीमून इन न्यूजीलैंड मार्च और अर्ली अप्रैल में इस साल. उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर ये शेयर किया.
1: राइट.
0: और इट कवर्ड द जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू ऑकलैंड एंड क्वींसटाउन देन बैक टू दिल्ली एज वेल एज डोमेस्टिक फ्लाइट फ्रॉम ऑकलैंड टू क्राइस्टचर्च. उन्होंने बताया कि दे डिड नॉट परचेज नॉन रिफंडेबल फ्लाइट्स बिफोर अप्लाइंग फॉर अ वीजा विच कॉस्ट देम अराउंड 30,000. उनको शुआ नहीं था वेदर टू बुक फ्लाइट्स बिफोर अप्लाइंग वो सारी चीज़ें. 13 दिनों का ट्रिप उन्होंने किया नॉर्थ और साउथ आइलैंड ऑकलैंड क्राइस्टचर्च माउंट कुक वेटोमो मिल्फर्ड साउंड्स ये सारे के सारे जगह वो गए.
1: That's very interesting. 900,000 रुपीज़ जो है न्यूजीलैंड डॉलर्स में अराउंड 15,000 to 16,000 डॉलर्स होते हैं, और 593,000 रुपीज़ जो है ये न्यूजीलैंड डॉलर्स अराउंड देखा जाए 10,500 डॉलर्स तक होते हैं. सो नॉट बेड अगर देखा जाए
0: 10,000.
1: बट 10,000 डॉलर्स फॉर अ ट्रिप फॉर 13 डेज.
0: हाँ,
1: वो भी चीज देखनी पड़ेगी ना.
0: फॉर अ कपल
1: या इंटरेस्टिंग. एनीवेज, तो हमने जो आज बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे आपसे पूछने की पूछी थी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अजय देवगन, तुषार कपूर एंड अक्षय कुमार, अ फ्यू अभी भी कुछ गलत आंसर्स हमारे पास भेज रहे. आन किसी ने लिख कर भेजा तो ये गलत है. आपको एक क्लू हम देना चाहते हैं. ये फिल्म का नाम जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टेड नेम आई वुड से जब हम पब्लिक सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बातें करते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया
0: इंडियन पब्लिक सर्विस.
1: हाँ, तो उस हिसाब से फिल्म का नाम जो है बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से देखा जाता है इंडिया में.
0: ओके, तो आप बताइए कौन सी फिल्म अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, तुषार कपूर,
1: yes.
0: इन सभी ने इस फिल्म में काम किया. और BF आंसर नाम ये 5599 पर भेजे.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज के मौसम के लिए कहा गया है पार्टली क्लाउडी वेदर रहेगा. पीरियड्स ऑफ रेन जो है, शावर्स ये जरूर में एक्सपीरियंस करेंगे रहकर. सनसेट होगा 6:01 PM पर. टेम्परेचर राइट नाउ 13 डिग्रीज है. हाई 17 एक्सपेक्टेड लेटर टुडे. ओवरनाइट 12 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर everyday luxury living.
0: Morning madness.
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते. 3 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 7:07 और आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आज है मंडे 31st of August. जैसे कि हमने आपको पहले भी रिमाइंड किया है, टुडे इज द लास्ट डे फॉर दिस मंथ. और ऑफिशियली देखा जाए तो आज विंटर का फाइनल डे है. कल यानी 1st of September से स्प्रिंग की शुरुआत होगी. एंड स्प्रिंग कंसिडर टू बी वन ऑफ द ब्यूटिफुल यू नो सीजन इन न्यूजीलैंड, जहाँ पर हर ओर आपको फूल, पौधे, पेड़, वेजी गार्डन एकदम रेडी ये मिलते हैं ना
3: जी.
1: आपका वेजी गार्डन तैयार हो गया?
3: बिल्कुल नहीं.
1: मेरा भी नहीं. इस साल मेरा है प्लान और आई एम थिंकिंग लाइक कि कुछ बेसिक्स जैसे हो गए, टमाटर हो गए, चिलीज हो गए, ये धनिया. बहुत से लोग कोशिश करते हैं धनिया उगाने की, पर उनका तो धनिया ही उगता ही नहीं है. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, बट दिस ईयर आई डिसाइडेड कि आई एम गोना ट्राई माय लक विद इट. और साथ में स्पिनच, ये मेरे 3-4 चीजें हैं जो आई एम गोना यू नो पुट इन माय वेजी गार्डन दिस ईयर.
3: सो धनिया, टमाटर,
1: चिलीज और स्पिनच. हाँ, मस्ट है ये. इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं कर पाई तो कर पाई, अच्छी बात है. बट ये 4 चीजें मस्ट है जो करना ही करना.
3: देन आई विल रिस्ट्रिक्ट माय गार्डन. मैं अपने गार्डन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ. आई विल जस्ट कीप बैंगन.
1: हाँ गुड. अरे आप टमाटर भी उगा सकते हैं.
3: नहीं, आप तो उगा रही हैं.
1: मैंने बोला टमाटर.
3: टमाटर, मिर्च, स्पिनच. And there's one more thing.
1: मैं बोल के भूल गई. धनिया, टमाटर, मिर्च और स्पिनच. या
3: सब कुछ रहेगा.
1: पर ये धनिया, मिर्च और टमाटर ये कुछ ऐसी 3 चीजें हैं जो हर एक खाने में यूज हो जाती है ना. चाहे आप सैलेड वगैरह भी बना रहे हो, खाने में डाल रहे हो, फिर ऐसे ही खा रहे हो. स्पिनच भी कच्चा खा सकते हैं, दाल में डाल दो, उसकी सब्जी बना लो, पराठे बना लो.
3: सबको पता चल गया.
1: हाँ, मल्टी टैलेंटेड है ना ये सारी चीजें. तो इसीलिए मैं ये 4 चीजें जो है मस्ट उगाने वाली हूँ. बट व्हाट अबाउट यू गाइस, क्या आपका वेजी गार्डन रेडी है? मेरा तो खैर अभी प्लान रेडी है, गार्डन नहीं. गार्डन शायद अभी दूर दूर तक रेडी नहीं है. बट आई वर्क ऑन इट दिस ईयर. वो मैंने खुद को बताया कि करना पड़ेगा इस साल. तो इसीलिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ इसके लिए.
3: अच्छा अच्छा.
1: फिजिकली जब प्रिपेयर हो जाऊंगी तो सबके साथ जरूर शेयर करूंगी. देयर ओके, आई एम स्टार्टिंग द वर्क. हियर एम आई. ये मैंने कर लिया है, प्लांटर्स लगा लिए.
3: नो चैलेंज है आपके लिए. यू टेक अ स्टेप एंड यू शेयर इट ऑन आवर सोशल.
1: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये करना है मेरे को.
3: हां, नहीं
1: अपडेट, क्योंकि उस हिसाब से फिर मेरी चोरी भी नहीं पकड़ी जाएगी कि बोल के किया ही नहीं. तो मैं भी मोटिवेटेड
3: हूं. कोई नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा.
1: नहीं
3: मैं, आप मुझे स्पॉट दिखा दो कहां आपने सोचा है गार्डन बनाने का, उस जगह की फोटो. एंड स्टेप बाय स्टेप मैं अपडेट करता रहूंगा लोगों को
1: कि मैंने किया कि नहीं,
3: कि ये कितना आगे गई. एवरी वीक.
1: या यू कैन डू दैट.
3: एवरी वीक मैं देखूंगा.
1: मैं इस वजह से ये बोल रही हूं बिकॉज़ इट विल बी समथिंग दैट विल हेल्प मी स्टे मोटिवेटेड ना कि करना है.
3: कैसा रहेगा एवरी वीक मैं फोटो डालूं, सेम फोटो रहे वहां पे.
1: नहीं नहीं, इस साल वैसा नहीं होगा. बट वी विल सी हाउ द सिचुएशन इज. एंड जैसे कि हमने कहा, अगर आपके पास भी है कुछ शेयर करने को तो वो भी आप हमें जरूर बता सकते हैं. इफ यू हैव गॉट एनी टिप्स फॉर मी कि ये अच्छा गार्डन तैयार करना है इस साल, वेजी गार्डन क्या कर सकते हैं, बिकॉज आप में से बहुत से लोग करते होंगे हर साल ना.
3: हाँ.
1: तो बता सकते हैं आप हमें. फिलहाल चलिए, गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन जो हमने पिछले घंटे पूछा था.
3: ओ हाँ,
1: मूवी आइडेंटिफाई करनी थी लोगों को.
3: आंसर्स आए? मैंने तो चेक ही नहीं किया.
1: जी जी, आए हैं आंसर्स, आए हैं डेफिनेटली. सबसे पहले तो गलत आंसर आया था बंटी बबली, जिसके बाद फिजा ने अपना आंसर भेजा था, फिर प्रीतेश ने आन कहा था, सनी का आंसर आया, नितिका का जवाब आया, सतिंदर जी ने अपना जवाब भेजा, कवनीत ने आंसर भेजा, नीलेश ने अपना जवाब जो है कि भेजा. सो द करेक्ट आंसर फॉर टुडे इज खाकी. खाकी फिल्म जो है ये आई थी 2004 में और इसमें काम किया था अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अजय देवगन और साथ में अक्षय कुमार एंड तुषार कपूर ने. तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है, इफ़ यू गेट अ चांस, इफ यू थिंकिंग कि क्या देखे, कुछ देखनी है ऐसी जो पहले आई हो, जस्ट टू कीप आवरसेल्व्स यू नो रिफ्रेश एंड अपडेटेड कि ऐसी भी कोई एक फिल्म थी जो नहीं देखी है, तो आप ये फिल्म जरूर चेकआउट कर सकते हैं.
3: मेक श्योर यू गेट दैट डन. अभी तक आप में से सिर्फ 13 लोगों ने जाकर डेट्स आईया अपग्रेड में हिस्सा लिया है हमारे सोशल मीडिया पेज पर, हमारे फेसबुक पेज पर. तो इसके बारे में भी बातें कुछ देर बाद हम करेंगे.
4: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: मेष यानी एरीज, आज आपके मैनेजर्स सुपरवाइजर्स का काफ़ी सपोर्ट आपको मिल सकता है. काम पर किसी लंबे ट्रैवल पर जाना पड़ सकता है. आज अपने अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस पर थोड़ा कंट्रोल बनाए रखें ताकि आपका बजट बैलेंस्ड रहे.
3: वृषणी टूरिस्ट, आज आपके लिए कहा गया है कि आज दफ्तर में आपको मान सम्मान मिलेगा, मतलब आपके ऑफिस में यू गेट ऑल द रिस्पेक्ट जो आपके दिल की इच्छा है. और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि आज यू नो बिजनेस रिलेटेड अगर कुछ डिसीजन आपको लेने हैं, कुछ डील्स आपको करने हैं, तो अच्छे से सोच समझ कर ये चीज़ें आप करें, क्योंकि कुछ बहुत ही ज़रूरी मौके आपके हाथ लगेंगे. अगर आपने वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए तो आपके हाथ से छूट भी सकते हैं.
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज आप मुश्किल कामों को समझदारी से, डायलॉग से पूरा कर सकते हैं. बिजनेस है तो नेटवर्किंग से आपके बिजनेस को फ़ायदा होगा. कुछ नए ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं. गलत फहमियाँ शायद किसी के साथ थी तो वो भी आज दूर होंगी.
3: करके ने कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि आज कुछ बुजुर्ग लोग हैं आपकी लाइफ में, आपको ये बहुत सही एडवाइस देंगे. अक्सर हम क्या करते हैं कि हम एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करने लगते हैं कि आपके ज़माने में थोड़े ना ऐसा था तो आप क्या समझोगे. पर कभी कभी उनके जो एडवाइस होते हैं ये सुनने ज़रूरी होते हैं, बिकॉज यू कैन इवेल्युएट जो आपके काम आ सकते हैं. यू कैन चेंज थिंग्स फॉर योर ओन गुड. तो आज ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है. ध्यान से सही तरीके से इसे रिसीव करें आप. और साथ में आपके लिए ये भी कहा गया है कि आज खाने पीने के मामले में थोड़ा केयरफुल रहे. देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद योर हेल्थ. तबीयत पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है आपके लिए. और आप अगर ये नहीं करते हैं आज तो आगे चलकर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है.
2: सिंह यानी लियो, आज काम करते समय थोड़ा केयरफुल रहें. अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले देख ले कि क्या रिस्क है. अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है तो इन्वेस्टमेंट ना ही करें. आज बोल चाल पर और अपने एक्सपेंसिस पर कंट्रोल बनाकर रखना ज़रूरी है.
3: और उसके बाद आज कन्या यानी वर्गो, आज आपके लिए बताया जा रहा है कि आज का आपका दिन जहां पर कार्यस्थल यानी कि नौकरी जहां पर करते हैं आप, वहां पर आपके जो कलीग्स हैं इनका साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत बेहतर रिजल्ट्स आज आप हासिल करेंगे. आज आप में एक हिम्मत भी आएगी, साहस जो है ये आप एक्सपीरियंस करेंगे खुद में, टू वॉइस आउट योर ओपिनियंस, टू से नो टू थिंग्स जो आपको गलत लगते हैं.
2: तुला यानी लिब्रा, आज काफी प्रेशर रहेगा काम पर, लेकिन अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आप पूरा करेंगे. आज बजट बनाकर पैसे स्पेंड करें, ये बहुत ही ज़रूरी है. और अपना जो दिनचर्या है या फिर जो डेली आपके जो भी काम वगैरह हैं उनको आप ऑर्गेनाइज रखें तो बेहतर रहेगा.
3: और साथ में आज तुला यानी लिब्रा, आज आपके लिए बताया गया है. हाँ, तुला यानी लिब्रा, आज आपके लिए बताया जा रहा है. दिन क्या है?
2: वृश्चिक है आपका ना,
3: तो आपने क्या मिस किया?
2: मैंने क्या मिस किया? मैंने सिंह बताया, आपने कन्या बताया, मैंने तुला बताया.
3: ओके, वृश्चिक है स्कॉर्पियो. आपके लिए बताया गया है कि कुछ नई जिम्मेदारियां आज आपको मिल सकती हैं. और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं ये आज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाले हैं. जो सपोर्ट ये आपको देंगे, ये मेंटल इमोशनल सपोर्ट आज आपको काफ़ी ज़रूरी फैसले करने में हेल्प कर सकते हैं. कुछ ऐसे फैसले जो कई सालों से अटके पड़े थे, बट यू नीड टू मेक देम फॉर क्लैरिटी एंड फॉर प्रोग्रेस.
2: धनु यानी सेजिटेरियस, ऑफिस में आज शांति बनाए रखें और घरेलू काम जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, इनको अच्छी तरह से बैलेंस करना ज़रूरी होगा. फैमिली एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल होगा, अपनों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा.
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है आत्मविश्वास आज आपका बढ़ेगा. स्पेशली जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर लोग आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आज नोट करेंगे. और साथ में आपके लिए ये भी कहा गया है कि रोमांटिक रिलेशनशिप के मामले में जो रिश्ते हैं आपके, जो रोमांटिकली जिनके साथ आप इन्वॉल्व हैं, इनके साथ आज आपके रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होंगे. यू विल रियलाइज कि ये जो शख्स है, ही और शी इज द वन जिनके साथ आप अपना भविष्य जो है स्पेंड करना चाहते हैं.
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है और कुछ ज़्यादा पैसे या और पैसे आपको मिलेंगे. लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी इमोशनली आज आप कनेक्ट करेंगे. क्या खाते पीते हैं इसका ख्याल रखें.
3: और उसके बाद मीने ने पाइसेस आपके लिए कहा जा रहा है कुछ नई पहचान बनेंगे आज. एक्सपीरियंसेस होते हैं ना जब हम कोई भी पर्टिकुलर चीज करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं, पहचान बनते हैं, और यही जो नए पहचान है ये भविष्य में चलकर आपके काफ़ी काम आ सकते हैं. इसीलिए पे अटेंशन और अपनी ओर से जो भी एफर्ट्स आपको करने हैं वो ज़रूर कीजिए इस रिश्ते को और भी आगे बढ़ाने के लिए. मैरिड लाइफ बहुत अच्छा बीतेगा ऐसा मीने ने पाइसेस आपके लिए कहा गया है. आपसे विश्वास जो है ये आपका आज बढ़ेगा और इसकी वजह से योर रिलेशनशिप विल बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर. आज के आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ मॉर्निंग मैडनेस में थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे आपके लिए योर सेलिब्रिटी अलार्म फॉर टुडे.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Rarotonga is on sale now at Flight Centre. Book an adults-only five-night fly-and-stay holiday from $1,439 per person. Book in-store today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
4: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin binning. And you need to know about it.
5: Join the Tribe!
4: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
5: join the Tribe!
6: Okay, a large pizza base with tomato paste, a few salami slices, grated cheese, a 1.5-litre bottle of fizzy drink, and a garlic bread on the side. Is that all?
7: Yes, that's all, thanks. But whoa, how much? On second thought, no thanks. I'm just going to make my own pepperoni pizza with stuff from Pack and Save.
6: Okay, sorry.
7: Apology accepted. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
6: Oh, man.
8: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ
9: अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
9: मिसेस सिंह
10: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
12: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
13: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
14: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
16: Celebrity Alarm. Hit it.
2: तो चलिए आज के सेलिब्रिटी अलार्म जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स आज एक आवाज आपको हम सुनाएंगे यू हैव टू गेस कि ये किसकी आवाज है अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई इन आइडेंटिफाइंग द वॉइस तो हम आपकी हेल्प भी करेंगे नो नीड टू वरी पर पहले आपको आवाज जो है ये सुना देते हैं कि आज कौन सी आवाज आपको पहचानने की कोशिश करनी है
17: मैंने ये ऐसा क्या खास बात है उनके अंदर कि उनकी उनकी स्माइल की बात कर रहा है उनकी आंखों की बात कर रहा है तो इनकी एक अजीब अजीब और गरीब बड़ी फैन फॉलोइंग थी लड़कियों में अक्षय की
18: थी
17: है? है अभी भी है आप ज्यादा काम नहीं करते ना तो वो सारी मैंने ये
2: तो ये आवाज हमने आपको सुनाई और अब आपको बताना है कि ये किन की आवाज है आपको आप देखिए मत ना
18: अच्छा।
2: ये क्या हरकत है मतलब
18: तो फिर से सुनाइए
2: ना आपके पास एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी है कि आप देख सकते हैं तो आपको पता चल जाता है पर बाकी लोग देख नहीं सकते वो सुन सकते तो आप भी सुनकर अनुमान लगा सकते हैं
18: हाँ, सुनाइए
2: ठीक है मैं आपको एक बार फिर से सुनाती हूँ अगर ये प्ले हो गया तो और ये सुनने के बाद आपको कोशिश करनी है हमें बताने की कि ये किन की आवाज है
17: ये ऐसा क्या खास बात है उनके अंदर कि उनकी स्माइल की बात कर रहा है उनकी आंखों की बात कर रहा है तो इनकी एक अजीब अजीब और गरीब बड़ी फैन फॉलोइंग थी लड़कियों में अक्षय की
18: थी
17: है अभी भी है आप ज्यादा काम नहीं करते ना तो वो सारी
2: तो अगर आपने इनकी आवाज़ पहचान ली है अपने आंसर्स हमारे पास आप भेज सकते हैं 5599 पर आपको बस एक छोटी सी चीज़ करनी है लिखना है BF उसके बाद अपना आंसर अपना नाम और भेज देना है 5599 पर
18: Let's see. I'm still trying to think कि ये कौन हो सकते हैं.
2: बहुत easy है, बहुत ही ज़्यादा easy है. और Monday है ना, we trying to keep things light today. We have to start the week इसीलिए. पर अगर आपको थोड़ी भी difficulty अगर हो रही है, थोड़ी देर बाद we'll check out what's the situation like. फिर आपको हम और clues देंगे, ज़रूर देंगे. By the way, जो दूसरी आवाज़ आपने सुनी थी, वो अक्षय खन्ना की थी. वो अच्छा. नहीं पहचाननी आपको, जिसमें जो जो वॉइस सबसे ज्यादा बोल रहा था इस ऑडियो में.
18: ओके
2: okay. उनकी आवाज पहचाननी है. ठीक है,
18: लेट्स सी.
2: राइट, 25 मिनट्स आफ्टर 7 फॉर नाउ. थोड़ी देर बाद आपके लिए आज का न्यूज हेडलाइंस.
9: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
19: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ,
20: मैं लाऊं अपना ए गेम.
9: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में हेल्थ न्यूजीलैंड द्वारा विजन वेस्ट, लाइफवाइज और प्रेस्बिटेरियन सपोर्ट नॉर्दर्न के कॉन्ट्रैक्ट्स कट करने के बाद ऑकलैंड में 1,200 से ज्यादा होम सपोर्ट वर्कर्स की जॉब खतरे में पड़ गई है, जिससे लगभग 4,500 एल्डरली और डिसेबल्ड लोग प्रभावित होंगे। पब्लिक सर्विस एसोसिएशन की नेशनल सेक्रेटरी फ्लेव फिट्ज़सिमन्स ने इस डिसीजन की निंदा करते हुए मांग की है कि कंटिन्यूटी ऑफ केयर और फेयर ट्रीटमेंट के लिए वर्कर्स को सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पर ट्रांसफर किया जाए। वही पीएसआई ने लीगल एक्शन की भी वार्निंग दी है। प्रेस्बिटेरियन सपोर्ट नॉर्दर्न के सीईओ शॉन ग्रीव्स ने इस सडन डिसीजन पर हैरानी जताते हुए कहा कि एनलिवन के 30% स्टाफ पिछले 10 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं और नई एजेंसीज की क्लैरिटी ना होने से मार्च तक स्मूथ ट्रांजिशन को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। दूसरी तरफ हेल्थ न्यूजीलैंड का कहना है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हाई क्वालिटी और सस्टेनेबल सर्विसेज के क्राइटेरिया पर आधारित था और वो पुराने प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर स्मूथ ट्रांजिशन प्लान करने पर काम कर रहे हैं। शुक्रवार की रात को एजेंसी में पास हुए वेलफेयर बिल के बाद न्यूजीलैंड में हजारों यूथ से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का एक्सेस छिनने वाला है। नवंबर 2026 से गवर्नमेंट 18 टू 19 साल के उन युवकों को जॉब सीकर पेमेंट्स नहीं देगा जिनके पेरेंट्स की आमदनी $67,225 से ज्यादा है, जिससे लगभग 4,300 लोग प्रभावित होंगे। सोशल डेवलपमेंट मिनिस्टर लुइस अपस्टन के मुताबिक इस बिल का मकसद बेनिफिट डिपेंडेंसी कम करना है, जबकि अकोमोडेशन सप्लीमेंट कैलकुलेशन में हुए बदलाव सुपर एन्युइटेंट्स और डिसेबल्ड लोगों पर लागू नहीं होंगे। पहले मैच में जीत के बाद ऑल ब्लैक्स टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। कल सुबह साउथ अफ्रीका की जीत ऑल ब्लैक्स के खिलाफ 33-26 से हुई। दोनों टीमों के बीच आखिरी और डिसाइडिंग मैच इसी रविवार की सुबह 3 बजे खेला जाएगा। फिलहाल एक अन्य इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत अर्जेंटीना के खिलाफ 21-27 से हुई। वॉरियर्स रग्बी टीम इस सीजन का एक होम सेमीफाइनल जो है या क्वालिफाइंग मैच जो है ये खेलने जा रहा है। वॉरियर्स की जीत कल नाइट्स के खिलाफ 46-32 से हुई और आखिरी राउंड के मैच में वॉरियर्स का मुकाबला शनिवार को सी ईगल्स के खिलाफ शाम 5 बजे होने जा रहा है। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
4: Your holiday boarding pass could be waiting. Keep

0: accurate traffic.
1: Sit back and save lives.
2: 17 hour high, fine spells on a quite cloudy one today. Into the city, Southern Motorway, 40 minutes Manukau to town, 55 Drury to the city. Slow patches all the way from Papakura and getting heavy at times. Southwestern slow northbound from the southern right up to the airport link. Northwestern 34 Massey to town, slow from there, lots of heavy spots. Northern 28 from Constellation, slow all the way from there and heavy at Silverdale.
1: Every blood donation could save up to 3 lives. Book now, New Zealand Blood Service.
3: Knock knock, it's me Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
4: Naya hybrid dhoondh rahe ho? To Havel Hilo. Right now, Andrew Sims Manukau mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada Kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Manukau. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
6: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
8: It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. T's, C's and exclusions apply.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, hamari good brands mein hai.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: Birthday greetings.
12: Iska birthday, bhai?
13: Mera bhi birthday, chalo line mein aa jao.
12: Happy birthday to you.
14: A very very happy birthday आपको विश करने का समय हो रहा है आज 31st of August को जितने भी लोग अपना special day celebrate कर रहे हैं हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले आज मोनिशा is celebrating a birthday today और birthday के खास मौके पर ढेर सारा प्यार मम्मी है मैंडी एंड आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी की ओर से a very happy birthday many many happy returns of the day to you
15: happy 50th birthday नाज आज आपको आपके happy हैं दीन और साथ में आपके जितने भी colleagues हैं from Akarshan जितने भी family and friends हैं यहाँ और अब्रोड में सभी आपको याद कर रहे हैं नाज हम सभी की ओर से भी आज का ये खास दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो
14: हैप्पी बर्थडे टू यू जहाँ कहीं भी आज अपना स्पेशल डे आप सेलिब्रेट कर रहे हो हमारी हम टीम की ओर से हमारी ओर से ये दिन आपको बहुत बहुत बार मुबारक हो
9: मॉर्निंग मैडनेस
14: मॉर्निंग मैडनेस ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा आपके लिए लेकर आ रहे हैं 104.2 FM पर या फिर रोवा ऐप के जरिए अगर आप हम सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच आपके साथ और आपके समय के लिए फिलहाल चलिए आज के सेलिब्रिटी अलार्म में जो आवाज़ हम आपके लिए लेकर आए थे वो आप में से कितने लोगों ने पहचानी है इतना तो कह सकते हैं कि लोगों ने पहचानी जरूर है सो इट मीन्स
15: जस्ट लाइक मी
14: हाँ इट वॉज ईजी फॉर पीपल टू गेस सो यू डोंट रियली नीड टू गो एट एंड गिव क्लूज और सिद्दीकी जी सबसे पहले आपका नहीं My bad. हाँ तो 8398 थैंक यू सो मच सबसे पहले आपका मैसेज आया देन इट वॉज लोकेश देन इट वॉज 4632 विधि आपका जवाब मिला चरण है गुंजन है साथ में जय का आंसर जो है ये मिला हमें एंड 4632 आपने एक बार फिर अपना आंसर जो है ये भी भेजा विनीत है अरफाज है अपर्णा है और भजन आपका भी मैसेज आया है हमारे पास, धर्मेन्द्र आचार्य है, कविता है, सोम है, तरुण शर्मा, विनीत है, सृष्टि है, नीलेश दयाल है, इन सभी के आंसर्स आए हैं। प्लस बॉबी मान जी ने भी अपना आंसर भेजा है। सो द करेक्ट आंसर जो आप सबने भेजा, आज किसी का भी गलत आंसर नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन गॉट इट रॉन्ग। जितने मैसेजेस आए सब ने सही सही पहचाना और आवाज थी नन अदर देन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की।
15: सो थैंक यू सो मच आप सभी के आंसर्स के लिए। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है ये हमारे हाथ लगी है, क्या समय राना एक बार फिर एक कंट्रोवर्सी में आगे हैं,
14: तो ये आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। प्लस फादर्स डे प्रमोशन जारी है हमारा, जहाँ पर रोनिया हमारे साथ डैड का रिवर्स ग्रिल थोड़ी देर में होने वाला है। अगर आप एक डैड है तो तैयार रहिएगा हमें कॉल करने के लिए व्हेन द वी ओपन द लाइंस फॉर यू, ताकि आप कॉल करते हुए पार्टिसिपेट कर सके और जीत सके $500 कैश, जिसका ड्रॉ होगा इसी फ्राइडे को।
0: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
14: 18 minutes away from 8:04 now, TKR पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट रहेगा आपके लिए। फिलहाल मुनाली ठाकुर की आवाज में ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना एंजॉय करते हैं और साथ में फादर्स डे कॉम्पिटिशन। रिमेम्बर थोड़ी देर बाद आप कॉल कर सकेंगे 800-00-4866 पर। बातें करेंगे आज द डूज एंड डोंट्स ऑफ जॉब हंटिंग वाइल यू आर स्टिल एम्प्लॉयड, इसके बारे में।

0: Heavy at Silverdale, heavy patches, Constellation to the bridge.
1: Hello Yellow, yummy lemonade apples, the yellow apple that's sweet and refreshingly juicy. Yummy lemonade.
2: आपके मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से Asian Family Services New Zealand में Asian communities को उनकी भाषा में mental health, addiction, gambling और social support provide करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है Reach In, Reach Out, एक national campaign जो mental health पर खुलकर बात करने पर encourage करता है. Call Asian Family Services Helpline at 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
3: Keep business moving with the American Express Gold Rewards business card. Pay suppliers today and extend your cash flow by up to 55 days. Plus, with Reward Pay, you can pay almost any supplier in New Zealand and earn points on payments. Get started with 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex Travel. Search Amex Business to discover a more rewarding way to pay suppliers. Offer ends 14th of December 26. 1.5k minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. Membership rewards, T's and C's apply and Reward Pay enrolment required.
4: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
5: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
7: इसी संडे यानी 6th of September को Father's Day हम मनाने वाले हैं and Father's Day के खास मौके पर इसी Friday को यानी 4th of September को draw होगा हमारे Father's Day competition का जहां पर ओनिया हमारे साथ Dad's Reverse Grill में हिस्सा लेकर जितने भी डैड्स हैं ड्रो में शामिल होते हुए जीत सकते हैं एक चांस टू विन $500 कैश और इसके लिए अब आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं 0800-004-866 हमारा नंबर है जिस पर आपको कॉल करना होगा एंड वंस यू गिव अस अ कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर आपको याद दिला दे एक सवाल आपसे पूछेंगे हम जिसका जवाब आपको देना होगा टू बी पार्ट ऑफ द ड्रो
8: तो सबसे पहले आपका स्वागत है अ वेरी गुड मॉर्निंग
9: हेलो गुड मॉर्निंग सर मेरे खान से सवाल पूछना पुनीत बोल रहा हूँ
8: क्या पुनीत कैसे हो भाई
9: पुनीत
8: अच्छा पुनीत
9: बढ़िया जी मैंने कहा आसान सा पूछना ताकि 500 जीत जाऊँ ठीक है ना
8: आपने तो कमाल कर दिया
9: पहली बार जीतूंगा आपके साथ ठीक है थोड़ा ध्यान से है
7: ये सही है
8: ये बताओ पुनीत कितने बच्चे हैं आपके
9: मेरे जी ट्विन्स हैं और तो और एक लड़की है
7: तीन बच्चे टोटल
9: हाँ जी
7: अच्छा ट्विन्स कितनी उम्र के आपके
9: 1. लाइक 18 महीने के हैं 18 मंथ
8: अच्छा अच्छा ये बहुत सिंपल हम आपके लिए
9: आसान से यार ठीक है ना
8: ध्यान से
7: आसान से
9: जीतना है मैंने
8: जीतना है आपको
7: जीतना है
8: अच्छा वैसे काम क्या करते हैं आप अगर बुरा नहीं माने मैं पूछूं आपसे
9: मैं पब्लिक सेक्टर में काम करता हूं मैंने कंपनी का नाम नहीं करता डिस्क्लोज
7: वो बताइए नहीं
8: अच्छा ये बताइए कि माओरी लैंग्वेज में एक वर्ड होता है फनाओ
9: बनाओ मतलब फैमिली जीत गया
7: नहीं पुनीत जीते नहीं है आप
8: मैंने तो सवाल ही पूरा नहीं किया
9: अरे यार
7: खुद ही जवाब बता के खुद ही बता दिया कि मैं जीत गया पूछ लो
9: मेरी लैंग्वेज हिंदी है अब आप कहीं फंसा रहे हो मौरी लैंग्वेज में मेरे को थोड़ा सा मेरे को जितना पता मैंने बता दिया पूछो चलो पूछ लो
8: नहीं सवाल वही था यार
7: वही था पर द थिंग इज कि आप अभी जीते नहीं हो आपका नाम अभी हम ड्रो में कर रहे हैं ठीक है ड्रो होगा फ्राइडे को
9: ओहो
7: पर आपने जरूरी स्टेप तो उठाया ना देखो अभी उतने दिनों से हमने आपसे बात तक नहीं की आपने कभी कॉल भी नहीं किया टू टेक पार्ट इन फादर्स डे कॉम्पिटिशन आज आपने कॉल किया
9: आपने फादर्स डे रखा तभी मैंने पहला कॉल किया आपको बता दिया पहली कॉल है और आपके क्वेश्चन से पहले आंसर है तो आपको मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसमें ध्यान
8: रखना। ड्रो में सबसे ऊपर आपका नाम
9: है। आज मेरी राशि जो है

0: हाँ आपके चैनल पे सुनिए, एक्वेरियस में लिखा है, हाँ। आपने खुद बोला है, आपकी मिसेस ने बोला है, उसमें बोला एक्वेरियस आज पैसा जीतेगा। हाँ आप पढ़ लो, मेरा 6th का बर्थडे है, आज एक्वेरियस में मेरे को लग रहा है मैं जीत जाऊंगा।
1: आपको, आपको, आपको लग रहा है?
2: पर ड्रॉ तो फ्राइडे को होगा ना?
0: नहीं, बोला तो आज ही है ना।
1: हाँ, हाँ, बोला आज है, वो फ्राइडे तक असर में रहेगा।
2: ये वाला जो हॉरोस्कोप
0: भी लगी है, पहला भी हूँ और आंसर भी आपके क्वेश्चन से पहले दिया, तो शायद
2: वेरी नाइस या वेरी नाइस।
1: जीत गए तो क्या करेंगे $500 का?
0: मैं बच्चे के लिए कपड़े ले
2: आऊंगा,
0: बहुत महंगे मेरे लिए ना, तो कपड़े ले आऊंगा बहुत सारे।
1: चलो
2: दैट्स रियली स्वीट यार, ऑल द वेरी बेस्ट पुनीत, आपसे बात कर सच में दिल खुश हो गया। आप ऐसे किया करो कॉल वोलम को,
0: नहीं करेंगे आप फादर्स डे में करेंगे आपको अब हमेशा
2: फादर्स डे में करेंगे। चलो थैंक यू, वंडरफुल डे पुनीत,
0: बाय बाय
2: बाय। बहुत कमाल के कॉलर थे यार ये। देखो कितना मजा आ जाता है ना जब हमारे साथ लिस्टनर्स भी जुड़ते हैं।
1: जब आप कॉल करते हैं हमारा टोटली मूड चेंज होता है, सुबह से इतना बिजी हम दोनों ही एक दूसरे से वैसे ऑफ या कोई बात नहीं
2: करते। ट्रू, आज पुनीत ने एकदम दिन बना दिया हमारा। चलिए थ्रोबैक में ये गाना एंजॉय करते हैं और याद रहे फादर्स डे कॉम्पिटिशन का ये फाइनल वीक है, जब जब मौका मिले टेक पार्ट।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का वेदर पार्टली क्लाउडी रहेगा, फ्यू शावर्स ही एंड देयर होते रहेंगे आज दिन भर और रात के समय ज्यादा बारिश होने की संभावना। सनसेट 6:01 PM पर होगा और इसके साथ साथ राइट नाउ टेम्परेचर इज 14.1 डिग्रीज, हाई ऑफ 17 एक्सपेक्टेड है आज बाद में चलकर, जबकि ओवरनाइट टेम्परेचर 12 डिग्रीज आज रहेगा।
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजय एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून and Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: Good morning, Kiora, and welcome to Hum, playing Bollywood's biggest hits. This is the Breakfast Show with Vijay and Pooja, और आपके लिए 104.2 FM पर या Rover App पर अगर आप हमें सुन रहे हैं, आज का हमारा Breakfast Show का ये सफर हम लेकर आ रहे हैं।
3: Trend Patrol में आज हम बातें करने जा रहे हैं about समय रैना।
1: अच्छा जी, बताइए।
3: He's trending once again, और इनका जो वो है India's Got Latent season, कौन सा season?
1: Season 2 है, हाँ।
3: Season 2 चल रहा है और there are some controversies जो है जो सामने आई है इनका जो recent episode है उसमें, जहां पर शायद बिहारी और कश्मीरी पंडित jokes को लेकर कुछ
1: सवाल उठाए गए हैं,
3: कुछ सवाल जो है ये उठाए गए हैं, लेकिन the latest episode has garnered over 31.9 million views.
1: अच्छा,
3: हाँ,
1: यही जो episode है जिसकी वजह से
3: समय ने स्टोरी जो है ये पोस्ट की वो क्या बोलते हैं Eminem के गाने के साथ,
1: ओ, ना, अच्छा, गाने के साथ okay.
3: और जहाँ पर उन्होंने जाकर अलग अलग 19 million, 19.4, 22, 28
1: का
3: जो एपिसोड है इसमें फीचर किया था अर्चना पूरन सिंह,
1: राइट,
3: औरी, निशांत सूरी
1: और शेरन वर्मा,
3: शेरन वर्मा ने,
1: राइट,
3: और शेरन और समय रैना के बीच
1: कॉन्वर्सेशन हो रहा था,
3: कॉन्वर्सेशन हो रहा था,
1: एक दूसरे को वो रोस्ट कर रहे, एक्चुअली समय ने कुछ बोला तो जिस पर शेरन ने कुछ बोला और इसी बात पर सवाल जो है ये उठ रहा है।
3: हाँ, तो वहीं पर कुछ लोगों ने कहा भाई देखो, कुछ सेलिब्रिटीज का कहना है कि हमें जिंदगी में हंसी मजाक की जरूरत है, सब कुछ उतना सीरियसली नहीं ले सकते, कुछ का कहना है कि भाई
1: देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड द थिंग्स जो उन्होंने, नॉट द थिंग्स बट जो जो बात उन्होंने कही उसके पीछे देयर इज अ लॉट ऑफ पेन, देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री और इसी वजह से शायद लोग थोड़ा नाराज हो रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द शो इज डार्क ह्यूमर और डार्क ह्यूमर का मतलब यही होता है कुछ ऐसी चीजें जो बहुत यू नो डिस्टर्बिंग होती है टू सम पीपल एंड टू सम एक्सटेंट, और ऐसी कुछ चीज़ें जो वो बातें जो हम कहते हैं ना कि एड्रेस नहीं कर पाते ओपनली, जिसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाते, तो ऐसे हंसी मजाक वाले प्लेटफॉर्म पे उसको रिवील किया जाता है, डिस्कस किया जाता है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, बट वी आर जस्ट रिपोर्टिंग इट।
3: राइट,
1: थोड़ी देर बाद आज बातें करेंगे अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ जॉब हंटिंग। जब आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, कहीं पर आप नौकरी कर रहे हैं, यू लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, यू लुकिंग फॉर बेटर पे, यू लुकिंग टू ग्रो करियर वाइज, तो आप नौकरी की तलाश करते हैं, पर आप स्टिल एक पर्टिकुलर जगह पर नौकरी कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या वो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, इस पर कुछ बातें इसी घंटे में करेंगे, तो इसके लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा। प्लस आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे है ये भी आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे, व्हाट्स योर टेक, जहां पर आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन, खबरें आ रही हैं, एक लग्जरी सैलून है, नेल सैलून है इन ऑकलैंड जिसे रेड किया गया है बाय द पुलिस एज पार्ट ऑफ अ कोविड इन्वेस्टिगेशन जो किया जा रहा था पिछले महीने से, जहां पर कंट्री का लार्जेस्ट अलेज्ड कमर्शियल कैनबिस सिंडिकेट जो है इसे बर्स्ट किया गया है, शट डाउन किया गया है. तो अभी व्हाटएवर द रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि नेल सलोन में कैनबिस थे, बट व्हाटएवर द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस वर उस हिसाब से कुछ बातें सामने आई. प्रोबेबली द पीपल हु वर रनिंग इट, द पीपल हु वर एम्प्लॉयड देयर, उनसे रिलेटेड कुछ चीजें, व्हिच इज व्हाई इट हैज बीन शट डाउन नाउ. तो डिटेल्स कुछ और हमारे हाथ अगर लगते हैं आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे.

0: एंड पूजा।
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
2: At Bunnings, give Dad the gift of the whole warehouse this Father's Day. Whatever type of dad he is, from tool dad to barbecue dad, he'll find something he really wants with our wide range. Gift cards built for Dad at Bunnings. Available in-store and online.
3: Bunnings Warehouse.
4: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
5: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercenter, Cavendish Drive, Manukau.
6: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेनुकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेनुकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all 4 weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
8: Get the Skinny!
9: Score big at Rebel with deals for Dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for Dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: What's your take?
12: 17 मिनट हो रहे हैं, 8 बजकर व्हाट्स योर टेक से पहले इतना आपको बता दे, आज का हम बोर्डिंग कॉल प्ले हो चुका है। क्या आपने जाकर बोर्ड नाउ एंटर कर दिया है रोवा पर? अगर नहीं तो BC लिखकर 5599 पर भेजे लिंक आपको मिल जाएगा। यू जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, गो टू द कॉम्पिटिशन पेज और वहाँ आपको एंटर बोर्ड नाउ करना पड़ेगा। एंड यू गो इन टू द ड्रॉ टू रिटेन एयर टिकट्स टू वनुआतु विद $1,000 स्पेंडिंग मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह वहाँ मिल जाएंगे। अब आज का व्हाट्स योर टेक, बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं पढ़ रहा था, एक ग्लोबल डाटा जो है इस पर मैं रिसर्च कर रहा था, जिसमें ये बात सामने आई है कि एवरेज न्यूजीलैंडर जो है ही ओशी स्पेंड्स लगभग 6.5 hours अ डे ऑन स्क्रीन्स।
13: ओह वाओ।
12: और हमारे टीनेजर्स जो हैं दे आर एवरेजिंग 6 hours आउटसाइड ऑफ स्कूल वर्क।
13: ओके,
12: तो स्कूल के दौरान
13: मतलब काम वाम के लिए जो स्कूल असाइनमेंट्स हो, रिसर्च हो, इसके लिए नहीं, इसके अलावा।
12: यस,
13: राइट,
12: इसके अलावा। और यूथ एंड टीन और जो OECD साथ में जो लोकल स्टडीज वगैरह जो है ये दिए गए हैं, न्यूजीलैंड यूथ अराउंड 42 आवर्स पे वीक ये स्पेंड करते हैं ऑन नॉन स्कूल स्क्रीन टाइम। तो ये जब मैंने पढ़ा, एंड इफ यू कैलकुलेट एक हफ्ते में एनी इंडिविजुअल स्पेंड्स मोर देन 40 आवर्स ऑन स्क्रीन, दैट्स मोर देन अ वर्क वीक।
13: राइट,
12: 40 घंटे की अगर आप नौकरी करते हैं,
13: राइट, उससे ज्यादा आप स्क्रीन पर है,
12: उससे ज्यादा टाइम आप स्क्रीन पर स्पेंड करते हैं। तो मैंने सोचा आज चलो आपसे पूछते हैं कि ऑन एवरेज एक दिन में आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं स्क्रीन पर।
13: ओके,
12: कितना टाइम स्क्रीन पर स्पेंड करते हैं और आपके स्मार्टफोन पर वो कौन सा ऐप है जो सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम कंज्यूम करता है.
13: राइट, बिकॉज इफ यू गो ऑन योर फोन तो आप ये सारी चीजें पता कर सकते हैं ना.
12: हाँ बिल्कुल, पता कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं कि कैसे. एंड फुल टाइम जॉब कंपैरिजन जैसे हमने किया है कि 42 आवर्स पे वीक ऑन स्क्रीन्स, मतलब ये कि न्यूजीलैंडर्स स्पेंड मोर टाइम लुकिंग एट देयर फोन्स देन देयर एक्चुअल जॉब्स, जितना अगर वो 40 आवर्स से एक घंटे में काम करते हैं. यू नो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की रिपोर्ट आई है, स्मार्ट जीन्स की रिपोर्ट जो है ये आप देखें. लेट नाइट या फिर ड्यूरिंग द डे किस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा स्क्रीन जो है ये यूज़ करते हैं. और ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडियंस के बारे में कहा जाता है कि दे स्पेंड नीली 5 hours अ डे ऑन देयर स्मार्टफोन्स एंड ऑलमोस्ट 7 hours इफ यू काउंट स्क्रीन ओवरऑल.
13: ओके, तो अभी जब आप ये टॉपिक कर रहे थे, मैंने एक्चुअली अपने मोबाइल पर जाकर पता किया कि मेरा जो है एक दिन का एवरेज स्क्रीन टाइम जो है कितना था. तो ये मेरा आज का नहीं, मैं कल का बता रही हूँ आपको. इट वाज अ संडे.
12: ओके,
13: और संडे के दिन कितना मैंने स्क्रीन पर टाइम अपना जो है स्पेंड किया, द होल डे 24 hours का 3 hours and 26 minutes.
12: That's well below average.
13: 1 hour 15 minutes इंटरनेट पर, मतलब सोशल मीडिया वगैरह जो है इन सारी चीजों पर मैंने स्पेंड किया. 52 मिनट्स मैसेजेस वगैरह जो है इस पर, किसी से बात किया हो फ़ोन पे और किसी को मैसेज वगैरह रिप्लाई किया उस पर. और 20 मिनट्स अपने फ़ोन की गैलरी पर, लाइक कैमरा एंड स्टफ पर.
12: ओके,
13: सो 3 hours and 26 minutes फॉर अ डे वाज नॉट बैड आई वुड से, स्पेशली ऑन अ संडे, क्योंकि मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश कर रही हूँ. आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ.
12: ओके,
13: क्योंकि इसमें दिख रहा है कि इंटरनेट पर चलो मैंने 1 hour समथिंग स्पेंड किया और बाकी टाइम जो है मैंने फोटोज पे गैलरी पर और साथ में मैंने कॉल्स मैसेजेस इन सारी चीजों पर स्पेंड किया. सो नॉट बैड.
12: तो अब 0800 00 800 00 4866 पर आप कॉल करें और बताएं कि ऑन एवरेज एक दिन में आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं ऑन योर स्मार्टफोन.
13: राइट,
12: और किस ऐप पर सबसे ज्यादा टाइम आप स्पेंड करते हैं. लेट्स सी एंड जस्ट बी ऑनेस्ट, यू नो कोई मैं तो आपको आकर रोक नहीं पाऊंगा
13: ऑब्वियसली
12: जो भी आप कर रहे हैं,
13: पर लोगों का काम भी तो है. कभी कभी कुछ ऐसे काम होते हैं जहां पर लोग, फॉर एग्जांपल ड्राइवर्स, दे आर मोस्टली ऑन देयर फोन्स,
12: लॉग्स एंड वो सारी चीजें, अंडरस्टैंडेबल.
13: फिर जीपीएस के लिए बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं फोन का, बहुत से लोग अपने फोन से रोवर पर सुनते हैं हमें. सो दीज थिंग्स डू मैटर ना, बट
12: तो वही हमें जानना है,
13: बस
12: वही आज हमने सोचा कि चलो आपसे पता करते हैं.
13: राइट, तो आप हमारे पास जरूर कॉल कर सकते हैं अपना स्क्रीन टाइम जो ये शेयर करने के लिए, और सबसे ज्यादा आपने किस ऐप पर अपना टाइम स्पेंड किया है ऑन एन एवरेज ऑन अ डे, ये आप हमें जरूर बता सकते हैं. गुड मॉर्निंग सपना, कैसी हो आप?
3: मैं ठीक हूँ. गुड मॉर्निंग पूजा. गुड मॉर्निंग विजय भाई, कैसे हैं?
12: हम ठीक हैं, आप कैसी हो सपना?
3: सब ठीक है,
12: बिलेटेड हैप्पी रक्षाबंधन टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू सो मच.
13: आपको भी.
3: थैंक यू. पूजा, मेरा
12: 8 hours
3: है टोटल यूजेज इन अ डे. 8 hours. हाँ, और मेरा सिर्फ डूम स्क्रॉलिंग है और कुछ भी नहीं है, एंड आई एम गिल्टी, बट क्या करूँ, वो एडिक्शन है तो ज्यादा नहीं है.
13: नहीं नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड सपना, क्योंकि मैं वही करती हूँ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कल इतना कम टाइम स्पेंड किया अपने फोन पर. इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हर रोज का एवरेज इतना ही होता है. मेरा भी 8-9 ही जाता है. दैट्स व्हाई आई सेड कि आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करूं.
12: ओके, अच्छा अच्छा सपना, ये बताइए कि किस ऐप पर आप सबसे ज्यादा स्क्रॉल करती हैं?
3: वो इंस्टा और यूट्यूब.
12: इंस्टा एंड यूट्यूब, दैट्स इंटरेस्टिंग.
13: राइट,
12: थैंक यू सो मच सपना.
3: तो यूट्यूब पर पाकिस्तानी सीरियल चलते हैं
13: वो देखते हैं आप
12: जो भी हो रहा है.
13: राइट, थैंक
12: यू. थैंक यू सो मच.
3: बाय बाय. थैंक यू.
13: टेक केयर. बाय. गुड मॉर्निंग एफाज.
8: गुड मॉर्निंग, कैसे आप?
13: बढ़िया जी, आप कैसे हो?
8: मैं भी अच्छा हूँ. मैं सबसे ज्यादा, मेरा अराउंड एवरेज होता है 4-5 hours
12: अ
8: डे, और इसमें से हाफ ऑफ द टाइम तो ऑब्वियसली क्योंकि ड्राइविंग के वजह से मैप तो दूसरी जगह में कॉलिंग में ज्यादा जाता है. 1 hour आई वुड से कि मैं सोशल मीडिया पे स्पेंड करता हूँ, जैसे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है. बस समवेयर अराउंड वैसे ही हो जाता है ऊपर से, बट ज्यादातर मैप में ही जाता है टू बी ऑनेस्ट.
13: ओके
12: घर घर जाकर या फिर घर पर जाकर कितना टाइम आप स्पेंड करते होंगे अपने स्क्रीन पर?
8: अराउंड एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता बट समवेयर अराउंड 30 टू 40 मिनट्स के आसपास.
12: इंटरेस्टिंग.
8: जाने से लेके सोने तक लेते
12: हैं यार. ओके थैंक यू एफाज शेयर करने के लिए. स्क्रीन टाइम जो है
13: टेक केयर हैव अ नाइस डे एफाज. यस नॉट बैड बट इन्होंने कहा ना कि ये ट्रैवलिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. जी आपका स्क्रीन टाइम का क्या हाल है परविंदर जी?
11: मेरा स्क्रीन टाइम मैं ऐसा तो बता नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा बेटा भी कभी फोन यूज करता है तो फिर वो देता नहीं है तो मैं अवॉइड करती हूँ मैं घर पे फोन ना ही यूज करूँ. और यूट्यूब तो मेरा टीवी पे चलता है.
12: Okay.
11: पर जो मेरा स्क्रीन टाइम है वो ज्यादातर होता है टीमू का.
13: ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार.
11: इतना ज्यादा मैं टीमू यूज करती हूँ ऐसी अतरंगी चीजें ऑर्डर करती हूँ ना मैं. मेरा हस्बैंड भी हंसता है. मैंने वो अपने कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल नहीं होते उनके लिए मैंने एक लिड मंगाई है प्लांट्स को पानी डालने के लिए तो वो उसमें स्प्लिट हो जाता है पानी ना ऐसे ड्रॉपलेट्स निकलती हैं. तो वो हंसता है कहते हैं तो वो ऐसे पानी नहीं डाल सकती मग से ये ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी.
13: स्क्रीन टाइम तो स्क्रीन टाइम आपके पैसे भी जा रहे हैं.
12: चलो थैंक
11: यू. ऐसी मतलब और इतनी अजीब अजीब चीजें. एक मेरी हील खराब हो गई थी तो फेंकनी तो नहीं थी ना यू नो कितनी महंगी होती है चीजें. फिर मैंने हील कैप मंगाया वहां से तो मैंने हील कैप लगा दिया है वो हील में मेरी ना
13: ताकि वो हील्स ना खराब हो आपकी. वेरी नाइस यार. थैंक यू परविंदर हैव अ नाइस डे. तो आज काफी इंटरेस्टिंग कॉल्स आए. एंड वी अप्रिशिएट द फैक्ट दैट आप तीनों जो हमारे तीन कॉलर्स थे सपना एफाज एंड परविंदर यू गाइस वर ऑनेस्ट एंड एज वी सेड वी आर नॉट हियर टू सिट एंड जज. हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो गिल्टी. ऐसा नहीं कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत अच्छा है. वो तो ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि दिस इज अ सिचुएशन और अ टाइम जहाँ पे हम अपने फ़ोन से या ऑनलाइन डूम स्क्रोलिंग जो बोलते हैं ये करने से बहुत एडिक्टेड हो गए ना.
12: यस तो अब आप चाहें तो हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं 5599 हमारा नंबर. इफ़ यू फील अनकम्फर्टेबल यू नो गोइंग लाइव ऑन एयर एंड शेयरिंग तो आप बता सकते हैं कि ऑन एवरेज एक दिन में कितना टाइम आप अपने स्मार्टफोन पर या स्क्रीन पर स्पेंड करते हैं और वो कौन सा ऐप है दैट टेक्स अप मोस्ट ऑफ योर टाइम. कितना टाइम होगा अगर आप उस ऐप को देते होंगे तो वी लुक फॉरवर्ड कि आज सरप्राइजिंगली अभी तक किसी ने टेक्स्ट करके तो बिल्कुल नहीं बताया तो हमें इंतज़ार रहेगा कि आप हमें बताएं कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं.
0: Bollywood's most wanted.
14: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
15: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: One of those songs जो जब release हुआ था, I think ये particular movie जो है, if I'm not mistaken, ये पिछले साल ही आई थी, और Romy साथ में तनिष्क बागची, इनकी आवाजों में आपके लिए ये गाना हम लेकर आ रहे थे. No, it came 2 years back, 2024 में, और Romy जिनकी आवाज में वैसे अभी जो गाना है वारू मिर्जापुर द मूवी, इससे भी काफी पॉपुलर हो रहा है. तो आपके लिए ऐसे और भी कमाल के गाने, ट्रेंडिंग गाने जो है ये हम पर हम लेकर आते रहेंगे. Now, if you remember, मैंने आपसे कहा था कि आपके साथ हम बातें करने वाले हैं अबाउट सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स, अगर आप ध्यान में रखें वाइल यू आर जॉब हंटिंग, जबकि यू आर स्टिल एम्प्लॉयड. सो एक्सपर्ट्स का कहना है देयर इज नथिंग रॉन्ग विद लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब वाइल यू आर स्टिल एम्प्लॉयड, लेकिन आपको इस मामले में थोड़ा स्मार्ट रहना होगा. यू नीड टू बी स्मार्ट, और आपको ये चीज़ जो है स्मार्टली जो है ये एग्जीक्यूट करनी होगी. फर्स्ट चेक योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आप सबसे पहले जो है चेक करें, और उसके बाद आपको बताएं कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यू मेक श्योर यू नो कि आपका नोटिस पीरियड जो है वो क्या है, वेदर देयर आर एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूविंग टू अ कॉम्पिटिटर या फिर अप्रोचिंग क्लाइंट्स और कलीग्स. तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से समझ लें और तब ये स्टेप आप उठाएं. एंड कीप योर जॉब सर्च प्राइवेट, ये बहुत ज़रूरी है. यूज़ योर ओन फोन, कंप्यूटर एंड ईमेल्स, और जब आप जॉब हंटिंग कर रहे हैं इन योर ओन टाइम, डू इट नॉट इन योर पेड वर्किंग आवर्स, अपने पर्सनल टाइम में वो आप कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है. थिंकिंग अबाउट यूजिंग योर करंट बॉस एज अ रेफरी, एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि परमिशन पहले ले लीजिए. अगर तो आपके बॉस जो है इनके साथ यू शेयर अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप है, एंड योर बॉस इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप दूसरी जगह पर नौकरी तलाश रहे हैं, तो आप उनसे परमिशन लीजिए और यू मूव ऑन. इफ सिचुएशन इज डिफरेंट तो आपको थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा, ऐसा आपके लिए कहा गया है. यू कैन ऑल्सो टेल अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर दैट यू प्रिफर दे डोंट कॉन्टेक्ट योर करंट वर्क प्लेस अंटिल आपको एज अ प्रिफर्ड कैंडिडेट जो है ये बताया जाता है. अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है, डोंट स्नीक आउट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, टेक एनुअल लीव, या फिर आप अपने एम्प्लॉयर के साथ अरेंजमेंट्स जो है ये कीजिए. और जब आपसे पूछा जाए व्हाई यू वांट टू लीव, अपने करंट बॉस के बारे में, वर्क प्लेस के बारे में बैड माउथ तो बिल्कुल भी मत कीजिए. इंस्टेड टॉक अबाउट वांटिंग न्यू चैलेंजेस, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि रियलिटी इज कि जहाँ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अच्छे लोगों के साथ मुलाकात होती है, एक अच्छा वर्क लाइफ आपका चलता है, तो वहीं बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बुरे लोगों के साथ मुलाकात होती है, और शायद आपका वर्क लाइफ जो है ये उतना स्मूथ नहीं होता है जैसा कि आप होप करते हैं. थिंग्स डू टर्न अ बिट सावा एट टाइम्स, सो यू हैव टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड. फाइनली डोंट रिजाइन जस्ट क्योंकि आपको एक वर्बल जॉब ऑफर मिला है. वेट अंटिल आपने जो न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन कर दिया हो, बिकॉज गोल सिर्फ इतना नहीं है कि आपको नई नौकरी मिल जाए, गोल ये है कि आप अपनी पुरानी नौकरी जो है प्रोफेशनल तरीके से, विदाउट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू एंड फॉर द कंपनी या फॉर द एम्प्लॉयर जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, उनके लिए विदाउट एनी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए आप अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी जो है ये ज्वाइन कर सके. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू कीप इन माइंड अगर आप जॉब हंटिंग कर रहे हैं. तो आजकल के ज़माने में इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड पीपल जो नौकरी छोड़कर जाते हैं और आपके बारे में बैड माउथिंग ना करें, मतलब बुरा भला ना करें कि ये जगह तो टॉक्सिक है, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है. ऐसा होता है, पर यू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट. और सबसे ज़रूरी चीज़, अपना कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर चेक कर ले बिफोर यू आर डूइंग जॉब हंटिंग.
1: यस, कुछ चीज़ें हैं जो शायद कभी कभी एक्साइटमेंट में या इमोशनल होकर हम ओवरलुक कर देते हैं, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल.
0: यस, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें बताया गया है, इफ यू मिस्ड आउट ऑन इट, रिमेंबर वर्किंग आवर्स में नई नौकरी तलाश करने का कोई भी काम बिल्कुल भी ना करें.
2: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
3: चुप हो जाओ पापी, चुप हो जाओ.
4: Accurate traffic.
5: Fly Solomon Airlines.
6: Lots of cloud, a bit of sun as well, a high of 17. Coming into the city on the northern motorway, 33 minutes, Constellation Drive to town, 53 from Silverdale, heavy at Silverdale and most of the way from Constellation. Northwestern, 36, Massey to the city, heavy on and off from there. Southern, 45, Manukau to town, slow at Manurewa, then all the way from East Tāmaki, heavy from Otahuhu. Southwestern, a bit slow northbound through Whitty.
5: Auckland to Vanuatu from $925 return. Selected dates, conditions apply. FlySolomons.com.
7: To get the best value from your mechanic,
4: Bringing it into Midas stops a lot of confusing thoughts, like, should you ask AI first? Offer a contra deal?
7: You don't need your toilets clean, do you?
4: Find a cheaper mechanic in Invercargill? Pretend you know what they're talking about?
8: Pretty sure the carbonara's playing up.
4: Pray, plead, sob, beg, bargain. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prices. Midas, for peace of mind motoring.
9: True Midas.
10: At Bunnings, we've got gifts built for Dad, like the Jack Garden Upwall System, only $85.95. Ryobi 1 plus 18-volt pruning saw, tool only, just $149. That's Father's Day sorted at Bunnings.
11: Bunnings Warehouse.
10: Lowest prices are just the beginning.
12: Knock, knock. It's me, Dash. Helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash. And you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
13: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
14: Zero
15: with an X.
16: You started your business for a reason, remember? Then all of a sudden, invoices and bills and payroll started getting in the way. And that is where Xero comes in. Connect your invoicing, bank feeds, bills and payments in one place. Real-time cash flow without all the added chaos. Xero takes care of the numbers so you can get back to doing what you love. Search X-E-R-O today.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
18: Let's go.
2: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
1: 17 minutes reh gaye hain abhi 9 baje mein on the breakfast show with Vijay and Pooja. Roshni, thank you so much aapke message ke liye. Inhone kaha hai ki ye Zoom ka istemal karti hain to text my friends and Microsoft Edge. ये सबसे ज़्यादा इन पर ये सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं हालांकि कितना करती हैं वो इन्होंने नहीं बताया है सो व्हाट्स योर टेक में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वैसे हमने आपको बताया था कि डेट्स या अपग्रेड सिर्फ 13 लोगों ने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट किया है इस फ्राइडे को ड्रॉ होना है आप में से कोई एक $300 कैश जीतेगा करने में भी कुछ मुश्किल नहीं है आपको एक AI सुपर हीरो फोटो अपने डेट का जनरेट करना है किस सुपर हीरो के रूप में अपने डेट को आप देखना चाहेंगे और हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ पर जो कॉम्पिटिशन पोस्ट है उसके कॉमेंट सेक्शन में आप डालें अपने डेट के बारे में चाहें तो कुछ बताएं या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरा करें ड्रॉ का हिस्सा बन जाएं और इसी फ्राइडे को $300 कैश जीतने का मौका है
0: तो मेक श्योर फादर्स डे कॉम्पिटिशन हमारा जब बंद हो उससे पहले कम से कम अपनी एंट्रीज आप सबमिट कर दें बिकॉज वी आर रेडी टू गिव अवे कैश स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करते हुए त्यौहार मनाते हुए आप सभी के साथ पर आप कितना इंटरेस्टेड हैं जीतने के लिए ये आपकी एंट्रीज की बदौलत ही हम फिगर आउट कर सकते हैं

0: 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: बस थ्रोबैक की बारी आ चुकी है अब ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आपके लिए आज का जो थ्रोबैक हम लेकर आ रहे हैं उससे पहले आपको हम रिमाइंड करा दें अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हमारा
2: हम बोर्डिंग कॉल और इसमें अभी तक आई थिंक लास्ट वीक हमने कहा था ओवर 2000
1: यस ओवर 2000 एंट्रीज
2: और एक पर्सन जिन्होंने अभी तक एक भी एंट्री नहीं मिस की है. आज का हम बोर्डिंग कॉल प्ले हो चुका है. अराउंड मे बी 10 मिनट्स बाकी होंगे या 10-15 मिनट्स बाकी होंगे बिफोर द टाइम एक्सपायर्स. सो हेड टू रोवर और जहां वहां पर जाकर आप बोर्डिंग कॉल एंटर करें बोर्ड करें एंड यू बिकम पार्ट ऑफ द ड्रो टू रिटेन एयर टिकट्स टू वनुआतु विद $1000 स्पेंडिंग मनी. ये आप जीत सकते हैं. याद रखें सोलोमन एयरलाइंस हफ्ते में चार बार ऑकलैंड टू वनुआतु डायरेक्ट फ्लाई करते हैं. flysolomons.com आप विजिट कर सकते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको humdrover.nz पर मिल जाएंगे.

0: If you're at the finished stage of a build, Bunnings Trade is here to help. Shop our wide range of paint and accessories, lighting and final fixtures from leading brands. Call 134 Trade on 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
1: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: The all-new Mazda CX-5 is big. Big on room for growing families. Big on smart features for busy lives. Big on five-star peace of mind. It's big on everything that makes it New Zealand's favourite Mazda. Mazda.
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
4: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
5: अब हमारा क्या होगा
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
4: तो क्या करें
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
8: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. An Auckland police officer has been charged with sexually abusing a child and has been stood down. As RNZ reports, the Waitemata District Commander says the alleged offending happened off duty. The accusation is of an indecent act on a girl under 12. There are calls for an ACT Party proposal on scallop dredging to go further. It wants to permanently end the practice and currently close North Island fisheries. Mike Plant from the Sport Fishing Council would like to see scallop dredging moved out to 12 nautical miles.
10: So give Kiwis and Iwi a chance to catch fish first and then allocate the rest to commercial.
9: A cancer expert wants to see an overhaul of how the health system approaches the disease. Otago Uni's Frank Frizzell says New Zealand still lags behind similar high-income countries.
11: 30,000 people will die this year because of cancer. It is a major impact both with regard to the health of the population but also the cost of the country. It often takes people out in a very productive part of their life.
9: Contractors have made swift work of clearing a slip on the Wailuika Gorge. It's open again in both directions. To sport, Northland have earned at least another fortnight with the Ramfurly Shield, winning their first defence 20 points to 10 against Tasman in Whangarei. Captain Rivers Tereihana told Sky Sport he's keen to show more Taniwha fans the Loggerwood.
12: We're going to take it up, try and get to every corner of Northland. I know there's a few places that missed out, so we're going to do our best to take it up next week.
9: Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com and Kiwi golfer Daniel Hillier secured a share of second place and $390,000 at the British Masters.
8: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
13: World's best. Hamari good brands nahi hai.
8: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
4: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का वेदर पार्टली क्लाउडी और फ्यू शावर्स बताया जा रहा है सनसेट 6:01 पीएम पर आज होगा राइट नाउ टेम्परेचर इज 14.5 डिग्रीज हाई 17 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर ओवरनाइट टेम्परेचर आज का 12 डिग्रीज रहने वाला है
8: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
14: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग
15: What's going on? क्या बकते हो?
16: अरे कहना क्या चाहते हो?
17: अभी पिछले घंटे हम लोग क्या स्क्रीन टाइम के बारे में बातें कर रहे थे कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं वो सारी चीजें अभी आज का जो क्या बकते हो ये भी स्क्रीन से ही रिलेटेड है एक इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ये सामने आया है एंड इट रिड्यूस टू नथिंग बट अ डेट लेकिन इसके पास hundreds of thousands of followers हो गए within a few days.
4: Wow.
17: ये account जो है इसका नाम था 25th August 2026.
4: Account का नाम?
17: हाँ, account name.
4: Okay.
17: और it featured एक masked man जो tease करता रहा अपने followers को कि something major was coming on August 25th. और किसी को पता नहीं था कि क्या. And It turns out that was exactly the entire strategy.
4: Okay.
17: उन्होंने क्रिप्टिक मैसेजेस और काउंटडाउन टाइमर्स वगैरह जो है ये शेयर किए, टीज किया। लोग जानना चाहते थे कि कौन है मास्क के पीछे और क्या अनवेल होने वाला है। लगभग 400,000 पीपल फॉलोड अलोंग रिफ्रेशिंग देयर फीड्स और स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या ये बिग रिवील हो सकता है, क्या एक स्टार्टअप लॉन्च है, क्या एक सेलिब्रिटी अपीयरेंस है या कोई गिव अवे है। एंड नंबर ऑफ विजिटर्स जो है ये बढ़ते गए। On August 25th, as promised, the big reveal arrived. Followers को redirect किया गया to Telegram, जहां जाकर उन्हें पता लगा कि the promised video would cost them 500 rupees to access.
4: Oh.
17: For most people, the ask was simple enough. 500 rupees for privileged access to whatever this mysterious account had been promising. तो उन्होंने पे कर दिया। According to several other Instagram creators, लगभग 166,000 people were curious enough to see what was behind the paywall. तो उन्होंने 500 rupees pay किए इस content को access करने के लिए। और the figure, however, अभी independent तौर पर उसको verify नहीं किया जा सका है। When the clock hit noon on August 25th, the people who had paid got their link to their promised content.
4: Okay.
17: उन्होंने देखा कि एक जेनेरिक मोटिवेशनल वीडियो जो AI से क्रिएट किया गया था।
4: ओके।
17: इट वाज जस्ट अनदर सेल्फ हेल्प AI वीडियो।
4: दैट्स इट। क्यूरियोसिटी की वजह से पर ये सब हुआ ना?
17: हाँ।
4: कि क्यूरियस हो चुके थे लोग, जब वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्या है, चलो पता करते हैं, पैसे भी भर दिए इसके लिए, क्यूरियोसिटी अपनी खत्म करने के लिए। 166,000
17: पीपल पेड 500 रुपीस।
4: या क्यूरियोसिटी खत्म करने के लिए। एंड देन दिस इज हाउ इट गॉट
17: रिवील्ड। खुदा पहाड़।
4: Interesting.
17: Nikla chuha.
4: Very interesting. This is definitely kya bakte ho. Filhal chaliye program mein aage badhte hue, what's going on aapke liye jari hai. Thodi der baad lekar aayenge aaj aapke liye community updates. Krishna Janmashtami ka jo parv hai Saturday se shuru hua, bahut se jagahon par log ise mana rahe hain aur this week the celebration will continue until Friday. बहुत सी जगह पर लोग सेलिब्रेट करेंगे इसे, तो डिटेल्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे और इसके लिए आपको बस हमारे साथ ही बने रहना होगा। पर रिमेंबर, हम बोर्डिंग कॉल, अगर आपने सही समय पर सुना था हमारा बोर्डिंग कॉल, तो यूड नो कि इट माइट बी कमिंग टू एन एंड वेरी सून। अगर अभी तक आपने बोर्ड नाउ लिख कर सबमिट नहीं किया है कोड जो हमारा फॉर हम बोर्डिंग कॉल, तो यू विल मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑफ विनिंग टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सॉल्मन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी। गो एंड चेक क्या आपके पास टाइम है अभी भी टू एंटर दिस कॉम्पिटिशन या नहीं। अगर आपको कॉम्पिटिशन लिंक चाहिए, BEC यानी बोर्डिंग कॉल का शॉर्ट फॉर्म लिखकर आप हमारे पास 5599 पर सेंड कर दें। कॉम्पिटिशन लिंक हम यहां से आपके लिए सेंड कर देंगे जहां पर लिखा होगा एंटर कोड नाउ, वहां पर आपको बोर्ड नाउ BORDNOW ये लिखना होगा, सबमिट पर क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट, यू विल बी पार्ट ऑफ दिस ड्रॉ।
17: सो BEC एंड रिमेंबर, अभी मैं आपको बताऊं, अगर अभी आप जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टू एंटर बोर्ड नाउ।
4: ओके, सो अभी एंट्री ओपन है, सो गेट स्टार्टेड।
17: BEC इज द वर्ड और 5599 इज द नंबर। जल्दी से भेजें, जल्दी से जाएं, टाइप करें बोर्ड नाउ एंड बिकम पार्ट ऑफ द ड्रॉ।
4: हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सॉल्मन एयरलाइंस, फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉनस्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतु। विजिट flysolmans.com फॉर डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, जिसके लिए आप hum.rova.nz विजिट कर सकते हैं।
5: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ल ना हो।

11 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर इसी रविवार को फादर्स डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप के लिए हैं। और फादर्स डे के मौके पर आइए, एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा है आज सुबह सुबह आपके लिए ये गाना ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: तो चलिए देखते हैं आज सुपर सिटी ऑकलैंड में कहाँ कहाँ पर क्या कुछ जो है ये होने वाला है और कैसे आप इन चीज़ों का हिस्सा जो है ये बन सकते हैं। सबसे पहले आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है ये बहुत सी जगह पर मनाया जा रहा है और इसका हिस्सा आप ज़रूर बन सकते हैं। सबसे पहले दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव जो है ये मना रहे हैं फ्राइडे 4 सितंबर तक एट द केव। होल का नाम है द केव, जो कि 5/57 केविंडिश ड्राइव मैनिकाओ में। इट्स राइट ऑपोजिट वे हाउस और यहाँ पर 7:30 PM से हर रात कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है।
3: श्री रामकृष्ण मंदिर पर 25 ऑनस्लो एव मैनिकाओ में भी आप जाकर हिस्सा ले सकते हैं, जहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। रात 7:30 बजे से कथा जो है ये आरंभ हो जाती है और इसी शुक्रवार तक जारी रहेगी। आप जाकर जरूर इसमें हिस्सा लें।
2: और इसके अलावा न्यूजीलैंड संगम और आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये उत्सव, ये पर्व 4 सितंबर तक एट डेकोर ऑफ एलिगेंस 16 लेम्बी ड्राइव मैनिकाओ। यहाँ पर हर रोज 7:30 PM से प्रोग्राम जो ये शुरू होता है और अंतिम दिन यानी कि लास्ट डे फ्राइडे 4 सितंबर को आप कृष्ण जन्म उत्सव जो है ये भी मना सकेंगे, इसका हिस्सा जो है ये बन सकेंगे अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो डिटेल्स अगर कोई भी आपको चाहिए आप 02125319 68 पर कॉल कर सकते हैं।
3: श्री राम मंदिर पर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। हर रात 7 बजे से कथा जो है ये होती है। अंतिम दिन जो हवन है ये शाम 6 बजे होगी शुक्रवार को, 7 बजे आरती, जिसके बाद 7:30 बजे से कथा, 9 बजे से भजन और अभिषेक, रात 10:30 बजे से मध्यरात्रि तक श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा।
2: और साथ में आउटियरोवा सनातन संगम संस्था जो है आपके लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव लेकर आ रहे हैं, पर्व लेकर आ रहे हैं सेलिब्रेशंस इसके, जिसमें आप भाग ले सकते हैं फ्राइडे 4 सितंबर तक। 7 PM से यहां पर प्रोग्राम शुरू होता है, वुमेन केयर ट्रस्ट बिल्डिंग 2 Sutton Crescent पापाटोईटोई, आप पहुँच सकते हैं।
3: और साथ में श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन भाग मंडली द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोईटोई में।
2: श्री हनुमान मंदिर नोड शो में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव जो है ये हो रहा है 4 सितंबर तक और हर रोज यहाँ पर जबकि ये सेलिब्रेशन हो रहे हैं इसमें आप जरूर भाग ले सकते हैं। फाइनल डे यानी कि फ्राइडे 4 सितंबर को रात 12 बजे से यहाँ पर जो कृष्ण जन्म उत्सव है ये मनाया जाएगा।
3: माँ दुर्गा टेम्पल जो है ये 4/3 ऑनस्लो एफ पापाटोईटोई में, यहाँ पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा जा रहा है। अंतिम दिन इसी शुक्रवार को रात 8:30 से मध्यरात्रि तक जो उत्सव है ये मनाया जाएगा।
2: वैसे अगर आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसकी जानकारियाँ अन्य लोगों तक आप पहुँचाना चाहते हैं, डू लेट अस नो, आप हमारे पास इन्हें ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com पर, और आपके लिए ये सारे डिटेल्स जो है ये हम ज़रूर लेकर आएंगे।

0: क्या लगता है, लाइक मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जो स्वेट करते हैं पसीने के रूप में, इट कम्स आउट. द मोर यू स्वेट द मोर यू लूज, वही एक कॉन्सेप्ट जो दिमाग में आता था ना.
1: अच्छा, ओके.
0: बट द क्वेश्चन टू दिस आंसर इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट टू व्हाट यू माइट हैव थॉट. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो सारा का सारा फैट है व्हेन यू लूज वेट, ये स्वेट के जरिए या फिर व्हेन यू गो टू द बाथरूम एंड यू पूप, उस जरिए ये बाहर जाता है आपके शरीर से, दैट इज नॉट एक्चुअली द राइट थिंग. इन सरप्राइजिंग आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि इट गोज आउट थ्रू योर लंग्स.
1: सांस लेकर बाहर छोड़ते हैं, उसके साथ चला जाता है.
0: मैं अभी समझाती हूँ कि कैसे. पर दिस आर्टिकल सेड इट गोज आउट थ्रू योर लंग्स. When you lose body fat, जब आपका वजन जो कम होता है, जब आप शरीर से अपना फैट जो कम करते हैं, आपका बॉडी ब्रेक डाउन करता है स्टोर्ड फैट और उसे यूज करता है एज एनर्जी. ठीक है. और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मच ऑफ दैट फैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर.
1: अच्छा.
0: एंड गेस व्हाट, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, आप अपने शरीर से फैट ब्रीद आउट कर रहे होते हैं. वो वजन जो आपने कम किया, वो फैट ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, वो आप ब्रीद आउट कर रहे होते हैं. रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया है कि रफली 84% ऑफ फैट जो हम लूज करते हैं वो हमारे शरीर को शरीर में होता है, कन्वर्टेड होता है एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट लीव्स आवर बॉडी एज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आवर ब्रेथ. 84% ऑफ फैट, तो मतलब 50 से भी ज़्यादा परसेंटेज फैट जो है, जब ये थ्रू हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म होकर बाहर जाता है, इट मींस इट गोज थ्रू आउट अवर लंग्स, इज़न्ट इट? और वेल मच ऑफ द रिमेनिंग फैट जो है ये वाटर जैसे कि स्वेट और यूरिन के रूप में बाहर जाता है, पर ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में. सो टेक्निकली जब आप अपना वजन कम कर रहे होते हो, शरीर से आपका फैट जो है ये आपके शरीर से बाहर जाता है व्हाइल यू लूज वेट, तो ब्रीदिंग आपकी जो हैवली हो जाती है, यू माइट हैव नोटिस्ड यू नॉट जस्ट टेकिंग इन ऑक्सीजन, आप ब्रीद कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो बाहर जा रहा होता है. और इफ यू डोंट गेट टू एक्साइटेड यू कैन सिंपली ब्रीद योर वे टू यू नो बीइंग स्किनी.
1: या ऑब्वियसली
0: आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप बस ब्रीद इन ब्रीद आउट कर वजन जो है ये कम कर लोगे. आपके बॉडी को कैलोरी डेफिशिट जो है इसके बारे में समझना जरूरी है, मतलब आप समझे अच्छी तरह से, यू आर यूजिंग मोर एनर्जी देन यू आर टेकिंग इन और टू स्टार्ट यूजिंग दोज स्टोर्ड फैट जो आपके शरीर में रिजर्व्ड है उसे किस तरह से आप कम कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट टाइम समवन सेज कि आई हैव लॉस्ट 5 किलोज और आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो यू जस्ट लॉस्ट इट स्वेट आउट करते हुए या यूरिनेट करते हुए, वो ऐसे ही नहीं जाता बल्कि वो फैट ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू आर एक्चुअली ब्रीदिंग इट आउट ऑफ योर बॉडी.
1: वेरी नाइस.
0: सोचो ना, जो चीज हम नहीं जानते थे, क्या सोचते थे वजन कम होता है कैसे बाहर जाता है उसके बारे में कि पसीने से ज्यादा होता है, उसका आज हमको एक डिफरेंट आंसर मिला. समथिंग वी गॉट टू लर्न टुडे. 26 मिनट्स अवे फ्रॉम 10 राइट नाउ और हम पर आपके लिए द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे हैं.
2: Hollywood's most wanted.
3: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
4: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Sorry about the wait. That was just a white bread bun, a patty, one slice of cheese, two pickles, some sauce, a soft drink, and some fried frozen chips. Is that all?
7: Yes, that's all, thanks. Actually, how much is it? You know what? Cancel my order. I'm just going to make my own large combo with stuff from Pack and Save.
6: Whatever. Drive through then.
7: Ah, don't be like that. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
6: Your voice is weird, man.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
9: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
10: Flooring Extra. Adore your floor.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: What's going on?
13: फिलहाल 25 मिनट रह गए हैं अब 8 बजने में और डेली राउंडअप का वक्त अब हो चुका है. सप्ताह अंत यूनाइटेड एयरलाइंस का एक फ्लाइट जो है जो ऑकलैंड से होनोलुलु और फिर सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुआ था को रास्ते से वापस लौटना पड़ा. प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये एक मेडिकल एमरजेंसी की वजह से हुआ था. यूनाइटेड एयरलाइंस का ये फ्लाइट दिन में 2 बजे के वक्त ऑकलैंड से रवाना हुआ और फ्लाइट रेडर के मुताबिक ये विमान जो है कुक आइलैंड्स के पास से ही गुजर रहा था जब उसको यू टर्न लेकर वापस न्यूजीलैंड आना पड़ा और रात को 7 बजे वापस आकर ये ऑकलैंड में लैंड हुआ. और यूनाइटेड एयरलाइंस ने इस बात की पुष्टि की है कि एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ये फ्लाइट वापस आया था. एयरलाइन का कहना है कि होटल अकोमोडेशन और मील वाउचर्स जो है ये पैसेंजर्स को प्रोवाइड किए गए थे और उसके बाद चलकर बाद में ये फ्लाइट ऑकलैंड से रवाना हुई.
14: और इसके अलावा और भी खबरें जो है ये सामने आई हैं. अगर आपने सुना होगा इट कि गवर्नमेंट जो है एक फ्यूल टैक्स जो है इसे इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे थे. अपेरेंटली ये खबर जो है रिपोर्ट की गई है जहां पर ये बताया जा रहा है कि नेशनल हेड प्लेज्ड कि वो दरअसल फ्यूल टैक्स जो है ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. देवर प्लान्स टू हाइक फ्यूल टैक्स और लाइकली अब कहा जा रहा है कि इस प्लान को शायद शेल्फ कर दिया जाए लेकिन फाइनल से जो है जबकि आज इस पर डिस्कशन होगा इन द पार्लियामेंट. जो भी अपडेट्स होंगे बाद में चलकर मिलेंगे. लेकिन व्हाट वाज द प्लान अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले बताएं कि प्लान था कि सरकार जो है प्रीवियसली अग्रीड कि वो इंक्रीज करने वाले हैं फ्यूल एक्साइज टैक्स टू 12 सेंट्स पर लीटर जनवरी 2027 से. देयर वाज आल्सो फर्दर इंक्रीज प्लान्ड बाद में चलकर आने वाले सालों में. सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 40 लीटर्स के पेट्रोल जो है ये लिया है द 12 सेंट्स इंक्रीज जो है वुड हैव एडेड अबाउट $4.80 टू दैट टैंक जब आप ये टैक्स पे करते बिफोर जीएसटी इफेक्ट्स जो है ये होते. Why they are reconsidering it? क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस जो है ये हाई रहे हैं पुटिंग प्रेशर ऑन हाउसहोल्ड बजट

0: और प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन का कहना है कि दे हैड प्रीवियसली सेड कि जनवरी इंक्रीज वाज पॉसिबली अनलाइकली बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन. गवर्नमेंट अब कह रही है कि दे विल बी लीनिंग टुवर्ड्स डिलेइंग या फिर कैंसलिंग द इंक्रीज रदर देन एडिंग अनदर 12 सेंट्स पर लीटर, जबकि मोटरिस्ट ऑलरेडी काफी पैसे पे कर रहे द पंप. सो वाई डज इट से कि गवर्नमेंट के इस प्रपोज प्लान पर कैबिनेट हैज द फाइनल से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन के कमेंट्स जो है अभी फाइनल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं है. कैबिनेट जो है बेसिकली द ग्रुप ऑफ सीनियर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स स्टिल फॉर्मली हैव टू डिसाइड कि क्या वो ये टैक्स इंक्रीज करना चाहेंगे या इसे कैंसिल करना चाहेंगे.
1: एक पुलिस ऑफिसर पर चार्जेस लगाए गए हैं जब उस पर आरोप लगे 12 साल से कम उम्र की एक लड़की के साथ अश्लील हरकत करने के लिए. एक्टिंग वाइटेमाटा डिस्ट्रिक्ट कमांडर एक्टिंग सुपरिटेंडेंट मैट लॉरेंसन ने इस बात की पुष्टि की है कि एक ऑफिसर जो है इस पर अदालती कार्रवाई चल रही है और उस पर चार्ज लगाया गया है ऑफ डूइंग एन इनडिसेंट एक्ट ऑन अ गर्ल अंडर 12. ये मामला पिछले साल पुलिस के ध्यान में आया था और जिस पर छानबीन की गई और फिर अक्टूबर में पिछले साल उन पर चार्जेस जो है ये लगाए गए हैं. हैज बीन स्टूड डाउन फ्रॉम हिज ड्यूटी, जब कोर्ट प्रोसेस जो है ये चल रहा है.
0: और साथ ही साथ नेशनल पार्टी जो है दे वांटेड टू मेक स्टूडेंट लोन रिपेमेंट्स लेस ऑफ अ फाइनेंशियल बर्डन ग्रेजुएट्स के लिए और पार्टली टू एनकरेज मोर स्किल्ड यंग न्यूजीलैंडर्स, ताकि वो अपना करियर जो है यहाँ न्यूजीलैंड में ही बनाए रादर देन मूविंग अब्रॉड. नाउ नेशनल ने ये सारे के सारे प्लान्स जो है इसे देखे हैं एंड दे आर लुकिंग एट वेज टू रिड्यूस द स्टूडेंट लोन रिपेमेंट बर्डन ऑन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. द सिंपल थिंग इज बेसिकली कि अगर यंग प्रोफेशनल्स दे आर हैविंग एज much money taken out of their pay to repay their loans, it could give them more incentive ताकि वो यहाँ न्यूजीलैंड में रह सके और यहाँ पर अपनी जिंदगी जो है ये बेहतरीन बना सके rather than heading overseas for better financial opportunities.
1: और वेलिंगटन अस्पताल के एमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट्स को इस महीने कई बार मोर देन 24 आवर्स इंतजार करना पड़ा. एमरजेंसी डिपार्टमेंट की एक नर्स ने कहा, ऑन अ रिसेंट मंडे नाइट शिफ्ट वन मैन फेल अस्लीप एंड हिट इज हेड जबकि वेटिंग 12 आवर्स टू बी सीन. हेल्थ मिनिस्टर सीमन ब्राउन ने कहा कि ये करंट सिचुएशन जो है वेलिंगटन एमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये अनएक्सेप्टेबल है एज इट कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द लोवेस्ट परफॉर्मिंग इन द कंट्री. जबकि हेल्थ न्यूजीलैंड का कहना है कि हॉस्पिटल वॉज अंडर एक्सट्रीम विंटर प्रेशर और बहुत लंबे वेट्स जो है ये हो रहे थे फॉर कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांसिस और वे नॉट द एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट पेशेंट्स. न्यूजीलैंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट का कहना है शी फियर्ड स्पीकिंग आउट वुड रिजल्ट इन रिपरकशंस और इसी वजह से इनका नाम जो है ये रिवील नहीं किया गया. उन्होंने रेडियो न्यूजीलैंड को बताया कि ऑन द ओवरनाइट शिफ्ट ऑन मंडे 17 अगस्त द हॉस्पिटल एस्केलेटेड टू रेड कोड सेवरल टाइम्स. हेल्थ न्यूजीलैंड का कहना है कि कोड रेड इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट रिफर्ड टू द अमाउंट ऑफ प्रेशर द हॉस्पिटल वॉज अंडर एंड इट्स बेस्ड ऑन द वेटिंग रूम congestion, staffing skill mix, changes in care hours and the seriousness of patients' cases.
2: Let's go.
3: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

दुबई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन

चलिए इन्हीं बातों के साथ आपके साथ या आपसे अब हम चाहेंगे इजाजत, जाने की जाने का समय हो रहा है। थैंक यू सो मच आपके साथ और समय के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।

0: तो मुझे दिल मेरा पत्थर का
1: ब्रेक नहीं कर सकती।
0: गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारो नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: Best Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
2: Driving you home.
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
5: ये गलत बोल दिया यार.
4: और पहनता भी नहीं है उसको.
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो.
5: अभी ब्रांड हो गया ना.
4: रुस्बे के बाल लगे उस.
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
10: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
11: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
10: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
11: पर डेवलपमेंट के पैसे
10: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
12: Zero
13: with an X.
14: You started your business for a reason, remember? Then all of a sudden, invoices and bills and payroll started getting in the way. And that is where Xero comes in. Connect your invoicing, bank feeds, bills and payments in one place. Real-time cash flow without all the added chaos. Xero takes care of the numbers so you can get back to doing what you love. Search Xero today.
3: When India comes to town, Awadhya Roa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Cricket Nation ke pre-sale mein shamil ho. NZC.NZ pe aur apne tickets sabse pehle book karo. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps vs India.
15: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
16: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
17: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
0: Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
18: Good morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. A police dog has sniffed out an alleged fleeing driver in Auckland. The driver of a Toyota Hilux initially pulled over when signalled last night in Manurewa before speeding off when the officer got out of the patrol car. The ute was found parked on Hilltop Road and the dog unit tracked the 25-year-old accused down, hiding in a bedroom. ASB says a record 40% of investors here claim they're concerned about the impact our election might have on their investments. Economist Chris Tennant-Brown says people are being cautious.
19: Just because people aren't confident, they're not necessarily changing their investments. They might be taking some other actions like finding out more about them and what's driving the returns.
18: Auckland's unitary plan is back on the table for public feedback. Councillor Richard Hills says it applies to around 15% of the city's urban area.
7: Now it's far more targeted around where the infrastructure is, where there is town centres, where there's transport and where we have amenities that people want to live near.
18: And snow has closed State Highway 1 between Dunedin and Waitati. Area warnings in place on State Highway 87 from Kyburn to Outram and on State Highway 85 between Kyburn and Palmerston.
2: In sport, a second tour championship crown for golfer Scottie Scheffler, the men's number one, winning the tournament in Atlanta and $17 million in prize money. Kiwi golfer Ryan Fox finished in 26th place and collects $635,000 for that. And in motorsport, with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty, an incredible second place for Kiwi Hayden Paddon at the World Rally Championship event in Paraguay.
12: Never expected this result, and I love driving the Hyundai on gravel, so yeah, amazing weekend.
13: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
4: The highs of 17, overnight temperature of 13. Aaj ka forecast bataya ja raha hai, it feels like 17 degrees right now. 558% sunset bataya ja raha hai. Cloudy rahega din, dopahar ke baad barish bhi pad sakti hai.
0: Non-stop Bollywood.
20: Jo bhi karte shiddat ke saath karte
0: hain. Playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
21: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithe, kyunki aa rahi hai.
0: My Time with Kashika.
4: Namaskar and a very, very good morning to you people. And this is the last day of winter. Ka. जाओ भाई जाओ वापस अगले साल लौट के आओ क्योंकि कल से स्प्रिंग शुरू होने वाला है. हाउ आर यू एंड हाउ वाज द वीकेंड? भाई यही बातें तो पूछने के लिए मैं आपके साथ आ जाती हूँ 10 से 12 बजे तक. आपका मेरा जो एक वार्तालाप होता है ना, काफ़ी हद तक इसे माइंड मैप रिकॉर्ड कर लेते हैं. रीज़न बीइंग, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती चली जाती हूँ और कहना चाहती हूँ अ बिग थैंक यू टू नन अदर देन कशिश फूड्स, जिनके सौजन्य से मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के बीच में आप और हम मिलकर एक साथ ढेर सारी बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं और साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट विद सम लवली बॉलीवुड म्यूजिक आपके लिए मैं लेकर आ जाती हूँ. हेलो, मैं कशिका 12 बजे तक रहूँगी आपके साथ निभाने के लिए. बस थोड़ी देर बाद हमारा साथ निभाने के लिए आ जाएंगे स्टूडियो लाइन पे राज प्रदीप सिंह जी फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स. कोई सवाल है तो ज़रूर आप 5599 पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. आपका वीकेंड कैसा गया? आपने क्या राखी किस तरह से इंजॉय की, बनाई, मनाई? और अब इस हफ्ते तो फादर्स डे मनाना है, इस हफ्ते तो हमें कृष्ण जन्माष्टमी भी मनानी है. कितना कुछ है ना करने के लिए, है ना? एकदम सडनली ये मौसम जो है ना त्योहारों से भर जाता है और दिल खुशियों से, उमंगों से भरने लग जाता है कि भाई अब किसी तरह हम अपना प्यार जताएं. क्या क्या करें, गाना बजा रही हूं.

0: असली ब्लॉकबस्टर
1: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
0: Playing Bollywood's biggest hits.
2: एक बात तो है जो पता चल रही है कि कीवीज जो है बहुत ज्यादा चिकन खाते हैं, मोर देन एवर। ग्लोबल डिमांड की वजह से ये प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा इनटेक लिया जा रहा है, जहाँ के इसके प्राइसेस जो हैं रॉकेट हो चुके हैं टू $24.40 फॉर बीफ एंड मिंस, वो तो हमने आपको बताया ही था। लेकिन अब जो पता चल रहा है कि इवन पोल्ट्री इज टेकिंग अ बिग शेप, यानी चिकन इज द मोस्ट पॉपुलर मीट हियर इन न्यूजीलैंड।

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो जब बात करते हैं कि भाई हमारे साथ लीगल यू नो एसोसिएट से राज प्रदीप सिंह जी टेलीफोन लाइन पर आते हैं, तो मेरे पास एक सवाल ऑलरेडी तैयार है। एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर, हाउ आर यू?
2: गुड मॉर्निंग टू कशिका जी एंड हम एफएम लिसनर्स।
1: सर मेरे पास टेक्स्ट आया है जी, मेरे पास एक टेक्स्ट है कि इमिग्रेशन के कोई ऑप्शन हैं बिकॉज दे वेरी लिमिटेड फॉर रेजिडेंस, और किस तरह से स्टडी कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं स्किल्स को हम सीख कर?
2: करेक्ट कशिका जी, देखो इमिग्रेशन का बहुत ऑप्शंस हैं काफी लोगों के लिए जो स्किलफुल हैं, ये जिनके पास क्वालिफिकेशंस हैं, मींस जो ऑलरेडी यू नो ट्रेड टेक्नीशियन में काम कर रहे हैं या लेवल 4 की क्वालिफिकेशन है या बैचलर है या मास्टर्स है। पिछले वीक से काफी अच्छी ऑप्शंस आई हैं, अब काफी सारे लोग यहाँ पे हैं जो स्पेशली एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा पे आए हुए, बहुत सारे ट्रेनी हैं, असिस्टेंट हैं या उस टाइम की थी नो क्वालिफिकेशन नो वर्क एक्सपीरियंस, तो वो काफी लोग अब स्ट्रगल कर रहे हैं कि भी हमारा एक तो है कि जो 2026 में 3 साल का वीजा, क्योंकि मैक्सिमम लोग 2023 में आए थे, वो आगे 2 साल का कैसे बढ़ सकता है
1: जी,
2: या अभी हम न्यूजीलैंड में हैं 5 साल का वीजा हमें, क्योंकि 2024 में 5 साल का वीजा स्टार्ट हो गया, तो सबका 2029 तक वीजा है उनका, लेकिन अगेन उसमें भी क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम, बाद में उन्होंने स्टार्ट किया 2024 के बाद कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वेरीफाइड। अब काफी सारे लोग हैं स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है ग्रीन लिस्ट का, वो है एक्सकवेटर, जिसमें इंडिया में उसको जीसीबी मशीन बोलते हैं, तो यहाँ एक्सकोवेटर है, वो कंस्ट्रक्शन में काफी यूज होती है, तो उसके लिए एक तो नंबर 1 है वो ग्रीन लिस्ट का ऑक्यूपेशन है, नंबर 2 उसका जो पे रेट है वो थोड़ा हाई है, 1.3 टाइम्स आई थिंक, ये 1.15 टाइम्स, तो उसका रेट है $40, बिकॉज आजकल जो मेडन वेज है वो $35 है, तो $40.25 पर आवर। उसके अंदर नो क्वालिफिकेशन नो वर्क एक्सपीरियंस, तो बस उसका जो सर्टिफिकेट होता है चलाने के लिए, यू कैन डू दैट, और वो ग्रीन लिस्ट का है, तो उसके बेस पे आपने जैसे $40.25 पे यू नीड टू वर्क फॉर 2 years, ग्रीन लिस्ट का है, तो उसके बेस पे देन यू कैन अप्लाई रेजिडेंस। इसके अंदर मैंने क्या बोला, आपको कोई क्वालिफिकेशन कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ऐसे ही काफी लोग हैं जो कारपेंटर हैं, वेल्डर हैं, या ग्लेजियर वाले हैं, या कारपेट वाले में हैं, या बिल्डर हैं, यू नो, या डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में हैं, तो उसके अंदर होता है एक अप्रेंटिस का कोर्स। तो अभी भी आपके पास अगर 2 साल का या 3 साल का आपका वीजा बचा हुआ है, तो आप ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो अप्रेंटिस जो अथॉरिटीज जो ऑर्गेनाइजेशंस कराती है, अगर वो उनके साथ रजिस्टर्ड कर लेते हैं, तो जो उनका स्टाफ है वो उनके साथ अप्रेंटिस कर सकते हैं। इसमें वो नर्सरी पर्सन वगैरह भी वो सब भी आते हैं जो फार्मिंग में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, तो काफी सारे लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और है जो हेल्थ सेक्टर है, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं जिनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है लेकिन ओपन वीजाज हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हेल्थ केयर सेक्टर में जो रिटायरमेंट विलेज में या डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करते हैं, वो भी ऑन जॉब ट्रेनिंग कराते हैं जो NZQL लेवल 2 की 3 की 4 की होती है। सो व्हेन यू आर वर्किंग विद देम फॉर 2 years, अगर आपके पास फॉर्मल लाइक कॉलेज की क्वालिफिकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आप ऑन जॉब ट्रेनिंग करके वो भी NZQL ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने बताया बहुत सारे सेक्टर्स में, वेदर अप्रेंटिस हैं या ऑन जॉब ट्रेनिंग है या बिना क्वालिफिकेशन के इस तरह के ऑक्यूपेशन हैं, तो ऑफकोर्स बहुत सारे और भी ऑक्यूपेशन हैं, उसके लिए जो सुन रहे हैं वो अपने केस के हिसाब से या आपके जितने एम्प्लॉई हैं या एम्प्लॉयर्स हैं वो हमसे मीटिंग कर सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं एज पर देयर पर्सनल सिचुएशन कि वो किस सेक्टर किस इंडस्ट्री के हैं, क्या क्वालिफिकेशंस।
1: एब्सोल्युटली, तो भाई जितने लोग सुन रहे हैं और उसमें से आप किसी ना किसी को ऐसे जानते होंगे ज़रूर, ऐसे कितने घर हैं जिसमें ऐसे यू नो लोग चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, तो लेवल 131 ईस्ट तमाकी रोड पापा टोया पहुँच सकते हैं 09279 2799439 पर आप कॉल कर सकते हैं. लीगल एसोसिएट्स की टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू देयर वेबसाइट एज वेल, विच इज legalassociates.co.nz. थैंक यू राज जी, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है.
2: Thanks a lot. Thank
0: you. Bye-bye. My time with Kashika.
3: आज कल चल रहा है बहुत न्यूज़ में. आप ही तो नहीं.
4: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
4: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
4: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, BFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
5: Andy didn't think he needed a DVS system.
6: Nah, we're all right, aren't we?
5: But Andy forgot about his daughter who suffered from asthma and allergies.
7: Yeah, Dad!
5: So, Andy got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work making their rooms drier, healthier and more comfortable. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.

0: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact toolkit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
1: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilyservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
2: Rarotonga is on sale now at Flight Centre. Book an adults-only five-night fly-and-stay holiday from $1,439 per person. Book in-store today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
3: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
4: Office Shoutout.
5: तो आज कौशिक आप हमें सुन रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम मनरीवा फ्रॉम ग्रे स्टोन बिल्डर्स. सो बिग थैंक यू टू यू ग्रे स्टोन बिल्डर्स. आप डेफिनेटली आपके लिए अगला गाना मैं लेकर आ रही हूँ. लेकिन इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इट्स यू नो लव फॉर द चिकन दे आर सेइंग कि यूजुअली देखा जाता है कि किवीज एट होम दे प्रेफर चिकन एंड यस इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल यू नो जहाँ पे यहाँ इतने पोल्ट्री फार्म्स हैं और ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से ये चलता है, किस तरह से इसका आई कैन से एक लहर होती है. वो लहर अभी कुछ दिन पहले जो लहर थी वो दिख रही थी कि सबको कोल्ड फ्लू. आप जिसके घर में चले जाओ, जहाँ चले जाओ, आपको वही वही खबर सुनने को मिलती. क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ था क्या?
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: theflysolomons.com.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
3: हमारी वैसे कोई ब्रांच है नहीं, लेकिन इस समय कार्तिक आर्यन जो है ब्रांच आउट करने वाले हैं, और ये कल एक मच अवेटेड प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कैप्टन इंडिया. इस पर काम शुरू करने वाले हैं इन लंदन. ये शूटिंग जो है टिल अक्टूबर कहा जा रहा है वहाँ पर चलने वाली है. और इस फिल्म में कहा जाता है इट्स इंस्पायर्ड बाय द ट्रू इवेंट्स अराउंड इंडियाज इवैक्यूएशन मिशन फ्रॉम अ वॉर टॉर्न कंट्री. तो ये देखिए एक एम्बिशियस एक्शन ड्रामा जो है आपके लिए तैयार होने वाला है. कार्तिक आर्यन जो है इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं, तो देखते हैं कि कैसा चलता है. लेकिन बाकी की कास्ट एंड क्रू को अगर मैं लेके चलूं तो अभी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है. इतना ही पता है कि भूषण कुमार जो है ये अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, और लेट्स सी नेक्स्ट ईयर 13th ऑफ अगस्त के दिन कहा जाता है इंडिपेंडेंस डे के आसपास ये फिल्म रिलीज़ होगी.

0: लिव बेटर लेकिन जन्माष्टमी जो है ये इसकी सेलिब्रेशंस जो है शुरू हो चुके हैं। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट आप द केव में पहुंच सकते हैं, ये 4 सितंबर तक ये चलने वाली हैं जितनी भी सेरेमनीज हैं। रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू में भी ये बहुत उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ साथ ये डेकोर ऑफ एलिगेंस 16 लैम्बी ड्राइव मैनेकाओ में न्यूजीलैंड संगम जो है ये आपके लिए बहुत खूबसूरत तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी लेकर आ रहे हैं। श्री राम मंदिर जो है वहाँ पर भी आपके लिए ये बहुत ही उत्साह के साथ इसे मनाया जा रहा है। आउटिरोआ सनातन संगम संस्था यहाँ पर भी सेलिब्रेशंस जो हैं ये चल रही हैं, तो आप पहुँच सकते हैं बिल्कुल एट दी 2 Saturn क्रिसेंट पापाटोईटोई में। श्री हनुमान मंदिर नॉर्थ शोर में भी कृष्ण जन्माष्टमी का ये महोत्सव जो है ये मनाया जा रहा है, और 4 तारीख को तो 12 बजे से 12:30 बजे तक जन्म भी मनाया जाएगा। इसके साथ साथ माँ दुर्गा टेम्पल 4/3 ऑनस्लो एवेन्यू पापाटोईटोई में यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्राइडे के दिन भी बहुत प्यारा सा उत्सव मनाया जाएगा 8:30 बजे से रात 12 बजे तक। तो आप किसी भी इस जगह में जा सकते हैं। कम्युनिटी में क्या खास हो रहा है हमें ज़रूर बताइए। 5599 पे टेक्स्ट कीजिए, माफ़ कीजिएगा buzz@mfm.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं अगर आपका कोई भी इवेंट फ्री में है, और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था, ये घर कैसे?
3: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
2: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
4: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
5: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
6: If you've got an injury like a sprain or strain, don't just think that rest is best. Staying active can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
7: डॉक्टर ने क्या बोला?
8: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
7: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
9: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक। हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम शोर वन। माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड।
10: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे, कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA, दैट्स HIRA, और विजिट ashurevan.co.nz। नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अश्योर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर।
11: कॉफी? The usual?
12: How about the unusual?
13: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
14: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
15: Indelible Homes, your building expert.
16: Indelible Homes.
11: thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
16: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: फादर्स डे का मौका आ रहा है, इसी संडे के दिन कैसे सेलिब्रेट करना है? प्रदीप, क्या प्लान कर रहे हो? जो भी प्लान कर रहे हो आप, हमको अपने साथ लेते चले जाना. रीज़न बीइंग, मेरे पास बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आप ऐड कर सकते हैं, खास तौर पे सरप्राइज़ टू योर फादर. अगले घंटे पर मैं कुछ एंट्री लेना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ क्या आपके फादर ने उन चीज़ों को, नए आधुनिक जो हमारा अभी एक फेज चल रहा है, उसे अडेप्ट किया है कि नहीं किया है. बस यही सब कुछ जानना है आपसे. बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आपका टेक्स्ट आया था और आपने कहा कि कशिका, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट माई फादर? आई बीन गेटिंग अ ड्रीम दैट माई फादर हैज़ बीन स्कोल्डिंग मी. ओके, तो यूजुअली ये रिप्रेजेंट करता है आपकी अंदर की गिल्ट या आपका एक क्रिटिसिज्म या स्ट्रगल है अगर आपके फादर के साथ आपका चल रहा है. एक फादर को अगर आप ड्रीम करते हैं, वो जो है वो रूल्स रेडी करते हैं, ही इज़ द बॉस, और कुछ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं फादर को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि हमें ये करना चाहिए, करना चाहिए दुनिया में, हमें ऐसे करना चाहिए, और वो एक प्रेशर जो होता है आपके ऊपर जो होता है वो आपको वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं. ऑफकोर्स इस चीज़ को बिल्कुल मत सोचिए कि आपके फादर आपको सपनों में डांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. यूजुअली ये स्कोल्डिंग अगर आपको लगता है, इट्स अ वेकअप कॉल, क्योंकि आपके लिए एक तरीका है याद दिलाने के लिए कि भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करो. यू मे फील समटाइम्स कि यू आर डिसअपॉइंटेड, क्या हो रहा है रियल लाइफ में, मेरे साथ क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ. बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको फीलिंग आने लग जाती है. बट मेक श्योर अगले घंटे पर आप कॉल जरूर करें. अभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आपके लिए.
16: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI.
17: कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, गलत कहते हैं.

सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छुट्टी है?

0: यू बाई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: साजन फिल्म का ये गाना मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ लेकिन ये 36 डेज में फिल्म रेडी हुई थी। फिल्म की रिलीज़ के बाद सुधाकर बुकाडे जो फिल्म के डायरेक्टर थे और सुभाष गई एक पार्टी में उनकी लड़ाई हो गई थी। उन्होंने कहा कि हे बॉय मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आओ। उन्होंने उसको ऐसे कुछ बोला। लोग देख रहे थे वो काफ़ी शॉक थे और जब उन्होंने उनको बोला कि वो ड्रिंक लेकर आओ तो सुभाष घई जो थे उन्होंने कुछ शायद गाली गलौज करनी शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं इस तरह की चीज़ें पोलाइटली प्रेफर करूँगा नॉट सो रूड और जिस तरह से बात की जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे एंड अपसेट और भी हुए थे क्योंकि फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट चल गई थी। सौदागर फिल्म उसी समय रिलीज़ हुई थी और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। बट गाना बहुत ही खूबसूरत है।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit Asian Family and Confidence Support.
2: Make layovers something to look forward to with the American Express Gold Rewards business card. You can earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Plus, enjoy 2 priority pass visits each year in over 1,300 airport lounges worldwide. Search Amex Business and turn payments into points. Offer ends 14th of December 26, 1.5k minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. T's and C's for membership rewards and lounge exclusions apply. Priority pass enrollment required.
3: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
4: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
7: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Starting overseas, the US has launched strikes against Iran on an island near the Strait of Hormuz. Officials say Iranian forces were spotted preparing to launch rockets with mines into the contested shipping waterway. Back here, there are road closures across the bottom of the South Island due to snow. State Highway 87, Outram to Middlemarch in Otago has now closed, with State Highway 1 north of Dunedin also shut. State Highway 85 between Kyburn and Palmerston is open but subject to an area warning due to snow. And caution also being urged at Sawyers Bay because of surface flooding and strong winds. An economist is cautious about National's plan to cut student loan repayments. The party wants to reduce the compulsory rate from 12 to 10% while increasing penalties for overseas borrowers if elected. Eric Crampton from the New Zealand Initiative is questioning how significant it will be.
8: Whether that makes much difference at the margin, it's hard for me to tell. I haven't seen good calibration on this. It should have some effect. How large of an effect, I'm not sure.
7: And overseas, Nepal is intensifying its search and rescue efforts for tourists reported missing after their devastating floods. There are still 5 New Zealanders unaccounted for. And in sport, rugby league with Machinery House in a league of their own, the Cleary clan minus Jet fly home to Sydney today after watching him make his NRL debut for the Warriors against the Knights. They saw their youngest son help the Warriors to a 46-32 win over the Knights. He was overjoyed to see them.
9: It's just so cool. I'm so grateful for my family and that they were able to make it. And it's also just cool to play for my dad's old club as well. It was awesome.
7: 21-year-old Jet Cleary there, who produced 4 try assists in the game, the most ever for a player on debut.
6: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
10: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
11: सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के गोविंद गांधर तथा नरेंद्र सामी की माँ किलीरोआ नांदी फिजी के मिनाची की मृत्यु नांदी में हो गई. नांदी फिजी में अंतिम संस्कार बुधवार 2 सितंबर को फिजी के समय के अनुसार फिजी में किया जाएगा. जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 0220295506 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने. ऑकलैंड के गोविंद गांधर तथा नारायण सामी की मां किलेलोआ नांदी फिजी के मिनाची की मृत्यु नांदी फिजी में हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार यानी कि 2 सितंबर के दिन फिजी समयानुसार नांदी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए 02202955506 पर आप संपर्क करें।
10: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
6: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
11: The highs of 17, overnight temperature of 12. Aaj ka forecast bataya ja raha hai, kuch cloudy period hai, showers expected hai. Southwest ki hawaein badhti chali ja rahi hain aur shaam tak kam bhi ho jayengi. It feels like 15 degrees right now. 6:01 par sunset bataya gaya hai.
6: My time with Kashika brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
12: Mid-morning maza.
13: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithe kyunki aa rahi hai
12: My time with Kashika.
11: Namaskar and a very very good morning to you people. How are you? Studio ki ghadi mein 11:04 हो रहे हैं एज आई टॉक, और ऐसे में आपका वीकेंड कैसा गया? अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया, बर्थडे एनिवर्सरी है तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। देखिए महीना ऐसे ख़त्म, इनफैक्ट ये मौसम ख़त्म, कल से स्प्रिंग का सीज़न शुरू होने वाला है। और आपको पता है चेरीज आपको कितने एरियाज़ में दिखाई दे रही हैं? और आई जस्ट लव इट। कुछ बता सकते हैं आप किस एरिया में बहुत सारे चेरी के पिंक पिंक पिंक पिंक कलर का पूरा लेन हो, या कोई ऐसी गली है जो जो आपको लगता है कि यू नो वर्थ विजिटिंग है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेफ्ट गो एंड यू नो टेक सम फोटोज़ ओवर देयर, बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ये जापान में होता है बट कई एरियाज में ये आपको मिल जाता है। ओके, अभी थोड़ी देर बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एंट्रीज फॉर द पापा इन द टॉक्स टुडे, या पापा इन डिमांड या फादर इन डिमांड, क्योंकि ये फादर्स डे के मौका होने वाला है जहाँ पर हम एक फादर को $500 दे के और भी रिच बनाना चाहते हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया से भी रिलेटेड कुछ पोस्ट है। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपके फादर ने, या आपके आप अगर फादर हैं और आपने इन्होंने उस चीज़ को एक्लेमेटाइज कर लिया, उस चीज़ को समझ लिया, अपना लिया, एक पॉप कल्चर बच्चों का या फिर एक मॉडर्न स्लैंग या टेक्निकल कुछ भी, वो सब कुछ भी आपको लगता है आपने किया है, तो मुझे कॉल करना है आपने ऑन 0800 हम पर, जब मैं गाना बजाऊंगी पापा से रिलेटेड।
6: बजाओ क्या?
11: कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए माय टाइम आ जाता है 10 से 12 बजे मंडे टू फ्राइडे, और मैं कशिका आपकी रिमाइंडर क्लॉक आपको ये रिमाइंड कराती ही रहती हूँ आप अपने लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।

0: literally better and your father make sure कि आप को किस तरह से वो संभालते हैं, किस तरह से आपको नर्चर करके बड़ा करके अपनी वैल्यूज़ बताते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें अपने जो भी मॉडर्न स्टाइल है उस तक आप पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं? आपकी स्लैंग है, आपका पॉप कल्चर है, आपका टेक्निकल वर्ड्स, क्या यू नो व्हाट यू थिंक your father has adapted ya you as a father has adapted? To kya aap mujhe 0800 hum par call kar sakte hain? Bilkul, main aapka naam aaj se leke Friday ko draw hone wala hai. $500 cash jeetne ke liye sunehra mauka hai, to ho sakta hai aap wo lucky father ban jaye jo mujhe bataya apne bare mein, ya phir aap koi aap father ko janti hain jinko aap या जानते हैं जिनको आपको लगता है कि आप उनको एक रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं. चलो एक और तरीका है रिकॉग्नाइज करने का, कॉल तो कर सकते हैं 0800 004 866 पर. एक 6-word स्टोरी आप रेडी कर सकते हैं और साथ में आप एक AI जनरेटेड सुपर हीरो की फ़ोटो लगा के अपने डैड की फ़ोटो बना दीजिए. हमारे फेसबुक के पेज पर पहुँच जाइए, अपने डैड को टैग कीजिए और साथ साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बोलिए कि आपके फादर वाली जो फ़ोटो है जिसमें आपने उन्हें सुपर हीरो बनाया है उस फोटो को लाइक या टैग करें. अब आपको हमको तो लाइक करना ही पड़ेगा हमके पेज को इन ऑर्डर टू लाइक दैट. सो भाई ये इस तरह से वेरिफिकेशन हमारा होगा. हम ऑन द कंपटीशन पेज $300 कैश वहाँ पे आपको जीतने का मौका मिलेगा और ये भी ड्रॉ जो है 4th of September के दिन होने वाला है क्योंकि 6th of September को होने वाला है फादर्स डे. तो चलिए 0800 हम पर कॉल कीजिए अगर आप तैयार हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए. टाइम इज़ नॉट टू मच. आज मंडे निकल गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अब ये 4 दिनों में देखते हैं कि कोई कॉल्स आती हैं या नहीं आती, या आपको लगता है कि आपके फादर अभी तक उसी तरह सोचते हैं.
1: Please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
4: The new Macca's Barbecue Hash Stack Burger.
5: Not new, Greg's made it before.
6: Yeah, Noah's made it.
7: Sam's made it too.
4: Oh, new for us, but you've been adding the hash brown for ages. Macca's Barbecue Hash Stack. T's and C's apply.
8: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
9: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
10: Yes, but I want to subdivide too.
9: Zelo.
10: Zelo?
9: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes packed with premium inclusions with full subdivision support if you need.
10: Really?
9: Yep. From planning and consents through to construction, the team can help manage the entire process.
10: Zelo. I like the sound of that.
9: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
11: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुगाव में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किवीज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुगाव. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश मयंक बाला कियारा अडवाणी तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी
6: हेलो डैडी
3: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास
7: इट्स टाइम आई एम कमिंग
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग टीबीसी
12: It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. TCs and exclusions apply.
1: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
0: Eat better, live better. Mere saath saath ho chuki hai Pushpa. Hello, Pushpa. How are you?
13: Hi. I'm good, thank you. How are you?
0: I'm very fine. बताइए किसके बारे में बात कर रही हैं आप?
13: Actually, I don't have a dad. He passed away ages ago.
0: Oh,
13: but
0: I'm
13: he
0: sorry.
13: Was such a lovely father we had. But anyway, I will tell you about my husband. मेरे बच्चे उसको इतने बेचते हैं कि पूछो मत.
0: ऐसे
13: जब वो छोटे थे ना तो फिर उसको when he used to go supermarket या कहीं shopping करने के साथ बच्चे के साथ जाते हैं तो वो बच्चे उनको ना पागल बनाकर कुछ ना कुछ उसको गेटिंग टू बाय टॉयज या व्हाटएवर तो जब वो घर पर आते हैं ना तो मैं पूछती हूँ यू व्हाई डिड यू बाय कितने ज्यादा इनके पास है तो वो बोलते हैं ओह ये कहे थे कि मम्मी इज ओके यू कैन बाय मम्मी टोल्ड यस टेल डैड टू बाय मैंने कब बोला था लेने के लिए तो पुआ गाय मेरे अब क्या करते तो नेक्स्ट टाइम अब क्या होता है अब जब भी वो जाते हैं और मेरे बच्चे जब बोलते हैं कि पापा मुझे वो चाहिए और या कैन यू जस्ट बाय दिस वो बोलते हैं पहले मम को कॉल कर पहले तुम मम को कॉल कर अगर मम बोलेंगे हाँ तो फिर नहीं तो वो क्या करते हैं वो नहीं नहीं इट्स ओके मम्मी नहीं तो मेरे हस्बैंड ना ना ना अब मैं मम को जरूर मेरे को कॉल करते ना पूछते कि तूने बोला था मैंने नहीं बोला था तुम दोनों जहां भी हो घर आ जाओ नहीं लिखना
0: ये पता है बच्चे जो होते हैं ना इन्हें बहुत पता होता है एग्जैक्टली कि कहां से किसको घुमाना है ना
13: अरे पूछो मत ये जब छोटे थे तो करते थे अभी बड़े हो गए ना टीनेज भी हो गए ये चलता रहता है उसको ना मेरे हस्बैंड कुछ बोलते या मैं भी कभी कभी कुछ बोलती हूँ तो बोलते हाँ तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है तुम लोग टेंशन के टाइम के हो मैंने कहा भी मैं तेरे को जूती देती हूँ
0: अरे भगवान ओ माय गॉड
13: तुम दोनों को फैशन डिजाइन नहीं मालूम है ये मेरे हस्बैंड बोलते ये बेगी बेगी पैंट्स क्यों रास्ते झाड़ते रहते हो चलने के लिए तुम लोग को नहीं मालूम है तुम दोनों एंशियंट टाइम के हो मैंने बोला अभी तो मैं पैंट्स ऐसे काटती हूँ एंशियंट टाइम भी चल
0: देखो यहाँ तो कुछ हम बोल भी नहीं सकते बच्चों को है ना
13: मैं सच में बट मैं तो बोलती हूँ ना मैं एक्चुअली बिकॉज मेरे दो बच्चे एंड आई एम द ओनली गर्ल इन द हाउस तो मुझे ना पांच स्टेप्स उनसे आगे रहना पड़ता है अदरवाइज वो हम दोनों को बेच देंगे मेरे हस्बैंड तो बच्चे बेचे हुए हैं मैं नहीं बेचनी
0: चाहिए ओह गॉड दिस इज फनी
13: उसको बेचकर वो खरीद लेते मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं चलता कि वो बेचा भी गया है और खरीद भी गया उसको
0: माय गॉड आई एम लविंग दिस
13: बट ही इज अ वेरी लवली फादर
0: लवली फादर
13: वेरी लवली He's a lovely father. उन दोनों को यू नो लाइक ही पिक ड्रॉप एज यूजुअल पेरेंट्स करते हैं और उनके साथ भी यू नो लाइक ही गोज एंड डज मेरे छोटे वाले गोल्फ भी खेलते तो उसका कैडी भी हो जाता है वो एंड बट ही दे गेट अलोंग वेल सो दैट इज द थिंग बट हाँ इनको बेचने के लिए दे डू सेल हिम एंड बाय हिम ही हैज नो क्लू दैट ही हैज बीन सोल्ड एंड बॉट
0: चलिए मैंने पुष्पा आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर दिया है एंड कैन आई हैव द नेम ऑफ द फादर ऑफ दीज टू ब्रेड्स
13: अजय
0: ओके ओके
13: या एंड द टू ब्रेड्स इज निखिल एंड अमित
0: ओके कूल थैंक यू सो मच थैंक्स अ टन
13: थैंक यू
0: बाय
13: थैंक यू बाय बाय
1: सिक्स वर्ड स्टोरी
0: तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई सिक्स वर्ड स्टोरी आपको कुछ है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं. और आपकी सिक्स वर्ड स्टोरी आई है ही वर्क्स हार्ड विदाउट नीडिंग प्रेज. ही वर्क्स हार्ड विदाउट नीडिंग प्रेज. इट दिस इज़ वेरी नाइस एंड थैंक यू बाबू. 02 आपका नंबर है 02 44. थैंक यू सो मच.
1: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

चार्ट बस्टर्स की तरफ तो मैं जा ही रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि एक वीडियो जो है ऑफ द मिट्योर, ये कैप्चर किया गया एट द तोरंगा एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी एंड दिस हैज जस्ट हैपन आई थिंक लास्ट नाइट, माफ कीजिएगा, एक ग्रीन फायर बॉल जो है स्काई पर नजर आई थी एंड इट वॉज कैप्चर्ड ऑन द कैमराज एज वेल. अब ये पता नहीं चल रहा, दिस इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट ऑन द अपर नॉर्थ आइलैंड और लुक्स लाइक इट वेंट अप इन द पैसिफिक ओशन ऑफ न्यूजीलैंड. अब क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं है, क्या प्लैनेट चल रहा है क्या चल रहा है. ग्रीन ट्रेंड्स टू बी मैग्नीशियम एज एक्सप्लेन, ग्रीन मेटियोर्स जो है ऑफ फायरबॉल्स, ये एक वेपर क्रिएट करते हैं एंड प्राइमरली मैग्नीशियम ये क्रिएट करते हैं, निकल एंड आयन. सो पता नहीं एग्जैक्टली वॉट एग्जैक्टली दिस वॉज, बट यस एज सून एज आई हर्ड अबाउट इट आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें पता चले कि किस तरह से कुछ रेजिडेंट्स ने जहाँ रिपोर्ट किया इन वाइकाटो एंड बे ऑफ प्लेंटी, और उन्होंने अपने फेसबुक के पेज पे भी इसे पोस्ट किया कि कैसे एक ग्रीन कलर की बॉल टाइप की चीज़ जो आसमान पे से गुजर रही थी. माय गॉड इट मस्ट बी सो कैप्टिवेटिंग, वाजंट इट, इट्स लवली. चलिए आगे बढ़ते हैं.

0: Klassiker.
1: Boah,
2: hau
1: an Grund.
3: तो ये जो बोर्डिंग कॉल है इसका आपने देख ही लिया है कि अनाउंसमेंट हो चुका है। चलो चलो, देखो मैं तो चाहती हूँ कि हमारे कोई हम के लिसनर्स ही ज़रूर इसे जीते। तो दो रिटर्न डे टिकट्स टू वनुआटू और सोलोमन एयरलाइंस की तरफ से ये है आपके लिए। अगर आपने ये इसे मिस कर दिया बोर्डिंग कॉल को, तो मैं बता देती हूँ 5599 पे आप BC यानी बोर्डिंग कॉल का BC लिख के भी जो शॉर्ट फॉर्म और ये कॉम्पिटिशन का पेज लिंक आप तक पहुँच जाएगा। बस क्लिक कीजिए सबमिट एनरोवा पे, आप जाकर फटाफट इसे रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट 30 मिनट्स, रिमेंबर आप अपनी फ्लाइट मिस मत कीजिएगा, बिकॉज ये फ्लाइट आपको पैराडाइज लेके जाने वाली है। सो थैंक यू टू नन अदर देन सोलोमन एयरलाइंस, जो आपको 4 बार हफ्ते में फ्लाई करके लेके जाते हैं फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटू। एंड विजिट कीजिए इनकी वेबसाइट को flysolomons.com के जरिए। हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस समझने के लिए आपको डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पर या फिर रोवा के जरिए आप पहुंच सकते हैं। याद रहे बहुत ही कम दिन बचे हैं ये करने के लिए, अब आपका टाइम शुरू होता है अब।
4: The Breakfast Show with VJ and Pooja।
5: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
6: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
7: That is very that is a very acceleration.
6: That's a very acceleration. Yeah.
7: Amazing acceleration.
6: This is my fancy English. That's a very.
7: अरे होता है यार, सब चलता है। आधी नींद में हूँ मैं।
4: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: weekdays, 6 to 10 a.m.
1: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin binning. And you need to know about it.
2: Join the Tribe!
1: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
2: join the Tribe!
3: Farmers has the best gifts for Dad, with great grooming products, skincare and the latest fragrance, and casual styling from top to toe. There's coffee machines, cocktail makers and barbecue sets too, plus Lego sets for grown-ups. Farmers has the best gifts for Dad.
4: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex Pumped, plus more on Super Pump Days. Fill up, scan your Caltex app or Kodu card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex pump T's and C's apply. See caltex.co.nz.
5: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
6: Rescue me, recycle me.
7: एक बात तो है ये रिसाइकल करना या रीयूज़ करना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हम सोचने लग जाते हैं कि क्या कर सकते हैं. तो रिसाइकल ये जो वर्ड हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी ये एक तरह से सही होता है या नहीं होता है. लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए, सॉफ्ट ड्रिंक कैंस होते हैं, ब्रेड के बैग्स होते हैं, प्लास्टिक टॉयलेटरी की जो बॉटल्स होती हैं, या फिर आप ये पैकेजिंग जो होती है किस तरह से की जाती है रिसाइकल सेंटर्स में, आप इन्हें भेज ज़रूर देते हैं, लेकिन क्या आप इन्हें ठीक तरह से रिसाइकल कर पाते हैं या नहीं कर पाते? क्या आप उन्हें रिसाइकल करके आप उन्हें ऐड कर देते हैं किसी बिन में? एक बात तो है, जो अभी हम जब रिसाइकल बिन की बात करते हैं तो जो मिल्क बॉटल्स होती हैं उनके अंदर हम दूध फिनिश कर लेते हैं, लेकिन वो दूध फिनिश करने के बाद अगर आप उसे पानी के साथ रिंस करने के बाद डिस्पोज करेंगे ना, तो वो बॉटल का रिसाइकल होना बहुत अच्छा रहता है. ये जो लिड्स होते हैं, जो ढक्कन होते हैं, अभी आपको बता देती हूँ, ऐसे कभी कभी ये ढक्कन जो होते हैं इसको भी रिसाइकल करना इम्पॉर्टेंट रहता है. कोशिश कीजिए कि आप कभी सिंबल्स पढ़ते हैं रैपिंग बैग्स में, जैसे ब्रेड बैग्स में, फ्रूट्स में, वेजी बैग्स वगैरह में, किस तरह से आप इन्हें रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ छोटा छोटा लिखा होता है. एंड ये सेलेक्टेड सुपरमार्केट्स जो होते हैं डेफिनेटली इसका आपको एक तरीका भी बताते हैं. अब आप देख लीजिए ये बॉटल्स जो होते हैं किस तरह से आप यूज़ करते हैं. ख़ास तौर पर जब ढक्कन आप उसका लगा के दे देते हैं तो डेफिनेटली इट कैन बी रिसाइकल्ड. कोशिश कीजिए रिसाइकल रीयूज करने की.
0: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट NZPMI.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

के लिए आने वाला हफ्ता रहेगा और भी जोरदार, दमदार, शानदार। बस इसे शानदार बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम अपने लिए आप जरूर निकाल लीजिएगा। सो डू लुक आफ्टर योरसेल्फ्स कशिश फूड्स के सौजन्य से। मैं काशिका आपसे यही अनुमति चाहती हूँ। कल सुबह 10 बजे फिर प्रस्तुत हो जाऊंगी। लुक आफ्टर योरसेल्फ्स। बाय बाय।

0: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
2: ये गलत बोल दिया यार।
1: और पहनता भी नहीं है उसको।
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए। कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी। ब्रांड हो गया ना
1: रुस्बे के बाल लगे उस।
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
4: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer. Showerdome.co.nz.
5: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
6: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
7: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kuka Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $129. Cordless stick vacuums only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free.